शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं ऋतुपर्णो दास साहब, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, स्वागत करते हुए कहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों के मुखातिब होइए, प्रेजेंट करिए, हमें बताइए ना आप भला कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं आप दास साहब?
2: मेरा परिचय है, दो परिचय है। एक परिचय है कि मैं फिलहाल रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट के अध्यापक हूं। मेरा दूसरा परिचय है मैं एक गायक हूं। मैं खास करके भक्ति गीति के ऊपर जिनके जहां पर आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा प्रभाव हो ऐसे भक्ति गीति निराकार ईश्वर के ऊपर मैं फिलहाल उस पे मैं ध्यान दे रहा हूं और उसके ऊपर मैं गीत रचना और गीत गाना, गीत का सुर बनाना ऐसे कामों में मैं इन्वॉल्व हूं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपने जाना कि दास साहब दरअसल एक अध्यापक हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में सीनियर फैकल्टी हैं, साथ साथ सिंगर हैं और निराकार भजनों की रचना भी करते हैं दास साहब। तो चलिए दास साहब के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं, आइए कुछ सीखते हैं दास साहब से कि दीस दास साहब ने इस विषय में क्या समझा। दास साहब, सबसे पहली बार स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में आपने कब सुना, किसने बताया था आपको आध्यात्म क्या होता है, कब?
2: मैंने पहली बार आध्यात्मिकता के बारे में अपनी मामा को सुना। मेरे मामा का नाम था डॉक्टर प्रणव रंजन घोष, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला साहित्य का अध्यापक थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो आध्यात्मिक कथा के मूर्ति थे। उन्होंने काफी खूब सारे किताब, खूब सारे रचना लिखे थे आध्यात्मिक कथा के ऊपर। उनका पीएचडी का जो टाइटल था वो आध्यात्मिक बांग्ला साहित्य में स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, ये उनका था पीएचडी का टाइटल। वो एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो मैं उनसे ये आध्यात्मिक कथा सीखा।
1: ऑलराइट, तो जाहिर सी बात है इतने प्रबुद्ध इंसान से, इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व से आपने आध्यात्म के बारे में जाना, तो हमें भी बताइए कि आध्यात्म क्या मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज, हम क्या समझे आध्यात्म से, कोई एक साधारण व्यक्ति क्या समझे?
2: आध्यात्मिक मतलब के दो मतलब होता है, दो मायने होता है। एक है जो थियोरिटिकल आध्यात्मिक कथा है, स्वयं को खोजना, स्वयं की आत्मा को खोजना और उसको ये विश्वात्मा से उसको मिलाना, ये थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल है आध्यात्मिक कथा का अर्थ है भेदभाव नहीं करना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम।

0: करना।
1: ओके ऑल राइट। सो आज ये चीज और बहुत साफ तौर पर दिखलाई दे रही है, जैसा दास साहब ने बताया कि आध्यात्मिकता के दो मतलब हो सकते हैं। एक जो लिटरल मीनिंग है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा के साथ मिलन और आपस में उन दोनों का संबंध सीखना। और दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दास साहब ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। बहुत सुंदर, एक नई तरीके की परिभाषा अलग शब्दों में आज दास साहब ने हमें बताई है। बहुत सुंदर। अगर इसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे बढ़कर बात करें तो चलिए, आपके तो मामा जी ने आपको इतने प्यार से बताया, आध्यात्मिकता के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया, क्या आज के जो यूथ जनरेशन है उसको ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ज्यादा समझ में आती है? और अगर आती है तो वो किस तरीके से इसको परसीव करते हैं? हाउ डू दे टेक इट? स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं वो?
2: ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हम इस पर कोई सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते।
1: ऑलराइट।
2: लेकिन ज्यादातर आजकल के जो यूथ है, इन लोगों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का ज्यादा इन लोगों का टेंडेंसी है। तो इन लोगों में से खूब सारे लोग आजकल मंदिर में जाते हैं, मंदिर मस्जिद ये इसमें जाते हैं, जाके दान करते हैं। तो एक तरह का ये इनको दान करना, जो अपना अपना जो आय है, अपनी आय का एक अंश दान करना, ये लोग एक बड़ा समाज सेवा मानते हैं। ये एक तरह की यूथ में दिखता है।
1: ओके।
2: और दूसरे यूथ कुछ है जो आध्यात्मिकता में के लिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। वो लोग वी कॉल देम मटेरियलिस्ट। ये लोग भोगवादी होते हैं। तो इनको आगे जाके करियर बनाना या बिजनेस में लाभ करना, ये एक तरह का होता है। और जहां पे बिजनेस में लाभ करना है, वहां पे वो लोग मंदिर मस्जिद में भी दान करते हैं, लेकिन वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब में दिखाते हैं तो उनके रिपोर्ट में शो करने के लिए क्या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलने के लिए। अगर आप दान करेंगे किसी मंदिर में, भला ही आपका बिजनेस ना हो, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, किसी मंदिर में आप दान करिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करिए, आपको इनकम टैक्स का छूट मिलता है। ये एक है। और फाइनली कुछ पढ़े लिखे उच्च लेवल के व्यक्ति है, मैंने उन लोगों को देखा, उसके अंदर नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज विजेता भी है। वो लोग युक्ति यानी लॉजिक या रीजनिंग पे बिलीव करता है।
1: ओके।
2: वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है, वो लोग उसके बेसिस पे, उसके लॉजिक पे आगे जाके चलते हैं।
1: ओके ओके ओके।
2: और जगह पे जाके वो लोग रुक जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को उतना तक जाके उसके बाद वो लोग रुकते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके आगे भी कुछ है, बस इतना तक।
1: ओके ओके। बहुत क्लियर है कि आज का यूथ दरअसल स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और उसको कैसे परसीव करता है, ये चीज दास साहब ने हमें समझाई। बिल्कुल ठीक दास साहब। जब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप ही का गाया हुआ एक प्यारा सा भजन हम अपने सुनने वालों को सुनाएं, फिर वापस लौटते हैं आपसे बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए।

0: बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी गायकी। दास साहब, आगे बढ़ते हुए इस विषय में बात करें तो आध्यात्म के बाद एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो बार बार डिस्कस किया जाता है, समझने की जिसको आवश्यकता है, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। क्या है धर्म आपके हिसाब से? आप क्या परिभाषा बताना चाहेंगे धर्म की?
1: मेरे हिसाब से, या तो मैंने जितना किताब पढ़ी

0: lyrics, real poems on his on our devotion, on his devotion to the formless God, निराकार ईश्वर. तो उसमें निराकार ईश्वर धीरे धीरे एक जगह पे जाके एक ज्योति के हिसाब से प्रकट होते हैं, जो हमें इफ वी विजुअलाइज इन अवर माइंड, अगर हम हमारे मन में कल्पना करें तो निराकार ईश्वर एक ज्योति होता है जिनका कोई आकार नहीं होता है. और ये अच्छे अच्छे क्लासिक इंग्लिश मूवी जैसे 10 कमांडमेंट्स, वहां पर भी ये चीज दिखाया गया, ईश्वर एक ज्योति है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है. तो ऐसे और भी धर्म है जो निराकार निर्गुण ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं. तो इसमें निराकार ईश्वर से जाके हम लोग उस ज्योति में हम लोग अपने आत्मा को खो देते हैं, मेरे मन की ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाता है. ये होता है आध्यात्मिकता, अगर हम निराकार में विश्वास करें तो.
1: जी जी जी.
0: और अगर हम आकार में विश्वास करें तो उसकी उसके प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, दैट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. दोस्तों एक अलग ही तरह से दास साहब ने हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है. तो रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और दास साहब का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा भजन पहले हम सुने फिर आगे बढ़े.

बहुत सुंदर। अब दास साहब आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आध्यात्म आपसे समझा, धर्म आपसे समझा, अब आज की दुनिया में अगर यंग जनरेशन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है तो वो ये भी जानना चाहेगी और हम भी ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया

0: का अध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग 90% कह लीजिए, या चलो ठीक है, मैं किसी परसेंटेज को यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर है?
1: सोशल मीडिया में कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी मौजूद है, अच्छे सामग्री भी मौजूद है, तो जो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों को मदद कर सकते हैं
0: जी।
1: जैसे फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया में खूब सारे पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से पौराणिक कथा कुछ ऐसे हैं जो सारे धर्मों में कॉमन है।
0: ओके।
1: सारे धर्मों में सामान्य है, ऐसे कुछ पौराणिक कथा है। जैसे जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग करता है उसको कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द कहां से भी आए, कहीं से भी आए, किसी आदमी से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति उसका इतना भक्ति या जो भी है होता है, उसका चाहत होता है ईश्वर के लिए, वो उसको जाके आगे जाके अपना आत्म अनुभव, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलता है, उसको उस स्टेज तक, उस स्तर तक लेके जाता है कि बाद में समाज उससे उपकृत होता है, वो एक बड़ा संत, बड़ा महात्मा बन जाता है, उसके बातें सुन के हजारों भटके हुए लोग सही राह पे आते हैं। तो इसको ये एक तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं जो रिलीजियन या धर्म के प्रभाव होता है आध्यात्मिक कथा के ऊपर। ये ज्यादातर आपके आध्यात्मिक कथा जो निराकार रास्ते में चलते हैं उनके लिए है, निराकार ईश्वर के रास्ते
0: जी,
1: और जो साकार ईश्वर के रास्ते में चलते हैं उनके लिए शायद मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है।
0: ओके।
1: वो पहले साकार ईश्वर को मानते हैं, मानने के बाद उनको उनका उस ईश्वर के भक्त हिसाब से उनका अपना अनुभव होता है, आत्मा अनुभव, फिर वो इस जगत को अपना अपना जो ऐश्वरिक प्रेम, डिवाइन लाभ, वो देना शुरू करते हैं, तब उनसे मानव जाति उपकृत होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से दोस्तों, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, कितने प्यारे ढंग से दास साहब ने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाराकार ईश्वर और साकार ईश्वर में डिस्क्राइब करते हुए दास साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लें और एक भजन दास साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में सुने, और फिर लौट के आते हैं हम दास साहब के पास।

0: बहुत सुंदर। अब दास साहब देखिए, ये तो थियोरेटिकल बात हुई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में और साकार ईश्वर के बारे में। अब अगर हम लोग, फिर हम लोग ने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की, आज का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दुनिया का। अब हम बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की, आध्यात्मिकता का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या अध्यात्म हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आजाद होने में हमारी मदद कर सकती है क्या? स्पिरिचुअलिटी वो कैसे करेगी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में?
1: देखिए सर, एक सही आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में इन जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ये तो मन की बात है, ये सारी चीज मन की है। उनके शारीरिक दैहिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनका बीपी वगैरह ये सब कम होते जाते हैं।
0: ओके।
1: दूसरी बात ये है सर, एक बात इंग्लिश में एक प्रभाव है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना चाहिए, उनको अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए बिना स्वार्थ के, कि माता पिता हमें उनका प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए नहीं, ऐसा कोई मोह माया नहीं रहना चाहिए। जब उनका जन्म हुआ, माता पिता ने अपने स्वार्थ भूल के उनको बड़ा किया, माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे आगे जाके बड़ा होके उनको देखेंगे कि नहीं, उनको केयर लेंगे कि नहीं, उन्होंने, कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचते। तो उनको भी अपने माता पिता को सबसे पहले इसी तरह प्रेम देना है।
0: करेक्ट।
1: फिर अपने बच्चे जो होंगे, अपने पत्नी जो होंगे, उनके प्रति भी निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो यह मतलब है आपके परिवार में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है।
0: वाओ, ओके।
1: यानी आप सभी के अंदर अपने आत्मा को देख रहे हो, यू आर यूनाइटिंग योर सेल्फ विथ ऑल रेस्ट हुसोएवर इज अराउंड यू, आपके साथ जो है उनके साथ आपका आत्मा की एक जोग स्थापित हो गया, यही आत्मा आध्यात्मिकता।
0: वाओ, ब्यूटीफुल, क्या बात बताई आपने, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी ही प्यारी चीज हमारे सामने रखी भाई, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को समझ कर भी, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को समझ कर भी लोग बाग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। मतलब बात तो वही हो गई, कहने को कुछ और, करने को कुछ और, लेकिन फिर भी कोई एक सीधा साधा सा इंसान हो तो वो क्यों नहीं कर पाता है ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस, दास साहब क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
1: क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है।
0: ओके।
1: और कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन या किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहचर्य, उनके साथ किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहना, जिसको बोलते हैं कि आपको संघ बोलते हैं
0: जी,
1: साधु संघ, साधु जातक मीन, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मली गेरुआ पहन के घूम रहा है, साधु व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति उनके संगत से ये प्राप्त होता है, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आत्मानुशासन, त्याग और ज्ञानी व्यक्ति की संघ, ये अगर मिले, एक हो जाए, तब आपको धीरे धीरे आपके पास आध्यात्मिकता की झलक आना शुरू होगा।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, उस तरीके का सानिध्य, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हो, तब हम उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर सुधा साहब। तो चलिए एक और प्यारे से भजन के साथ एक पॉज लेते हुए दास साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा भजन, और फिर हम वापस लौटते हैं।

0: दा साहब, फर्ज कीजिए कोई बहुत ही साधारण सा इंसान, सीधा साधा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो आपकी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम को सुनकर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, मेरे को शांति मिलेगी, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस वो कैसे शुरू करे? कुछ प्रैक्टिकल इजी रोजमर्रा के स्टेप्स थोड़े से सजेस्ट कीजिए ना।
1: देखिए सर, आध्यात्मिकता की शुरू वो कर सकते हैं ऐसे कि हमारे समाज में आज भी दारिद्र है, आज भी कुसंस्कार सुपरस्टिशन है, आज भी गलत अभ्यास गलत प्रैक्टिसेस हैं, तो जिनमें जहां पे लोग भटके हुए लोग हैं सही रास्ते में, लोग धीरे धीरे आज के युवा समाज में देखिए, आज के जो समाज ओवरऑल इट इज ज्यादातर इट एग्जिस्ट, ये कहां पे समाज टिका हुआ है आपको दिखेगा, नजर आएगा सोशल मीडिया में, लोग अपने परिवार अपने बंधु इन सबको साथ रहते हैं लेकिन अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई अपने लैपटॉप में डूबे हुए रहते हैं, तो इन लोगों को कोई कुछ समय नहीं है कि ये आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकाले। लेकिन एक चीज आप जरूरी है, अगर हर व्यक्ति समाज के एक कोई दरिद्र शिशु को, दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र कोई लड़का लड़की जो भी है, वो अपने साध्य के अनुसार, हम जो कोई एक घंटा करके जो दरिद्र शिशु है उनको पढ़ाए, या किसी कहीं पर जाके, खूब सारे मैं आपको बोलता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कलकत्ता में कोविड 19 के टाइम में रविन हुड बोल के एक बैच हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के लड़के अपने आप को रविन हुड सोचते थे, और जहां पर जिसको खाने की अभाव हो या कुछ द्रव्य की नेसेसरी आर्टिकल्स, जहां पर जिसका भी कुछ भी अभाव हो रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो लोग जाके उद्योग अपने उद्योग में अपने मेहनत में लोगों को हेल्प करते थे, खास करके ओल्ड कपल्स, बूढ़े पेरेंट्स जिनको अपने पुत्र छोड़ गए, खास करके कुछ दरिद्र फैमिली जो हु आर लिविंग ऑन फुटपाथ, ऐसे करें। तो ऐसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, कोई ऊपर का दिखावट ही नहीं है, ऐसा कुछ है, इसमें लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके साथ कनेक्ट करें, ऐसा ऐसा करके हम लोग आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा अगर ये समाज का के लिए भी कुछ अच्छा ना हो, तो हम हमारा आध्यात्मिकता का इस तरह का हम शुरू कर सकते हैं कि हम समाज के काम में आए, समाज मतलब और दूसरे सारे लोग, मेरे परिवार के बाहर जो लोग हैं, सभी आम लोग हो जाए, जो आर्थिक रूप से आपके ज्यादा धनवान नहीं है, इन लोगों के कुछ काम में आए, जो पढ़ाई में पीछे है ऐसे बच्चों को कुछ काम में है, ज्यादातर आप देख लेंगे सेंट्रल बोर्ड के जो होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई में आगे होते हैं, स्टेट बोर्ड में जो है वो हम लोगों ने देखा है स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा पीछे होते
0: हैं, पीछे होते
1: हैं। काफी बच्चों के पास, गाँव में काफी बच्चों के पास सर मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होती है,
0: राइट,
1: आजकल की पढ़ाई एआई एमएल से है, बहुत सारे एडुटेक कंपनी है, कॉलेज के पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलता है, जो हमारे जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जो पीछे है, ये बच्चे हमारे समाज के जाति है, फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो वो अगर हम उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो इसमें आध्यात्मिकता ही, ये आध्यात्मिकता ही प्रैक्टिस है, और कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता उसको पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करके वो अपने आप ये काम कर रहा है, तो वो बिना जाने, विदाउट हिज नॉलेज ही स्पिरिचुअल।
0: वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसा कि अभी दास साहब ने बता दिया, नॉर्मल रूटीन, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आसपास ही बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग मिल जाएंगे जिनकी आपने मदद की, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर दास साहब की आवाज का एक और भजन हम लोग सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। एक कदम पीछे लौटने की कोशिश करूंगा दास साहब, आध्यात्मिकता की बात हुई और धर्म की बात हुई, क्या ये दोनों एक चीजें हैं या अलग अलग?
1: सर, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे के परिपूरक है, कंप्लीमेंटरी है, लेकिन लेकिन लोग धर्म के नाम पे कभी कभी माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं को आध्यात्मिकता के साथ वो लोग उलझ लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं।
0: ओके,
1: इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन धर्म है, या स्पिरिचुअलिटी एंड मिथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी रिलीजियन एंड मिथोलॉजी, आध्यात्मिकता धर्म और पौराणिक कथा, ये तीनों चीजों के अंदर जो डिफरेंस है और जहां पर संपर्क है, इसके बारे में वेरी स्पष्ट सुस्पष्ट उनका कॉन्सेप्ट या आइडिया या धारणा होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे, जैसे वो आध्यात्मिकता के रास्ते में धीरे धीरे जाएंगे या किसी धर्म के रास्ते में भी धीरे धीरे जाए, कोई सिंसियरिटी सही ढंग से अगर वो चले, तो वो एक दिन उनको इन तीनों के डिफरेंस, तीनों जो थोड़ा थोड़ा अलग है, तीनों एग्जैक्टली एक नहीं है, ये इन लोगों को आगे जाके पता चल जाता है, वो अपने अनुभव से पता चलता है।
0: Okay.
1: हम लोगों को जो एक सिक्स्थ सेंस है जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं।
0: Yes.
1: इंट्यूशन आगे जाके अगर बहुत गहरा, स्ट्रांग, गहरा और बलशाली इंट्यूशन है, वो ही आगे जाके हमारा तीसरा नेत्र बनता है। तो उसमें ये पार्थक्य नजर आता है, जो नॉर्मल आई, साधारण आंखों में नजर नहीं आता है।
0: बहुत सुंदर, सही बात।
1: तो सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता यही है, आत्मानुभव का रास्ता आध्यात्मिकता में यही है।
0: ओके, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपको ये भी आज समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, क्या तो समानता है, या इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। बहुत सुंदर, चलिए ना एक और भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं।

0: बुड्ढा साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि आगे आने वाला समय जो है, जो भी आज चल रहा है, ठीक है, आपने आध्यात्मिकता की, धर्म की जो कुछ भी जानकारी, ज्ञान लिया, आपके मामा जी से लिया, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आपका इंटरेस्ट था, सीखा आपने, और आज का जो करंट प्रोस्पेक्टिव है उसमें भी आपने दोनों की रेलेवेंस को, मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो रियलिटी है उसको समझा आज के प्रोस्पेक्टिव में। अब आगे की बात करें, आगे का जो फ्यूचर है, जो कि हम अपने यंग जनरेशन को देकर जाएंगे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब रहेगा? क्या आगे बढ़कर, लेट से आगे 20 इयर्स ऑनवर्ड स्पिरिचुअलिटी काम आएगी? क्या उसकी सार्थकता होगी?
1: देखिए सर, निकट भविष्य में युद्ध बिना शादी की भविष्यवाणी की जा रही है। तब अधिकाधिक लोग संसार की दिखावटी सुंदरता से विमुख हो जाएंगे। वे अपने भीतर झांकेंगे और स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे।
0: ओके।
1: तो ये आने वाले दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग

0: एक आशा रखते हैं कि आशा नहीं, आशा बोलिए या दुराशा बोलिए, एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, या इससे भी कम कुछ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल का चारों तरफ जो युद्ध की माहौल बनी हुई है, अंतर्देशीय युद्ध की माहौल जो बनी हुई है, इसमें हम लोगों का वो जो भय है हमारे मन के अंदर, वो भय हम लोगों को जब सच हो जाएगा वो युद्ध, तब हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। अपने अपने आदमी खो, हम लोग खोएंगे, हम हमारे स्वजनों को खोएंगे, हम हमारे संपदा खोएंगे, शायद हम लोग अपना देश भी खो सकते हैं। तो उसमें उसी टाइम हम अपने भीतर भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया का आकर्षण हमारे लिए उस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी में से कुछ लोग अपने आप जा झांकेंगे, स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे, ये जब वो शांति को खोजना चाहेंगे।
1: करेक्ट,
0: तो ये आने वाले दिन का मुझे भविष्य ऐसा लगता है।
1: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है। आज के प्रस्पेक्टिव में जिस तरीके का भी माहौल चारों तरफ बना हुआ है, हम अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पिक्चर हमें दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तब लेकिन दास साहब का मानना है, और उन्होंने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की, रिलीजन की, धर्म की, और इस बारे में विचार करने की सार्थकता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यूटिलिटी बढ़ेगी। सोचना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुख इतना ज्यादा हो जाएगा जब कभी किसी अपने को खो देंगे तो अवसाद में डूब जाएंगे, तो फिर आध्यात्मिकता ही है जो हमें बाहर निकालेगी। बहुत सुंदर
0: बिल्कुल
1: भाई, बहुत सुंदर। दास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की आपने। सरल शब्दों में बताया कि क्या है आध्यात्मिकता, क्या है धर्म, क्या है उसका यूसेज, क्या है सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस, क्या है यंग जनरेशन के लिए उसका मतलब, बड़ी सारी चीजें आपने बहुत ही प्यारे ढंग से और आज के नए भाषा में आपने हमें समझाई। दास साहब, आपके भजन तो फिर सोने पे सुहागा हो गए। जिन बातों को आपने प्यार से समझाया, आपके भजनों ने उसको सपोर्ट किया और हमें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया क्या है अध्यात्म और क्यों हमें अध्यात्म को स्वीकारना चाहिए। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दास साहब?
2: सर, आपने मुझसे पूछा कि मैं श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि प्रत्येक माता-पिता को अपने बच्चे को देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव सिखाना चाहिए। राष्ट्र की आत्मा में अपनी आत्मा को देखना सिखाना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता स्वतः उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता के इतिहास को ही देख लीजिए, हर स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक थे। एक और बात यह है कि हर कोई मृत्यु से डरता है, केवल आध्यात्मिकता ही इस भय को दूर कर सकती है।
1: बहुत सुंदर,
0: बस
1: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दी है दास साहब ने। दोस्तों, बिल्कुल सच, एकदम खरी खरी एडवाइस, बहुत खूब। दास साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत साफ तौर पे आपने कई चीजें हमें बताई और आपके भजन भी हमने प्यारे प्यारे सुने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: मोस्ट वेलकम सर।
3: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। गर्मी जो सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की इस कहानी में हम सिर्फ गर्मी की बात नहीं करेंगे, आज के एपिसोड में हम उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडियन समर ही दे सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर के 2 बजे हैं, सड़क ऑलमोस्ट खाली, धूप इतनी तेज कि लगता है हवा भी गर्म हो गई है, और इस गर्मी के बीच अचानक एक आवाज, टन टन टन। कुर्सी वाले की घंटी समर का एक एंथम होता है, बस ये आवाज ही होती है जो बचपन में दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। जैसे ही घंटी बजती है, घर के अंदर से रॉकेट स्पीड से बच्चे बाहर निकलते हैं। माँ, कुल्फी चाहिए, कुल्फी वाला आ गया, और मम्मी अपनी इटर्नल डायलॉग के साथ रेडी। रोज रोज नहीं मिलती कुल्फी, और हम, पर मम्मी आज स्पेशल है, कल से नहीं मांगूंगी पक्का, और ये डायलॉग हम रोज बोलते हैं। फिर बार्गेनिंग शुरू होती है, एक ही ले लो भैया, छोटी वाली देना, और फाइनली हाथ में एक ठंडी जमी हुई कुल्फी, उसका पहला बाइट और वो इंस्टेंट ठंडक दिल के भी नीचे उतरती है। लगता है जैसे पूरी गर्मी उसी कुल्फी में डिसॉल्व हो गई हो। सच बताओ, आप कौन सी कैटेगरी के थे? ऑरेंज वाली स्टिक आइसक्रीम, मलाई कुल्फी, या वो रॉकेट वाली जो गिरते गिरते बचती थी? समर का सुपरस्टार। अब बात करते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स, आम की। गर्मी का मतलब ही होता था घर में आम की पेटी आना, और मम्मी का स्ट्रिक्ट रूल, गेस्ट्स के लिए हैं। पर हम ऑलरेडी 2 आम वॉशरूम में छुपके खा चुके थे, और वो आम का रस स्टील के बड़े भगोने में पूरी फैमिली के साथ, कोई रोटी के साथ खा रहा है, कोई पूरी के साथ खा रहा है, और कोई डायरेक्ट सिप्स ले रहा है, और लास्ट में हाथ पे चिपका रस और उसे चुप चुप के लिक करना। उफ, क्या दिन थे। और जब हीट लेवल्स एक्सट्रीम हो जाते थे, तब एंट्री होती थी आम पन्ना की, कच्चे आम का आम पन्ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, एक सिप लो तो लगता है पूरी बॉडी रिबूट हो गई हो। मम्मी प्राउडली बोलती, ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, और हम, ये तो लाइफ स्ट्रोक से बचाता है मम्मी। कूलर वर्सेस गर्मी की अल्टीमेट बैटल। पहले एसी नहीं था घर में, पर कूलर, कूलर हीरो था। कूलर के सामने बैठ जाओ और लगता था नेचर ने पर्सनली हवा भेजी है, और उसकी आवाज, कूलर के फैन में मुंह डाल के खड़े होना और अपनी ही आवाज को घर से सुनना, याद आया? वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बजता है कानों में, जो बिना प्लेलिस्ट के चल रहा होता है पूरे समर्स में। और जब पानी खत्म हो जाता है तो सडनली हवा का तंदूर मोड ऑन, फिर घर में एक ही आवाज, पानी डालो कूलर में, लाइट चली गई। और समर का सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट,
बिजली का जाना, फैन बंद, कूलर बंद, सब बंद। और मम्मी का सोल्यूशन, हाथ से पंखा चलाओ। और हम, ये कौन सा जिम है भाई? टेरेस वाली चांदनी रात। और फिर रात को टेरेस पे सोने के प्लान्स, छत पे बिस्तर, ऊपर तारों भरा आसमान, एक सफेद चादर और दूर कहीं से रेडियो की आवाज, हल्की हल्की ठंडी हवा। और मम्मी मम्मी कहती, मच्छर का कॉइल जला दो। हम स्टार्स काउंट करते रहते थे, कॉन्स्टिलेशंस बनाते रहते थे, और कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। कभी बीच रात उठ के आसमान देखना, ऐसा लगता था मानो दुनिया रुक सी गई। कहाँ गए वो दिन? दिल सच में ढूंढता है फुर्सत की वो रात दिन। अब आते हैं गोले वाले के कलर थेरेपी पे। जी हाँ, गोले वाले भैया, बर्फ का गोला, ऊपर से कलरफुल सिरप्स। और वो पूछता, कौन सा फ्लेवर दीदी? हम झट से बोलते, भैया फुल मिक्स बना दो या फिर काला खट्टा। रिजल्ट होता एक रेनबो गोला, और टंग भी उसके साथ साथ रेनबो हो जाती। समर का एक फनी ट्रूथ होता है दोस्तों, गर्मी में तीन चीजें पक्की होती हैं, आइसक्रीम का गिरना, बिजली जाना और मम्मी का गुस्सा। और जब कोई गेस्ट आ जाता था तो मम्मी की पहली लाइन, आम उन्हें दो। और हम अंदर से कुड़कुड़ाते रहते थे। दोस्तों, गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं होती, एक इमोशन होती है। वो कुल्फी की घंटी, वो आम की मिठास, वो कूलर की ठंडी हवा, वो टेरेस की रात, सब कुछ सिंपल था पर दिल को इतना खुश कर देता था जैसे चांद छू लिया हो। आज की गर्मी वर्सेस कल की गर्मी। आज एसी ऑन है, फूड डिलीवरी है, पर वो टन टन की एक्साइटमेंट, वो बिना वजह वाली हंसी शायद थोड़ी कम हो गई है। तो इस समय थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा फील करें, एक कुल्फी जरूर खाएं, आम का रस हाथ से खाएं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फोन साइलेंट पे हो या ना हो, दिमाग कभी कभी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा होता है और अंदर से आवाज आती है, प्रोसेसिंग।

नव ग्रहों की एक सभा 2.0, जब ग्रहों ने इंसानों की कंप्लेंट मीटिंग बुलाई। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक ड्रामा है जहां 9 ग्रह मिलके इंसानों की आदतें डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, सोचिए, अंधेरा नहीं, रोशनी भी नहीं, एक अजीब सा शिमरिंग स्पेस जहां हवा नहीं पर एनर्जीज चल रही हैं। यही है नवग्रहों की सभा। आज वहां इमरजेंसी मीटिंग है और एजेंडा। अर्थ के लोग हमें हर चीज के लिए ब्लेम क्यों करते हैं? एंट्री नंबर 1, सूर्यदेव, सीईओ ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले इन्हीं की एंट्री होती है, हमारे प्यारे सूर्यदेव की ब्राइट एंट्री, इतनी ब्राइटनेस कि बाकी सबको सनग्लासेस चाहिए। मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगी, सब अंडर ब्रेथ, सर थोड़ा डिम मोड पे आ जाओ ना, बट सूर्यदेव तो सूर्यदेव हैं। एंट्री नंबर 2, चंद्रदेव, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। चंद्रदेव आते हैं सॉफ्ट से ग्लो के साथ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सूर्यदेव कहते हैं, ये थेरेपी सेशन नहीं है चंद्र। एंट्री नंबर 3, मंगलदेव, एंग्री यंग ग्रह, हमारे सिपाही। मंगलदेव की एंट्री आती है और फुल एनर्जी मोड ऑन हो जाता है। किसने कंप्लेन किया बताओ, बताओ किसने कंप्लेन किया? बुधदेव कहते हैं बीच में, भाई पहले सुन तो ले। एंट्री नंबर 4 इन्हीं की है, हमारे बुद्ध देव यानी मर्क्यूरी, डेटा एनालिस्ट ऑफ द कॉस्मोस। बुद्ध देव टैबलेट लेकर आते हैं और कहते हैं, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग और बाकी सब इंग्लिश बंद करो बुद्ध देव, ये हिंदी कॉन्फ्रेंस है। एंट्री नंबर 5, सबके फेवरेट, सबसे प्यारे, सबसे बड़े गुरुजी, गुरुदेव मोड ऑन, बृहस्पति। बृहस्पति देव कामली आते हैं और कहते हैं, हर प्रॉब्लम की एक सीख होती है। मंगलदेव इंटरप्ट करते हैं, आप हर जगह ज्ञान क्यों देते हो? एंट्री नंबर 6, शुक्र, स्टाइल और रोमांस की किंग। शुक्रदेव की एंट्री परफ्यूम की खुशबू के साथ, लाइफ में थोड़ा ग्लैमर भी जरूरी है, शनि साइड आई देता है। एंट्री नंबर 7, शनि देव, न्याय के देवता। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, शनि देव आते हैं स्लो और इंटेंस, सब सीधा होके बैठ जाते हैं। कौन ब्लेम कर रहा था मुझे जरा बताना।

थोड़ी सी लॉस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे और बाकी सब। फिर आए क्यों भाई? सीन नंबर टू, अर्थ की कंप्लेंट्स की एक प्रेजेंटेशन शुरू होती है। बुध स्क्रीन ऑन करता है और स्लाइड नंबर वन, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, फोन टूट गया, बाकी सब। व्हाट? स्लाइड नंबर टू, शनि इक्वल्स टू जॉब नहीं मिली। शनि बोलते हैं, रेज्यूम देखा है अपना? स्लाइड नंबर थ्री, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इक्वल्स टू राहु। राहु कहते हैं, रेड फ्लैग, इग्नोर किसने नहीं किया? सीन नंबर थ्री, सारा क्योस शुरू हो जाता है। मंगल कहते हैं, मैं तो सिर्फ एनर्जी देता हूँ। चंद्र कहते हैं, मैं सिर्फ इमोशंस बढ़ाता हूँ। और शुक्र कहते हैं, मैं तो प्यार ही प्यार देता हूँ। शनि फिर कहते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट लेता हूँ। और सब एक साथ, गलती हमारी कहाँ है? सीन नंबर फोर, ट्रूथ बाहर आता है। तब बृहस्पति कामली बोलते हैं, हम रास्ता दिखाते हैं पर चलना इंसान को होता है। चंद्र कहते हैं, मैं मूड बनाता हूँ, डिसीजंस उनके होते हैं। और बुध कहते हैं, मैं कम्युनिकेशन देता हूँ, बोल क्या रहे हैं वो तो उनकी चॉइसेस हैं। अब होता है एक लाइव डेमो। सूर्य बोलते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान रात को 3 बजे तक फोन यूज करता है, सुबह लेट उठता है, ऑफिस लेट पहुंचता है, बॉस से डांट खाता है और फिर बोलता है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तब ग्रह एक दूसरे को देखते हैं और मंगल बोल पड़ता है, फोन किसने यूज किया था? चंद्र कहता है, लेट कौन सोया था? शनि कहते हैं, लेट कौन पहुंचा था? और सब एक साथ कहते हैं, इंसान। अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, और इसमें शनिदेव कैसे पीछे रह जाए? वो एकदम से खड़े होते हैं और बोलते हैं, डिसीजन सुनाया जाता है, हम इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल नहीं। ब्लेम बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सूर्यदेव बोलते हैं, हम आसमान में हैं पर जिंदगी उन्हीं के हाथ में है। सब ग्रह धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं और एक आवाज गूंजती है, अपनी कहानी खुद लिखो। दोस्तों, प्लैनेट्स आपको सिर्फ गाइड करते हैं पर आपको डिफाइन नहीं करते। आपकी मेहनत, आपकी चॉइसेस, आपका एटीट्यूड, वही आपकी डेस्टिनी बनाता है। सच सच बताओ, आपने लास्ट बार कब किसी ग्रह को ब्लेम किया था? मैं हूँ आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी ग्रहों की कहानी। स्टार्स को देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए, पर स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में रखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: चार्जिंग पे जिंदगी। फोन चार्ज पे लगाओ तो लगता है कंट्रोल में हो। खुद की लाइफ चार्ज पे लगाने का ऑप्शन होता तो सब लाइन में खड़े होते।

स्नैक्सीडेंट एपिसोड, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें इंश्योरेंस भी काम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड ऑफ द डे है स्नैक्सीडेंट। नाम सुनते ही लगता है ना ये कोई नया क्राइम है या कोई फूड स्कैंडल, पर नहीं, स्नैक्सीडेंट एक ऐसी लाइफ सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल इनोसेंट होते हो, ट्रस्ट मी। पर एविडेंस सब आपके खिलाफ होता है। डेफिनेशन थोड़ी फिल्मी है। स्नैक्सीडेंट का मतलब होता है जब आप कहते हो बस थोड़ा सा खाऊंगा और 10 मिनट बाद पैकेट खुद आपको देख के कहता है भाई मैं तो खत्म हो गया, और आप शॉक में चले जाते हो, ये किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, और घर में सिर्फ आप होते हो। बस एक बाइट से शुरू होती है ये स्नैक्सीडेंट की कहानी। हर स्नैक्सीडेंट एक इनोसेंट शुरुआत होता है। शाम का टाइम, आप थोड़े से बोर्ड, टीवी या फोन चल रहा है और आपका दिमाग बोलता है थोड़ा स्नैक हो जाए। आप फ्रिज खोलते हो, स्नैक निकालते हो और खुद से प्रॉमिस करते हो सिर्फ 2 बाइट्स। ये वही प्रॉमिस है जो कभी पूरा नहीं होता। फ्रेंड्स, स्नैक की कैरेक्टर एंट्री अब जरा इमेजिन करो। स्नैक्स भी अगर इंसान होते, चिप्स का पैकेट बोलता आओ आओ मैं क्रंची हूं, चॉकलेट बोलती मैं तो मेल्ट हो जाऊंगी जल्दी खा लो, और बिस्किट्स बोलते हम तो चाय के बिना इनकम्प्लीट है, और आप इमोशनली मैनिपुलेटेड हो जाते। द ब्लैक होल इफेक्ट। स्नैक्सीडेंट एक ब्लैक होल जैसा होता है, जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन सब गायब, और आप सोच रहे होते हो मैं तो बस थोड़ा सा खा के रहने वाला था। चॉकलेट वाली ट्रेजेडी। चॉकलेट के साथ स्नैक्सीडेंट अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। आप एक पीस तोड़ते हो, फिर सोचते हो ये तो अनइवन हो गया, थोड़ी सी और खा लेता हूँ। फिर आप बैलेंस करते हो और बैलेंस करने के लिए एक और पीस, और फिर एक और, और फिर एक और, और एंड में पूरी चॉकलेट गायब, सिर्फ रैपर हाथ में। और आपका लॉजिक ये रहता है शायद सिमेट्री के लिए जरूरी था ना। मिडनाइट स्नैक्सीडेंट हॉरर स्टोरी, इससे ज्यादा डरावनी कोई स्टोरी नहीं है, ट्रस्ट मी। रात के 1 बजे सब सो रहे हैं और आपको आवाज आती है किचन से। आप जाते हो, लाइट्स ऑन करते हो और फ्रिज के अंदर स्नैक्स आपको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। आप बोलते हो बस पानी पीने के लिए आया हूं, और 15 मिनट बाद सारी प्लेट साफ। डाइट प्लान का मर्डर, ब्रूटल मर्डर। सुबह उठते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, बस अब डाइट स्टार्ट ही करने वाला हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट, सैलेड, डिटॉक्स वाटर, और रात को स्नैक्सीडेंट का फिर से अटैक होता है। डाइट प्लान का RIP, प्रॉपर रेस्ट इन पीस, एक इल्यूजन है दोस्तों। फ्रेंड्स के साथ स्नैक करना एक मिथ है, सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और रियलिटी एक बंदा सब खा जाता है और बाकी लोग हम तो सिर्फ देखते ही रह गए। पिज्जा स्नैक्सीडेंट, डेंजरस लेवल है ये। पिज्जा ऑर्डर करो, प्लान करते हैं 2 स्लाइसेस ही खाएंगे, और फिर ये लास्ट स्लाइस ही तो है, और फिर अब एक ही तो बचा है, वेस्ट नहीं कर सकते, आखिर हम इंडिया में रहते हैं, और एंड में पूरा पिज्जा फिनिश। पैकेट का बिगेस्ट स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम क्या है जानते हैं? फैमिली पैक। ये फैमिली के लिए नहीं होता, एक इंसान के लिए चैलेंज पैक होता है, और जब खत्म होता है आप कहते हो ये इतना छोटा कब हो गया। स्नैक्सीडेंट का डीप मीनिंग दोस्तों, स्नैक्सीडेंट सिर्फ फूड नहीं है,
ये लाइफ का एक पैटर्न है। हम कहते हैं बस 5 मिनट स्क्रॉल और 2 घंटे निकल जाते हैं इंस्टाग्राम पे, पता भी नहीं पड़ता। बस एक एपिसोड और रातों रात पूरी सीरीज खत्म। बस थोड़ा सा और कंट्रोल चला जाता है सिस्टम के हाथ में। जिंदगी भी थोड़ी सी स्नैक्सीडेंट जैसी है दोस्तों। अगर कंट्रोल ना रखो तो छोटी चीजें भी ओवर हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्नैक्स छोड़ दो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। बस एंजॉय करो पर कॉन्शियस होके। सच बताओ, आपने अपना लास्ट एक्सीडेंट कब किया था और किसके साथ किया था? चिप्स के साथ, आइसक्रीम के साथ या फ्रिज का फुल ऑन रेड? दोस्तों आज का वर्ड याद रखिएगा, खैर याद तो रहेगा, रोज होता जो है। स्नैक्सीडेंट जब स्नैक खुद नहीं खाता आपसे खुलवा लेता है। और अगली बार जब आप बोलो बस एक बाइट, तो याद रखना ये कहानी पहले भी शुरू हो चुकी है। मैं हूँ आपकी दोस्त, खुश रहिए, हंसते रहिए और स्नैक्स एंजॉय करते रहिए, पर थोड़ा कंट्रोल और कॉन्शियसनेस के साथ, वरना स्नैक्सीडेंट FIR लिखवा देगा। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मीटिंग में सिर्फ हाँ बोलने वाला। मीटिंग में एक बंदा होता है जो सिर्फ सर हिलाता है, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और बाद में पूछता है, मीटिंग किस बारे में थी?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, एक और बात बताता हूं इधर उधर की, लेकिन बहुत ही जोश भर देने वाली। जापान ने पहली बार सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। स्वीडन में आयोजित ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान ने अपने दो एथलीट याहिको मिशिमा और शिजो कानाकुरी को भेजा था, लेकिन उनके लिए जापान से स्वीडन तक का सफर आसान नहीं था। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों को अपनी यात्रा पूरी करने में करीब 18 दिन लगे। वो सबसे पहले पानी के जहाज से रूस पहुंचे, इसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा का रेल यात्रा सफर उन्होंने किया, लिहाजा दोनों ही खिलाड़ियों को तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रतियोगिता के दिन शिजो कानाकुरी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे। उन्होंने खूब जोर लगाकर मैराथन की शुरुआत की, लेकिन आधे रास्ते में ही बेहोश हो गए। मैराथन देख रहे कुछ स्थानीय लोग उन्हें अपने घर ले गए, जहां अगली सुबह उन्हें होश आया। शिजो अपने प्रदर्शन से बहुत दुखी थे। दुख से डूबे हुए वो बगैर स्टॉकहोम के ओलंपिक अधिकारियों को बताए जापान वापस लौट गए, इसलिए एसोसिएशन ने उनके नाम के आगे मिसिंग यानी कि गुमशुदा लिख दिया। स्वीडन नेशनल ओलंपिक खेलों की किताबों में वो कई सालों तक गुमशुदा रहे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने साल 1920 और 1924 में जो ओलंपिक्स गेम आयोजित किए गए थे उसमें हिस्सा लिया था। साल 1967 में स्वीडिश नेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने शिजो कानाकुरी से स्टॉकहोम वापस आकर अपनी अधूरी मैराथन

पूरी करने का आग्रह किया। है ना आश्चर्यजनक बात दोस्तों, कौन याद रखता है इतने सालों तक कि उन्होंने अपनी मैराथन पूरी नहीं की थी, वो मिसिंग थे। 75 साल के उम्र में वो वापस आए और अपनी अधूरी रेस पूरी की। मैराथन पूरी करने का समय था 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे 32 मिनट और 20.3 सेकेंड्स। ये इतिहास की सबसे लंबी मैराथन दौड़ थी दोस्तों। है ना आश्चर्यजनक बात। लेकिन मैराथन दौड़ को पूरा करने का जोश लगातार कायम रहा, खिलाड़ी के अंदर भी और जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित किया था उन अधिकारियों में भी। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: ओ मेरी ओ मेरी ओ

आइए दोस्तों, आपको आज बताते हैं मोहताज अजय झा जी के बारे में। जब चारों तरफ अपनों की लाशें बिखरी हों, अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ खानदान का कोई बुजुर्ग मलबे के नीचे से बचा लेने के लिए पुकार रहा हो और संज्ञा शून्य नन्नी भांजी या भतीजी एक सवाल अपनी हिचकी में दबाए आपके हाथों में दम तोड़ देती हो कि मैंने तो दुनिया अभी देखी ही नहीं थी, तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी दोस्तों? इससे ज्यादा त्रासद मंजर कोई दूसरा नहीं हो सकता। मगर युद्धग्रस्त इलाकों के बाशिंदों की नियति ऐसे दृश्यों से उनकी मुठभेड़ कराती ही रहती है। गजब यह है कि इस कोहराम के बीच भी लोगों को जीना पड़ता है। ऐसे हालात में एक पत्रकार किस साहस से अपने फर्ज को अंजाम देता है, फिलिस्तीनी पत्रकार मोहताज अजय झा इसकी मिसाल हैं। शांत इलाकों के नौजवान जिस उम्र में रोमानी दुनिया के हसीन ख्वाब बुना करते हैं, मोहताज ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिलिस्तीन की जमींदोज हुई बस्तियों और बमबारी के शिकार बने बेगुनाहों की तस्वीरों से एक तारीखी दस्तावेज तैयार किया है। इस काम के लिए उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही है और अब प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने 2024 की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में उनको शुमार किया है। गाजापट्टी के दीर अल बलाह शरणार्थी शिविर में नवंबर 1999 में मोहताज पैदा हुए। जब होश संभाला तो अपने चारों तरफ तनाव ही पसरा पाया। सुकून और बेफिक्री से शायद फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों का कम ही साबका पड़ता है। मोहताज जब 6 साल के थे, अपनी बस्ती की सड़कों पर उन्होंने इजरायली टैंकों को दौड़ते देखा। जब वो 8 साल के हुए तो गाजा पट्टी पर अपना दबदबा कायम करने के लिए फिलिस्तीन के हमास और फतेह गुटों के लड़ाकों को एक दूसरे का खून बहाते देखा। और उसके बाद तो हर दूसरे साल इजरायल हमास बकायदी से लड़ते भिड़ते ही रहे। इन भिड़ंतों ने ही वहां के बच्चों के भीतर खौफ को खत्म कर दिया। इंसान होने की सिफत बस इतनी ही बची रही कि तनाव और हिंसा के बीच भी इन इलाकों के शिक्षकों ने अपना धर्म निभाना नहीं छोड़ा और ना ही डॉक्टरों ने इलाज करने की अपनी सेवा को छोड़ा। इसके कारण मोहताज जैसे बच्चों का मुस्तकबिल संवरता रहा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दाखिला लिया। यहां पढ़ते हुए मोहताज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी से जुड़ गए, ताकि रेड क्रॉस के जरिए वो बेबस लोगों की कुछ मदद कर सकें। साल 2018 की बात है। गाजा इसराइल सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते देखते लड़ाई में बदल दिया गया। मोहताज तब 19 साल के रहे होंगे। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बैनर तले राहत कार्य करते समय एक इजरायली स्नाइपर ने उनकी जांग को गोलियों से जख्मी कर दिया। मोहताज का जख्म कुछ हफ्तों में भर गया, लेकिन हिंसा जारी रही। इस दारुण अनुभव को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आईं और इस तरह उनके अंदर एक पत्रकार पैदा हुआ। साल 2021 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद मोहताज एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी से जुड़ गए। बहुत ही जल्द उनका नया ठिकाना एक अमेरिकी संगठन बना, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की खातिर संयुक्त राष्ट्र राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करता था। मोहताज बहुत खुश थे। उन्हें इस संगठन में फोटो और वीडियो प्रोड्यूसर की नौकरी मिली। वो अपने गाजा के लिए कुछ करना चाहते थे। आखिरकार वो उनका घर है। वहां की जिंदगी के विविध रूपों और दुश्वारियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। मगर दुर्योग से वो वहशी सुबह जल्द ही आ गई, जिसके प्रतिशोध ने गाजा को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल पर अपने बर्बर हमले से हमास ने असंख्य दुखों को न्योता दे दिया। हमास ने जब इसराइल पर रॉकेट दागे, तब मोहताज को यह लग रहा था कि इस बार जंग बहुत महंगी साबित होने वाली है। कुछ घंटों बाद ही इजरायली हमले शुरू हो गए, भयानक वेग और बर्बरता को समेटे हुए। मोहताज के कैमरे ने उनको फिल्माना शुरू किया।
आम फिलिस्तीनी की पीड़ा, बेबसी और युद्ध की विडंबना उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। मगर 12 अक्टूबर को उन्होंने जो वीडियो और तस्वीरें डाली वो लाखों लोगों को मर्माहत कर गईं। इसराइल के हवाई हमले में उनके परिवार के 15 सदस्य मारे गए। अगले 107 दिनों तक वो इसी तरह हकीकत तफसील के साथ दुनिया के सामने लाते रहे। मगर इसराइली हमले की आलोचना करते हुए भी मोटाज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके किसी संदेश से नफरत की बूंद आए। मगर इसराइली फौज को यह सब नागवार गुजर रहा था। मोटाज को अलग अलग नंबरों से धमकियां मिलने लगी। घर पर बमबारी का खतरा बढ़ने लगा। अक्टूबर से गाजा में 120 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। ऐसे हालात में मोटाज के लिए एक एक दिन जब भारी पड़ने लगा तो उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों छोटे भाइयों और माता पिता के साथ उन्होंने गाजा से निकल जाने की इजाजत मांगी। मगर 23 जनवरी को गाजा छोड़ते हुए वो काफी गमगीन और कुछ शर्मिंदा भी थे, क्योंकि उन्हें जो सहूलियत मिली वो उनके देश के तमाम लोगों को हासिल नहीं है। मोटाज अब दोहा में रह रहे हैं। उन्हें जब भी मनोचिकित्सकों से मिलने की सलाह दी जाती है वो यही कहते हैं, अभी युद्ध विराम हुआ कहां है। वो इस युद्ध के खिलाफ दोहा से भी सक्रिय हैं। मोटाज की बहादुरी ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की

वायदा बताता हूं, रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों, बताता हूं, ये कुछ काम भी देशभक्ति की ही मिसाल है। आज सुबह जैसे ही उसने उठकर बाहर झांका, उसे कुछ समझ नहीं आया। गली में कितना कचरा जमा था, कितनी बदबू आ रही थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर कब से नल बहा जा रहा है। अपना घड़ा भर जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए ना, बाकी लोगों को भी तो प्यास लगती है, कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन नल खुला छोड़कर बस चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि इन छोटी छोटी बातों से कितना नुकसान होता है। कुछ लोग सड़क पर टेंट लगा देते हैं और गड्ढा भी खोद देते हैं। अरे भाई, इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, घर से बाहर निकल आया, बगीचे में गया, हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, बच्चे झूल रहे थे, लोग टहल रहे थे और कुछ व्यायाम भी कर रहे थे। इस खूबसूरत माहौल को देखकर वो सोचने लगा, इस बगिया की तरह ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, पर कुछ लोगों की नादानी की वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था, कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया, सामने रेलवे स्टेशन था, यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी, देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की, उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई, वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो, आपको क्या मिलता है। वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा। देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है।

आइए दोस्तों एक और काम की बात बताता हूं। एक मंत्र है, एक जुगाड़ है, एक योजना है, एक युक्ति है, अपना लीजिए, बहुत मजा आएगा। हम सभी अपनी जिंदगी में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाना चाहते हैं ना, हर वक्त हर चीज में। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते चलिए। जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया कहेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी तरफ अपने आप आएंगी। अब देखिए कितना आसान तरीका है ना ये। तो जिंदगी में ज्यादा पाने का आसान तरीका है धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना। आदत डालिए दोस्तों, जिससे भी मिलिए, जहां पर भी मौका मिले, शुक्रिया अदा करना आपकी आदत बन जाना चाहिए। शुक्रिया करते चलिए, जिंदगी में ज्यादा ज्यादा ज्यादा पाते चलिए।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबवा की आवाज।
1: इस जाबवा सेना के पराक्रमी कप्तान को कारगिल युद्ध के समय असाधारण शौर्य दिखाने के कारण
2: मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
3: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
4: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
5: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
4: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
5: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
4: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
6: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
6: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
6: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
7: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
3: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

0: विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशो, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशो, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: सपना हुआ सच।
2: जी हाँ।
3: राम राम भाई।
4: राम राम भाई, राम राम। अरे हरिया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?
3: अरे भाई, मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला जो करवाना है।
4: देखो भाई, मैं यहाँ गेट कीपर हूँ, सब जानता हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अफसर, सेठ, साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत फीस लगती है।
3: हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है।
4: क्या सुना है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ।
3: अरे भाई, मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका, अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना है, फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी।
4: अच्छा?
3: बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना है। अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
4: अरे वाह भाई, तुमने तो हमें नई बात बताई है। यदि ये सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। चलो चलो
3: चलो।
4: मैडम जी नमस्ते।
1: नमस्ते। नमस्ते शंभू।
3: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए।
3: जी धन्यवाद।
1: कहो शंभू, कैसे आना हुआ?
4: मैडम जी, ये हरिया है, अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं। मैंने समझाया भी, पर ये कह रहे हैं कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है।
1: अरे शंभू, तुम्हें नहीं मालूम, हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है, जिसमें गरीब छात्रों के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण रखा है।
4: अच्छा, तो मैडम जी, क्या मैं भी अपने बिटिया को दाखिला दिला सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, आजकल हमारे यहाँ दाखिला चल भी रहा है, आप दोनों आज ही फॉर्म भरकर दे दीजिए, क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा। बस तुम अपना BPL कार्ड या फिर SC ST का प्रमाण पत्र साथ जरूर लेकर आना।
3: देखा, मैंने कहा था ना।
4: आज मेरा सपना सच हो गया। मैडम जी धन्यवाद। और हरिया, तुम्हारा भी धन्यवाद।
3: और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक, शिक्षा का अधिकार हमारा,
5: हर सपना सच हुआ हमारा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: हसरत मोहानी।

0: आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में

0: 1999 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
1: कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माहे रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
0: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब, मोहानी की खिदमत में। अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
3: जी जी, शुक्रिया।
2: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
3: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
2: जी बस
0: जी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
2: जनाब बस जरा सी देर और, बस यू समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
3: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
2: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
2: मोहानी साहब
3: जी,
2: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
1: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
2: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
2: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है। शुक्र है।

0: सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
1: या खुदा,
0: नौश फरमाइए मियां।
1: लाइए
0: खाइए।
2: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
3: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
4: लिख दिया।
5: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
6: इरशाद-ए-गिरामी।
5: मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह क्या बात है। है मश्के सुखन जारी,
5: चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह
5: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
4: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत।
1: क्या क्या
3: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
4: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
7: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
5: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
4: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
7: जी नहीं नहीं नहीं, मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
5: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
7: नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
4: क्या
7: जी? अब एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
5: अरे मोहानी साहब, शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
4: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
5: नहीं नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
7: मोहानी साहब खामखा खर्च कैसा?
5: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
4: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
3: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
4: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
7: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गए।
4: आपने कुछ खाया ही नहीं।
7: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
4: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
5: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
4: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
5: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: जी शब्बा खैर।
5: शब्बा खैर।
6: बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाएं।
5: अरे हसरत,

0: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
1: मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगाम हयात जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है।
1: हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज।
2: भगत सिंह।
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
6: कौन है?
7: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
6: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
7: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
6: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
7: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
6: ये इस शीशी में क्या है?
7: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
6: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
7: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
6: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
7: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
5: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
7: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
7: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
5: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
8: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
9: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
8: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
10: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
11: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
10: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
11: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
10: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो

0: पाती हैं?
1: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है, इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
0: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है, उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
1: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है, तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं, जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
0: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है, और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है, क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
1: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
0: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए डॉक्टर।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं, और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले, या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे, तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
1: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
1: जी,
0: और डॉक्टर साहब,
3: क्या फाइलेरिया की दवाई
0: बचा जा सकता
1: है? जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
1: ये जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
0: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए, कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है, तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा। जी जी, रात की 10 बजे से 2 बजे तक दवा ज्यादा
1: बस सबसे ज्यादा दिखते हैं जी
0: जी।
4: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
0: जी
1: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए
0: जी।
5: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
6: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: हूँ से आरजे राकेश
8: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
7: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
5: नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोज नी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तीना समाधान नी वातियों लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रू से। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपु वातियों हामलवाना से कृषि मा गेंदाना फूल नी खेती नी वातियों। तो किसान भाइयों, जेवी रीते हाव जगह जगह पर फूल नो घणो उपयोग शुरू थाई गयो से अने मंदिरों मा कार्यक्रमों मा अने विवाह मा पण फूल नी घणी मांग रहे से। तो किसान भाइयों, ये एक नगदी फसल से अने एनी खेती करीने आपु घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई सकी। केवी रीते कमाई सकी ये बधी वातियो आपु हामलवाना से कृषि था जोड़ायेला विशेषज्ञ अने अनुभवी लोगो देखी। हाथे हाथ एक एवा किसान भाई देखी ज्या गेंदा नी खेती करीने घणो असल अने मोटो लाभ कमाई रह्या छे। तो सालो किसान भाईयो, हा वार नी करी अने हा मळी कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा गेंदा ना फूल नी खेती।
9: हमारे देश में गेंदे के फूल की एक अलग ही जगह है। जी हाँ, धार्मिक कामों की बात हो या फिर सामाजिक अवसरों की बात हो, इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया ही जाता है। ये बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है, जिसके चलते ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता है। और साथ ही बता दें, इसकी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक तरोताजा बना रहता है। और आपको बता दें कि हमारे देश में अब साल दर साल इसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इसकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है। इसकी खेती का स्तर काफी बेहतर हो गया है हमारे देश भारत में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में, साथ ही साथ गेंदे से जुड़े विशेषज्ञ और सफल किसानों से हम मुलाकात भी करेंगे। आज हमारे खास कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यवसायिक खेती के बारे में। गेंदा एक बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है, जिसके चलते बाजार में इसकी मांग जो है लगातार देखने को मिलती है। और बता दें आपको कि 12 मासी इसकी खेती की जा सकती है। ऐसे में किसान अगर इसकी व्यवसायिक खेती को अपनाते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं गेंदे की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
10: भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर बनी रहती है। भारत जैसे देश में जहां दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें भी गेंदे के फूल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। गेंदे के फूल लंबे समय तक सूखते नहीं है, इसलिए इनका उपयोग सजावट के काम में लाया जाता है। कम समय के साथ कम लागत की फसल होने के कारण ये भारत की लोकप्रिय फसल बन गई है। गेंदे के फूल आकार और रंग में आकर्षित होते हैं। इसकी खेती आसान होने के कारण किसान इसकी खेती इसे व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो दोनों मुख्य किस्में फ्रांसीसी गेंदे और अफ्रीकन गेंदे का प्रसार 16वीं सदी से मैक्सिको से हुआ था, जो कि धीरे धीरे अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण दुनिया भर में फैल गया। आज के समय में भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जा रही है।
9: मनमोहक और सुंदरता के चलते गेंदे के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं। पूजा अर्चना की बात हो, सजावट की बात हो, तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया ही जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं।
10: अपनी औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार गेंदा में कई सारे औषधीय गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी भी है। मोच आने पर सूजन की समस्या और घाव में गेंदा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज में भी गेंदा से लाभ मिलता है।
11: गेंदे के उपयोग की बात की जाए तो ये खुले रूप में उपयोग किया जाता है काफी तौर पे, और इसको मुख्य तौर पे माला बनाने में काम में लिया जाता है। मंदिरों में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। और अगर इसकी आजकल देखे जाएंगे तो गेंदे के पुष्पों से गुलाल बनाने की विधि भी स्टैंडर्डाइज की जा रही है। और आप देखेंगे ये जो है गेंदा, इसमें एक और मुख्य तौर पे मैं बताना चाहूंगी, ये कैरोटीनॉइड रिच होता है। इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे ल्यूटिन कहा जाता है। तो इसको मुर्गी आहार में मिलाया जाता है और इसकी अंडे का जो पीलापन होता है, एग योक बोलते हैं, उसका पीलापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग यह है कि ल्यूटिन को कहते हैं कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम में मदद करता है, जिससे और बुढ़ापे में इसमें एक डिजीज आती है जैसे आदमियों में एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, तो उससे बचाता है।
9: चाहे फसल कोई भी हो, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। फसल संबंधित विशेषज्ञों की जो सलाह है वो काफी अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह गेंदे की व्यावसायिक खेती को लेकर, आइए आपको बताते हैं।
10: गेंदा की खेती मुख्य रूप से सर्द मौसम में की जाती है। इस मौसम में गेंदा की बढ़वार और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा ये मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। हालांकि किसान भाई गेंदे की खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसमों में कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसकी खेती करें तो अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं।
11: जैसे कि पहले देखा गया है कि नंबर एक पर हमारा जैस्मिन पुष्प था, पर कुछ वर्षों में, लगभग 5-6 वर्षों में इसकी जगह गेंदा ने ले ली है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप होता जा रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मेक्सिको में इसका उत्पन्न हुआ है, उसके बाद ये 16वीं सदी में भारतवर्ष में आया है और ये पुर्तगीज ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से लेकर अब ये ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की ही फसल हो गई है, क्योंकि इसको पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगाया जाता है। और अगर इसके मुख्य राज्यों की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा एरिया कवर हो चुका है। और नए राज्य भी आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, इसमें भी इसके काफी इसका प्रचलन हो रहा है।
10: गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदा की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवम्बर दिसम्बर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन की या 4-5 पत्तियों की हो जाए तब उसकी रोपाई कर लेना चाहिए। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर से मिट्टी को हाथ से दबा देना चाहिए।
11: इसको बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1 किलोग्राम सीड लगता है और इसके 3 सीजन में लगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन, शरद ऋतु और रेनी सीजन। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसको फरवरी में लगाया जाता है और इसका रोपण मार्च में किया जाता है। अगर हम रेनी सीजन की बात की जाए तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा जून जुलाई में और उसके अगस्त में इसका रोपण होना चाहिए। अगर हम शीतकालीन ऋतु की बात की जाए तो इसको हम सितंबर एंड में लगा सकते हैं और अक्टूबर में इसका रोपण किया जा सकता है।
10: गेंदे की फसल लेने के लिए खेत को तैयार करते समय एक गहरी जुताई कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेनी चाहिए। इसके अलावा जुताई के समय 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में मिला दें ताकि उपज अच्छी मिल सके। 6 बोरी यूरिया, 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 3 बोरी पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिला दें। यूरिया को 3 बराबर भागों में बांटकर एक भाग एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट व पोटाश की पूरी मात्रा को रुपाई के समय दें। गेंदे की बुआई अगर किसान लाइन में करें तो लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई गेंदे की खेती को थोड़ा ऊंचाई दें ताकि पानी का जमाव ना हो सके, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है।
11: गेंदे को लगाने के लिए हमें सबसे पहले नर्सरी बेड तैयार करने पड़ेंगे। नर्सरी की बेड की लंबाई आप 3 मीटर से 4 मीटर तक रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाएगी और इसको ऊंचा रखना पड़ेगा ताकि इसमें पानी रुके ना। तो उसकी हाइट आप रख सकते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। आपको इसको पंक्ति में लगाना पड़ेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं और जब आप इसको लगा दीजिएगा तो आपको इसके ऊपर FIM से ढक दीजिएगा। आप देखेंगे लगभग 20 से 25 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है रोपण के लिए और हम इसको मेन मुख्य खेत में लगा सकते हैं। मुख्य खेत में भी इसको लगाने की अपनी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे कि अफ्रीकी गेंदा जो कि मैंने कहा कि काफी ऊंचा होता है, उसको आप 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते थे और फ्रांसीसी गेंदा को आप 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। पर फ्रांसीसी गेंदा में हमारी पूसा की वैरायटी है पूसा अर्पिता, जो कि एक एक्सेप्शन है, वो काफी लंबी होती है, उसको आपको 60 सेंटीमीटर पे ही लगाना पड़ेगा।
9: कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए गेंदे की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
1: गेंदा की खेती के लिए दोमट और बलुआर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होना बेहतर होता है। सिंचाई की बात करें तो ये मौसम में निर्भर करती है। सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 4 से 5 दिन पर भी गेंदे की फसल में सिंचाई करें। गेंदे को अच्छी देखभाल मिले इसके लिए पौध 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है।
2: इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का पीएच लगभग 7 से 7.5 चाहिए और मिट्टी जो है सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर अब सिंचाई की बात की जाए तो ये मौसम पे निर्भर करती है। मौसम मतलब सर्दी में आप इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में ये अंतराल 4 से 5 दिन का ही रह जाता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमें शुरू में ही इसके लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के लिए, और कम से कम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम ही फास्फोरस लगता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन की अतिरिक्त डोज भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया 0.1%, पर ये फूल आने से पहले तक ही दी जानी चाहिए। फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग बंद कर दीजिए।
0: किसी भी फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में उन्नत किस्मों का चयन जो है काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक ऐसा ही है गेंदे की फसल के साथ भी। अगर हमारे किसान भाई बहन गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: गेंदा की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन और फ्रांसीसी। अफ्रीकन गेंदे की किस्मों की बात करें तो इसके पौधे अनेक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ बौनी किस्में भी होती हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बहार, पूसा बसंती, अफ्रीकन येलो शामिल हैं, जिनका चयन कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही बाजार में भी इन किस्मों की मांग भी काफी है और दाम भी अच्छा मिलता है।
2: इसमें दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक अफ्रीकी गेंदा है और एक फ्रांसीसी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो लंबा होता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है। फ्रांसीसी गेंदा जिसको जाफरी भी कहा जाता है वो थोड़ा शॉर्ट स्टेचर नेचर के होते हैं। अगर अफ्रीकी गेंदा की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार, पूसा बसंती गेंदा शामिल हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करें तो उसमें पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, पूसा दीप, पूसा उत्सव शामिल है।
1: वहीं बात करें फ्रांसीसी गेंदे की तो इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में पूसा अर्पिता, पूसा दीप, पूसा पर्व, रेड ब्रोकेट, कपिल येलो, बोलेरो, बटन स्कोच आते हैं।
2: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा भी भारत में बहुत जगह पे गेंदे पे काम हो रहा है, जैसे कि आपके IIHR बेंगलुरु में, इसमें भी गेंदे पे काफी काम हो रहा है। इनके यहाँ से बहुत सारी किस्में निकली है, जैसे कि अर्का बंगारा, अर्का अलंकारा, अर्का अग्नि और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा BCKV कल्याणी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी वैरायटीज निकली है, बिधान मैरीगोल्ड 1, बिधान मैरीगोल्ड 2। और यहाँ हरियाणा में यहाँ से 2 वैरायटीज निकली है, हिसार जाफरी, हिसार ब्यूटी।
0: गेंदे की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग और सही समय पर तुड़ाई और भंडारण का खास स्थान है। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
1: रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखीय कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से फूल थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए। इसमें फसल के बीच हवा का संचार ठीक से होता होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रुपाई के 60 से 70 दिन पर गेंदा में फूल आता है जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। शीतकालीन फसल जनवरी के मध्य में फूल देना शुरू कर देती है, वहीं मानसूनी फसल सितंबर के मध्य से फूलों का उत्पादन देने लगती है। ग्रीष्मकालीन फसल में मध्य मई से फूलों का आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें फूलों की तुड़ाई की तो गेंदे की फसल 70 से 80 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इसकी तुड़ाई सुबह के वक्त करें और तोड़कर ठंडी जगह में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरियों में भरकर इसे बाजार में भेज देना चाहिए।
2: गेंदे में शीर्ष नोचन भी किया जाता है जिसे आमतौर पर पिंचिंग कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीकन प्रजातियों पे किया जाता है क्योंकि वो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। अगर शीर्षनोचन वहाँ नहीं किया गया तो उनकी आंतरिक शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है जिसकी वजह से गेंदे की यील्ड कम हो जाती है। तो हम इसको रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन पे शीर्षनोचन की क्रिया को करते हैं, उससे इसकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता ज्यादा आती है। और ये फसल 70 से 80 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसमें हम 4 से 5 बाई तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर इसके यील्ड की बात की जाए तो इसमें भी अफ्रीकी और फ्रांसीसी गेंदा पे निर्भर करती है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो 20 से 24 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे सकते हैं, बल्कि फ्रांसीसी गेंदा में यील्ड आती है 18 से 20 टन पर हेक्टेयर।
0: फसलों में कीट और बीमारियों का लगना हमारे किसानों के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे में फसलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी कुल आमदनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है।
1: अन्य फसलों की भांति गेंदे की फसल में भी रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान भाइयों को सही समय पर रोग नियंत्रण सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंदे की फसल में ज्यादातर कैटरपिलर, लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर जैसे कीट लगने का खतरा होता है जो इसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन 0.1% का छिड़काव करें। गेंदा में मोजेक चूर्णी फफूंद मुख्य रूप से लगता है। मोजेक लगे पौधों को उखाड़कर मिट्टी तले दबा दें एवं गेंदा में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें जिससे मोजेक के विषाणु स्थानांतरित करने वाले कीट का नियंत्रण हो, इसका विस्तार पर रोक लगे और वो अन्य पौधों को नुकसान न पहुंचाए। चूर्णी फफूंद के लिए तो 0.2% गंधक का छिड़काव करें।
2: अगर हम मुख्य रोगों की बात की जाए तो मुख्य रोग इसमें नर्सरी स्टेज पे भी आता है जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है और हम इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नर्सरी स्टेज पे ही इस फंगस का कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम मुख्य खेत पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेरिया एक खास रोग है जो लगभग हर सीजन में आता है। इसके लिए भी कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम मुख्य कीटों की बात की जाए तो इसमें कैटरपिलर्स काफी ज्यादा आते हैं, उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिरेट 0.2% का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड भी आते हैं इसमें। एफिड के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासोस्टॉक रोगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए हमारे देश की सरकार और साथ ही कृषि विभाग नित नए प्रयास करते रहते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और समय समय पर हमारे किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। आइए इसके बारे में भी आपको जागरूक करते हैं।
1: समय के साथ साथ खेती किसानी में कई बदलाव आ चुके हैं। किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम लागत में बम्पर मुनाफा देने वाली फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहा है। गेंदे का फूल भी कुछ इसी तरह की फसल है, जो कम खर्च और कम मेहनत में अधिक उपज और आमदनी देने वाली फसल है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती भी करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों को फूलों की खेती में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करती रहती है। सरकार किसानों को गेंदे की खेती करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
2: किसान भाइयों, हमारी जो जनपद में योजना संचालित है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके तहत जो फूलों की खेती करके किसान भाई एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग किसानों को गेंदा, गुलाब इत्यादि फूलों की जो खेती है करते हैं उनको 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देते हैं। साथ साथ ही जो इनपुट लगता है एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर, इसको भी हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई गेंदा या फूलों की खेती करके जो हमारी खेती है उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में जो फूलों की डिमांड है जो वर्ष भर बनी रहती है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ही जो किसान भाई कोई ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें प्लांट टू प्लांट दूरी ज़्यादा है, तो उसमें इंटर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जैसे किसान भाई अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ने के बीच में जो जगह है उसमें इंटर कल्टीवेशन भी करके, एक तो सबसे बड़ी बात है गेंदा करने से क्या होता है, हमारी जो फसलों में नेमाटोड लगता है तो नेमाटोड से भी फसलों का बचाव होता है और आपको एक एडिशनल बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। अभी वर्तमान में हम अगर बात करें तो हमारे गेंदे का लगभग 100 से 120 रुपए रेट है, तो किसान भाई इसको अच्छे से अगर करेंगे, वृत्त स्तर पर करेंगे, तो अच्छा लाभ लेकर अपनी आमदनी को बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो हमारा वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में संचालित है, अगर उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर भी हमारे विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और अगर हमारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, जमीन के पेपर लाके हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पंजीकरण करा लें, और या तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94-68-35-90-89।
0: उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदे की खेती में भी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं कैसे मिली इन्हें गेंदे की खेती से कामयाबी।
1: वीरेंद्र पाल मौर्य बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पहले तो गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन खेती से और अधिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने गेंदे की खेती का सहारा लिया। वर्ष 2005 में इनके गांव में उद्यान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों से गेंदे की खेती करने की सलाह मिली। तब से वे परंपरागत खेती के हवाले गेंदे की खेती कर रहे हैं और इन्हें काफी लाभ भी मिला है।
3: मैं पहले यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं, गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का, तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पर अप्लाई कराया, तो उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो दो तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है।

0: रहे थे गेंदे से पहले, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और पहले सस्ता भी था गेहूँ, अब जाके महंगा हो गया। पहले गेहूँ धान बोई 1000 रुपये, 900 रुपये कुंटल धान था और 1200-1100 के लपेट में गेहूँ था। उससे बढ़िया तो हमने कहा इससे बढ़िया गेंदा ही करते हैं, इससे ज़्यादा गेहूँ से ज़्यादा मार्जिन, धान से ज़्यादा मार्जिन गेंदे में हमें दिखा, तब जाके हमने गेंदा लगाया। और वीरेंद्र पाल मौर्या जो हैं हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है, तो इनने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। एक एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में, मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग लगभग मान लो एक एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा, और 30 से 35 हजार की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक, पानी खाद पानी दवाई ववाई सब लगा के। और इसमें दो प्रकार की वैरायटी है, एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो इसकी है पीले वाले की ज्यादा बढ़िया है। ये अपने पूजा में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बारात में और फंक्शन में ये गेंदे काफी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, सबसे ज्यादा मंदिर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है।
1: अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वो खाली पड़ी जमीन पर या सह फसली गेंदे की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।
2: आज आपने अगर शाम में तुड़ाई की है तो अगले दिन आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। 6 डिग्री के आसपास आपको इस रख सकते हैं इसको, और ये कम से कम 8 से 10-12 दिन तक चल सकता है।
1: गेंदे से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हो तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
2: जैसे कि बात कर रहे हैं कि फार्मर अपने आप तो ये फसल उगा ही रहे हैं, साथ साथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। कर्नाटका तमिलनाडु केरला में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष से भी ये ल्यूटिन एक्सपोर्ट हो रहा है, और जनरली ये केरला से और तमिलनाडु से कुछ फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं।
3: तो जाना आपने कि अगर हमारे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं वो अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खाली पड़ी हुई जमीन या फिर सह फसली खेती के तौर पर गेंदे की खेती को अपना सकते हैं। बता दें साल भर इससे अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। अगर आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो सालाना 15 लाख तक की कमाई की जा सकती है, और अगर त्योहारी सीजन में आपके फूल उपलब्ध हैं तो इस मुनाफे को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गेंदे की व्यवसायिक खेती आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप जागरूक हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इसे अपनाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे।
4: तो किसान भाइयों, हमने अपनी बात थाम ली, गल रसिया न फूल नी खेती निभाती हो, एतरे गेंदा न फूल नी खेती निभाती हो। इनो फूल नो हार बने से अने हार नी बाजार में घनी मांग से किसान भाइयों। आज ना समय में आपु को समय पर अगर फूल नी माला लेवा जाए तो आपु समय पर माला नी मले, क्योंकि इनी मांग घनी ज्यादा बढ़ी गई से। जगह जगह पर हाव फूल हार नो उपयोग था मंडी गयो से किसान भाइयों, अने आज ना तारीख में इनी बाजार में तो मांग से, अने बीजा बीजा क्षेत्रों में पण इनी अलग अलग मांग रहे से। तो किसान भाइयों, आप ये जानियो कि गलरसिया की खेती तकनीकी तरीका देखी केवी रीते करी सकी अने केवी रीतने दवा पानी लागे, ये बड़ी बातें आज हम तुम्हारी बस मालीन आया। किसान भाइयों, कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हामली हाव आधुनिक तकनीकी देखी दूध डेरी नी व्यवसाय केवी रीते करी सकी अने इना में अपना किसान भाई केवी रीते अगाड़ी बढ़ी सके, ये बातें आपो हामली।
5: नमस्कार, आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक अत्याधुनिक डेयरी फार्म में, जिसे स्थापित किया है एक बेहद ही होनहार युवा उद्यमी ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई तो की है, उच्च शिक्षा हासिल की है, MBA किया है और साथ ही लंदन से ये पढ़कर आए हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने चुना अपने करियर के लिए डेयरी फार्म को। ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को नहीं होगी जो ये जानते हैं कि आज की तारीख में डेयरी समुद्री क्षेत्र भारत में एक उभरता हुआ क्षेत्र है।

0: क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे कि दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन वहीं यहाँ पर उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। ऐसे में दूध और डेयरी उत्पादों के लिए यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। ऐसे में हमारे आज के युवा पशुपालक किस तरह से डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजना का लाभ लेते हुए आप भी इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।
1: भारत के सीने में आज भी ग्रामीण संस्कृति धड़कती है और ग्रामीण संस्कृति के सीने में धड़कती है कृषि पशुपालन। खेती और पशुओं से इंसानों का नाता सदियों पुराना है, करीब 13,000 साल ईसा पूर्व का। यही वो दौर था जब जानवरों को पालतू बनाने का चलन शुरू हुआ। आज भी ये व्यवसाय खूब फल फूल रहा है और तरक्की कर रहा है। 20वीं पशुगणना बताती है कि भारत में अलग अलग जातियों के 85 करोड़ से भी अधिक पशु हैं। इनमें दुधारू गाय और भैंसों की संख्या 13 करोड़ 63 लाख से ऊपर है। अगर सिर्फ गायों की बात करें तो आंकड़ा 8 करोड़ 13 लाख है और यहाँ के 3.48% लोग पशु उत्पादन के काम में लगे हैं। 1951 के दौरान भारत में दूध उत्पादन करीब 1 करोड़ 70 लाख टन था, जो 2013-14 में करीब 14.25 करोड़ टन हो गया। आज हम सालाना 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इस उत्पादन में गायों का योगदान 52% है, बाकी 48% में 45% भैंसों का और 3% हिस्सा बकरियों का है। आज पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी वृद्धि दर 6% से भी अधिक है। यही वजह है कि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% तक चला गया है। ये आंकड़े हमारे देश को दूध के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा देते हैं। ज्यादा उत्पादन की वजह से ही हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। 1950-51 में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता महज 130 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 444 ग्राम हो गई है। इसका मतलब हुआ कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से भी ऊपर है। दूध हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आप शहरों में रह रहे हो या गांवों में, सफेद रंग के इस द्रव की जरूरत हर जगह है, हर किसी को है। यही जरूरत दूध उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाओं की नई उम्मीदें जगाती है और इन्हीं उम्मीदों को दूहने के लिए पशुपालकों का एक नया वर्ग सामने आ रहा है। इस वर्ग में युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। जिनके पास संसाधनों की कमी है वो सामान्य तरीकों से काम चला रहे हैं और जिनके पास संसाधन है उनकी दिलचस्पी हाईटेक विधियों में है। अब यहाँ से एक सवाल जन्म लेता है कि आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में कोई इंसान पशुपालन जैसे व्यवसाय को भला क्यों अपनाना चाहेगा। ऐसे ही सवालों को लेकर हम नोएडा के एक डेयरी फार्म जा पहुँचे। ये अत्याधुनिक फार्म लंदन से लौटे एक नौजवान दुष्यंत भाटी का है। वो MBA करने के लिए 7 समंदर पार गए थे। डेयरी फार्म का आइडिया वहीं से आया।
0: डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बहुत से युवा आजकल इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफल डेयरी उद्यमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, दुष्यंत भाटी जी। आइए उनके अनुभव के बारे में यहाँ पर जानते हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में जब हमने जाना तो बहुत ही खास बात ये हमें पता चली है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, यहाँ तक कि विदेश में भी आप उच्च शिक्षा हासिल करके आए हैं, लंदन में आपने पढ़ाई की है। हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद कैसे ख्याल आया कि डेयरी क्षेत्र से जुड़ा जाए और इसे एक उद्यम की तरह शुरू किया जाए।
2: जी मैम नमस्कार, आज हमारे फार्म पे आने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया, एजुकेशन मेरी बेसिक जो प्राइमरी हुई है वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ इंडिया में अपने अंडर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी लंदन से MBA से। तो वहाँ पर मैंने जितना भी अपने जितने डेयरी फार्म्स थे, जो इस तरीके के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज थी, मैंने उनको स्टडी किया। उसके बाद मैंने देखा करके कि भाई अपने इंडिया में भी इस तरीके का एक लेवल हमें लाना चाहिए।
1: दुष्यंत ने लंदन में डेयरी फार्म की स्टडी जरूर की थी, लेकिन एक MBA छात्र के लिए ये नया क्षेत्र था। यही वजह है कि डेयरी फार्म को इन्होंने भविष्य की योजनाओं का हिस्सा बनाया, प्राथमिकता डेवलपर बनने की रखी। फिर इनका मन बदल गया और भविष्य की योजना वर्तमान बन गई। इन्होंने काम शुरू करने से पहले NDRI करनाल से प्रशिक्षण लिया, कुछ डेयरी कंपनियों के मैनेजरों के साथ वक्त बिताया और पंजाब के किसानों से मुलाकात की।
2: जितनी लैंड की अपनी स्केर्सिटी आ रही है उसको देखते हुए कि भाई नंबर ऑफ जो लार्ज फार्म्स हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे हम लोग आगे जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करेंगे मार्केट में।
1: इस फार्म में फिलहाल 100 से भी अधिक गायें हैं। आज से 5 साल पहले इसे महज 6 गायों के साथ शुरू किया गया था। हष्ट पुष्ट शरीर और दूध से लबालब भरे थन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ काफी मेहनत की गई है और गायों का बहुत ख्याल रखा गया है।
0: अत्याधुनिक तकनीक से डेयरी फार्म स्थापित करने के बाद भी पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि उनके स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन किया जाए। ऐसे में दुष्यंत भाटी जी किस तरह से अपने फार्म में पशुओं के स्वास्थ्य और उनके आहार का ध्यान रखते हैं?
1: यहाँ पर गाय पूरी तरह आजाद है। फार्म में ना तो आपको खूंटा नजर आएगा ना गायों के गले में रस्सी। इनका जब मन करेगा खाना खाएंगी, जब मन करेगा पानी पिएंगी। गाय सफाई को पसंद करती है, इसलिए फार्म में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। अभी गर्मी का मौसम है तो शावर और पंखे चल रहे हैं। अक्टूबर में इन्हें बंद करना होगा और सर्दियां आने पर गौशाला में पर्दे लटकाने होंगे। दुष्यंत का मानना है कि बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को शारीरिक ही नहीं मानसिक आराम भी चाहिए।
2: गले के टैग्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है कि उनका डेटा हमें मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि उनका मास्टिकेशन कितना है, मास्टिकेशन मींस जुगाली कितनी है और दूध कितना दिया उन्होंने, उनका टेम्परेचर लेवल क्या है, उनकी मूवमेंट कितनी हुई है, कितनी देर उन्होंने फूड का इंटेक किया है, तो नंबर ऑफ आवर्स वो हमें कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं जिससे कि हमें डेटा प्रोवाइड होता है कि हम देख सकें कि भाई गाय को कितना उसने पूरे दिन में अपनी मूवमेंट करी है, कितना हैबिट्स में खाना खाया है, और उससे हमें मिल्क प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है कि हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितना हमें दूध उसने प्रोड्यूस करके दिया है। और उसी के साथ लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सारा, जिसमें कि गाय को बांधा नहीं जाता है और उसमें उसको खाना 24 घंटे के लिए दिया जाता है। 2 बार हम लोग फीडिंग करते हैं, मिल्क अनलिमिटेड, वाटर अनलिमिटेड है।
1: हर गाय के आहार की गणना की जाती है, उसके खान पान का निर्धारण करते समय ये भी देखा जाता है कि उसका वजन कितना है, वो किस स्टेज में है और दूध कितना दे रही है। हर 15वें दिन डाइट चार्ट बदल दिया जाता है।
0: अब से मैं पशु के आहार के बारे में और विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस किस तरह का आहार आप उनको देते हैं और क्या उसमें भी मौसम के अनुसार तब्दीली करते हैं।
2: कि जो आहार बनता है पशु का वो 4 चीजों से बनता है, जिसमें कि हम लोग हरा चारा लेते हैं, भूस लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड डाइट होती है और साइलेज हम लोग प्राइमरी इन 4 चीजों पे रखते हैं। बाकी एडिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह और होते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द काउ, तो उसके अंदर भी हम मेंटेन करते हैं कि भाई कितना साइलेज देना है, कितना भूस देना है, कितनी फीड देनी है, फीड की जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हम एज पर द मौसम चेंज करते रहते हैं।
1: कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से पशुओं को चारा मिलता है और पशुओं से फसलों को खाद। दुष्यंत के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है मगर इतनी भी नहीं कि 100 गायों का पेट भर सके। चारे के लिए उन्हें दूसरे किसानों से संपर्क करना होता है। इस तरह उनका डेयरी फार्म आसपास के किसानों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है।
2: हरा चारा हम लोग किसानों से उगवा लेते हैं, अपने पास भी जमीन है उसमें भी हम उगवाते हैं, और मक्का हम लोग बाहर से प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरीके के इनके अलग अलग डाइट्स होती हैं जो हम मौसम के हिसाब से उससे फीड बनवाते हैं। कुछ बाहर की कंपनीज हैं उनसे भी ले लेते हैं, हम लोग अपना भी फीड प्लांट हमारा लगा हुआ है, हम उसे भी बनाते हैं और उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द काउ उसके साथ हम लोग जितने भी तरीके के 28 तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें फीड में डाल के उसको फीड को तैयार करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग इन गायों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो फीड डालते हैं, उसके साथ ही पूरा TMR मेंटेन करते हैं। TMR वो चीज है जो टोटल मिक्स राशन है, जिसमें कि पूरा एक बैलेंस डाइट दी जाती है थ्रू आउट द ईयर एज पर द वेदर। उसमें ये जितना भी हमें कंसंट्रेशन डालना है, कितना हमें विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। जो अपनी देसी पदार्थ हैं जैसे हल्दी है, सतावरी है, वो भी हम समय समय पर डालते हैं। जैसे कोई गाय ग्याबन है उसके साथ हम लोग उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, वो इस तरीके के जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
1: दुष्यंत MBA है, इसलिए वो खुद ही मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं और कांच की बोतलों में दूध पैक करके बेच रहे हैं। दूध के अलावा दही, पनीर, घी, छाछ और मावा सब कुछ यहाँ बनता है।
0: इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब हमें बताएं कि दूध तो है सबसे प्राथमिक जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो मिलता है हमें, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं आपके?
2: दूध के साथ हम लोगों ने फिर पनीर बनाया, फिर घी बनाया और अब हम लोग स्वीट्स में भी हैं और रेस्टोरेंट में भी आ चुके हैं। वो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खुल गया है लास्ट ईयर। और अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क एंड घी, पनीर, बटर मिल्क, छाछ, ये सारी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं बाय नेक्स्ट ऑफ द मंथ।
1: शुरुआत से ही ये डेयरी फार्म अच्छा कारोबार कर रहा है। कोरोना महामारी के समय बिजनेस थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से पटरी पर लौट आया है। अच्छी कमाई की वजह से ही दुष्यंत दूसरे किसानों और नौजवानों को भी डेयरी फार्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो अब तक 40 गांवों के किसानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं और उन्हें डेयरी फार्म विकसित करने के तरीके बता रहे हैं।
0: कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डेयरी फार्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए डेयरी फार्म से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
1: दुष्यंत के पिता हरीशचंद भाटी अपने इलाके का जाना माना नाम है। खेती और पशुपालन इनका पुश्तैनी काम रहा है। उनका कहना है कि बेटे को बड़ा आदमी बनना था, इसलिए MBA के बाद नौकरी की बजाय खुद का कारोबार विकसित किया।
0: दुष्यंत भाटी जी की सफलता के बारे में क्या विचार है उनके पिताजी श्री हरीशचंद भाटी जी का, ये उन्हीं से जानते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित है। तो हरीशचंद जी, आप अपने क्षेत्र में बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और आपके सुपुत्र ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, विदेश में पढ़कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने डेयरी फार्मिंग को चुना। उनकी सफलता को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, जैसे कहावत है कि पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं, तो ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी जो एजुकेशन है वो पहले नोएडा में हुई और फिर अमेठी में हुई, फिर ये इंग्लैंड चला गया और इसने वहाँ जाकर के फिर अपने को एक्सपोज किया और फिर मार्केटिंग में और दूसरी क्षेत्रों में इसने बड़ी संभावनाएं संभाली। और जब ये वहाँ से लौटे तब से 6 वर्ष पहले, तब हमने इसको ऑफर दिया था कि भाई आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो इसने मना किया और कहा कि मुझे बिजनेस करना है। तो हम लोग किसान लोग हैं गुर्जर जाति से, तो हमारे यहाँ बिजनेस में एक रिस्क होता है और वो लेने के लिए गांव के बच्चे तैयार नहीं होते। तो इसने कहा कि मुझे बिजनेस करना, तो मैंने कहा कि भाई उसमें आपको क्या संभावना लगती है और नौकरी आप प्रेफर नहीं कर रहे तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहा कि नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है भाई, बड़ा आदमी बनना है तो आप बड़ा आदमी बन जाइए। तो हमारी कुछ लैंड थी कासना में भी और जहाँ ये खड़े हैं यहाँ भी 60-70 बीघा ज़मीन है। तो हमने इनको कहा कि आप इसमें जो NCR के काम हैं बिल्डर्स लाइन वगैरह के, उसमें आप जाके देखिए। तो इसने स्टडी कराया तो इसका मन बिल्डिंग लाइन में, मकान बनाने में या फ्लैट बनाने में नहीं लगा। फिर ये नेचुरली जो हम लोगों के फोर फादर्स भी करते आए हैं दूध का काम और इस तरह का काम जो है गाय का भैंस का, तो वो हम लोगों का पुश्तैनी काम था। तो फिर इसने एक उत्तर प्रदेश सरकार के की एक स्कीम थी काम धेनु, और उसमें 1 करोड़ 30 लाख लेके और 1 करोड़ बैंक से 30 करोड़ अपना लगा करके इनिशियली उसको छोटे से रूप में 6 साल पहले पूरा किया। लेकिन क्योंकि फिर इसका माइंड बहुत फर्टाइल था तो वो बहुत छोटी चीज़ हो गई। फिर इसने इसको ऑटोमेटिक प्लांट में कन्वर्ट किया और फिर इसने एक रिसर्च की डेनमार्क में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस कारोबार के बारे में, फिर पंजाब में स्टडी किया और फिर ये मुश्किल मिजाज से इसको लगा कि यहाँ काम करना चाहिए, तब इसने इसका काम शुरू कराया और फिर इसको ऑटोमेटिक बनाया। अब ये एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है और जो नोएडा गेटर नोएडा में बोटलिंग से अभी तक वो दूध देता है और इसने एक लाइसेंस भी वर्ल्ड लेवल का ले लिया है, जिससे इसका घी भी अब दुनिया में जाएगा।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। एक उद्योग के रूप में ये 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें से ज्यादातर या तो छोटे और सीमांत किसान हैं या फिर भूमिहीन तबका।
0: डेयरी व्यवसाय का प्राथमिक उत्पाद दूध है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई तरह के डेयरी उत्पाद हैं जिनकी बाजार में बहुत ही अच्छी मांग रहती है। तो आइए जानते हैं कि दूध और इसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में किस तरह के विकल्प और किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं।
1: दूध से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इन उत्पादों को बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे आगे है। हमारा देश बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है, खासकर मक्खन, ऑयल, पाउडर के रूप में दूध और क्रीम, घी, लस्सी, पनीर, स्किम्ड दूध पाउडर और पूर्ण दूध का निर्यात कई देशों में हो रहा है। 2022-23 के दौरान भारत से 67,573 टन डेयरी उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनसे 2,27,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
0: डेयरी व्यवसाय पारंपरिक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आज की तारीख में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
1: राष्ट्रीय डेयरी योजना के विकास और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के कारण डेयरी फार्मिंग का बुनियादी ढांचा काफी बेहतर हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत इस क्षेत्र को अच्छा प्रोत्साहन मिला है। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। पशुओं की उत्पादकता और रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से पशु आबादी के कानों में टैगिंग की जा रही है, ताकि पशुओं की बीमारियों का पता लगाने, निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर विपिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजना है खास तौर पर जो चलाई जा रही है, जिसका जो पशुपालक है वो लाभ ले सकते हैं, जो डेयरी उद्यम से जुड़ना चाहते हैं।
2: धन्यवाद मैडम। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म जो लॉन्च की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी भारतीय ब्रीड्स हैं, भारतीय नस्लें जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनका संरक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4,01,00,000 रुपया का है। इसके लिए आप nddb.coop की साइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इसमें लगभग 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको 200 भारतीय नस्ल के पशु पालने होंगे, जिसमें कि प्रत्येक साल आपको ये मानते हुए कि 50% जानवर आपके गाभिन हो जाएंगे, तो उनसे हम

0: अगर मोर्टेलिटी रेट निकाल भी दें तब भी 90 बछिया आपके पास मौजूद रहेंगी। उन 90 बछियाओं को आपको सेल आउट कर इसके फार्म को आगे बढ़ाना है। ये योजना की सब्सिडी आपको प्रत्येक 4 चरण में जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करते जाएंगे उसी दशा में आपको 50-50 लाख रुपए की कर 4 बार में आपको योजना की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कर दी जाएगी।
1: बेहतर डेयरी कारोबार के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहला है अच्छी नस्ल के सांड से गर्भाधान, दूसरा है आहार, तीसरा साफ सफाई, रोग प्रबंधन और टीकाकरण, और चौथा है पेट के कीड़ों की दवा दिलाना।
2: डॉक्टर विपिन, डेयरी उद्योग जो है इसमें भी कई तरह की नई तकनीकें अब आ गई है, खासतौर पर अगर नस्ल सुधार की बात करें या फिर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में किस तरह की योजनाएं और हैं जिनका लाभ ले सकते हैं पशुपालक?
0: जो मेन तकनीक या अभी हमारे सामने जो निराश्रित गौवंश की समस्या आ रही है उसके निदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा एक अभिनव प्रयोग किया है जिसका लगातार हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे पास वर्गीकृत बीर, जिसको कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन कहते हैं, उसके द्वारा हम अब पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की योजना का संचालन कर रहे हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है कि इसकी अगर हम मार्केट कॉस्ट देखें तो लगभग 1250 रुपए थी, लेकिन विगत वर्ष तक सरकारी लेवी इसकी जो थी वो 300 रुपया ली जा रही थी, लेकिन कृषक भाइयों को और पशुपालक भाइयों को सुविधा देने के लिए इस कृत्रिम गर्भाधान की शुल्क केवल 100 रुपए कर दी गई है। इसमें ये एश्योर्ड है कि आप जो भी जानवर कराएंगे उसमें 90% तक केवल फीमेल काफ ही बॉर्न होगा। जब फीमेल काफ बॉर्न होगा तो मेल काफ की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि मैकेनाइज युग में ट्रैक्टर वगैरह का काम खत्म हो चुका है, इसलिए मेल काफ की उपयोगिता काफी कम हो चुकी है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सालय है उस पर आप जाकर वर्गीकृत बीर से अपने जो भी, अभी हमारे पास केवल गौवंशीय पशुओं का वर्गीकृत बीर उपलब्ध है, बहुत ही जल्दी महीष वंशियों का भी वर्गीकृत बीर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पर आगे भी कार्य कर रही है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक जो कि अभी हमारे पास लैब में है, लैब टू लैंड तक आने में उसको थोड़ा सा समय है, लेकिन आगे हम उस तकनीक का भी प्रयोग फील्ड में करेंगे।
1: 70 के दशक में हमारा देश दूध की कमी से जूझ रहा था। प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता घटकर 107 ग्राम रह गई थी। तब देश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डेयरी क्षेत्र की जो सफलता आज हम देख रहे हैं उसमें इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में कोशिशें हो रही है। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अलग से डॉक्टर कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाता है।
2: आज के कृषि के कार्यक्रम में कि किस तरह से आज के युवा डेयरी क्षेत्र से बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुई वात हामली गेंदा ना फूल नी खेती नी वात्यो अने कार्यक्रम नी बीजी कड़ी में आधुनिक तरीका देखी दूध उत्पादन नी वात्यो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा अने खेतीवाड़ी नी समस्याओ अने तीना समाधान नी वात्यो पन लावी से अने नवी नवी खेती नी तकनीकी वात्यो पन लावी से। किसान भाइयों, हम आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातियों हामले अने आपड़ी खेतीवाड़ी ना क्षेत्र में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू बस एतरी बात, केम कि हाल समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कई था, हामलता रहेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर तमारा रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लेखिका, प्रेरणादायी व्यक्तित्व और अद्भुत जज्बे वाले इंसान के रूप में भी है। उन्होंने कानून की पढ़ाई गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से की, प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, और साथ ही अपनी लेखनी के माध्यम से समाज, रिश्तों, संवेदनाओं और आत्मबल को बेहद गहराई से अभिव्यक्त किया। उनकी पहली पुस्तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म जैसे गंभीर विषय पर आधारित थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, और अब उनकी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म रिश्तों, आत्मसम्मान, हीलिंग और इनर स्ट्रेंथ जैसे विषयों को एक नई संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं लेखिका, वक्ता और राजस्थान सरकार की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर कोमल जैन का। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच आलोक जी।
1: तो कोमल जी, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की, बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब शुरुआत से ही कर लेते हैं, और शुरुआत आपके बचपन से कर लेते हैं। बताइए कुछ अपने बचपन के बारे में, बचपन आपका कहाँ बीता, अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, आपका घर का माहौल कैसा था, फादर आपके जुडिशियल सर्विसेज में थे तो क्या बहुत गंभीर वातावरण था, कुछ उसके बारे में बताइए हमें।
2: जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आलोक जी। मेरा बचपन जो है वो जोधपुर में बीता था, और ये मेरे नाना नानी ने मुझे बड़ा किया था। टिल द एज ऑफ 8 years मैं अपने ननिहाल में ही बड़ी हुई हूँ। तो मेरे नाना जी का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्हें लोग जानते हैं, और वो भी उसी विभाग में थे जिसमें अभी मैं हूँ। तो वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल डिविजनल कमिश्नर से रिटायर हुए थे। और मेरे नाना और नानी दोनों का ही मेरी एजुकेशन और स्पोकन इंग्लिश पे विशेष फोकस था, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश और राजस्थानी भाषा बोलने पे बहुत ज्यादा उनका जोर था कि मातृभाषा बोलो, मायर भाषा बोलो, और इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलो, ताकि आप ग्लोबली एक अपनी पहचान बना सको। तो आज जो भी मेरी स्पोकन इंग्लिश है उसका श्रेय मैं अपने नाना नानी को देना चाहूंगी।
1: That is wonderful. आपको तो बहुत ही अच्छा एक अपब्रिंगिंग मिली है, और बहुत ही एक ऐसे माहौल में थी जहाँ बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई का वातावरण था, आपके सब लोग अच्छे अच्छी पोजीशंस पे थे। तो आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग जो है सेंट मैरीज स्कूल उदयपुर में हुई है, कुछ खास कोई उस दौर की याद हो, कोई आपके दोस्त की आपको याद हो उस जगह की, या उस स्कूल का कोई दोस्त आपके साथ हो, ऐसी कोई खास याद है?
2: ऐसी बहुत सी यादें हैं उदयपुर से। उदयपुर इज माय फेवरेट सिटी इन द होल वर्ल्ड। वो बहुत ही सुंदर शहर है, और मैंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों सेंट मेरीज कॉन्वेंट उदयपुर से किया है। उस समय मेरे जो पापा हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उदयपुर थे, और मम्मा वहाँ पे मीरा गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। तो उस समय की कुछ यादें हैं, जैसे कि लेक पिछोला में फैमिली के साथ बोटिंग करना, और अपने भाई और अपनी दादी साहब के साथ सुखाड़िया सर्किल पे पैडल बोट चलाना, फतेह सागर पे वॉक और साइकिलिंग करना। और उस समय सेंट मेरीज में मेरी कुछ काफी दोस्त थे, लेकिन एक खास दोस्त थी मेरी जिनका नाम है रजनी कुमावत, और वो अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विस में है। तो उनका और मेरा एक कॉमन शौक था गजलें सुनना। तो उस समय जगजीत सिंह जी की एक का एक एल्बम था मिराज, तो उसकी कैसेट उन्होंने मुझे दी थी और मैंने उसको काफी लंबे टाइम तक सुना था, तो ये एक बहुत सुनहरी याद है।
1: ब्यूटीफुल, मजा आ गया। तो आपको शुरू से ही जगजीत सिंह पसंद थे, तो आप थोड़ा सा आपके कानून की पढ़ाई की तरफ आते हैं। आपने कानून की पढ़ाई को अपना क्षेत्र चुना, ये कैसे कि आपके चूंकि फादर भी इसी जुडिशियल सर्विसेज में थे, तो इस वजह से या कोई और खास रीजन था?
2: सर मेरी जो कानून की पढ़ाई है उसके लिए मुझे मेरे नाना जी पन्नेचंद जी सिंह जी ने प्रेरित किया, जो कि खुद प्रशासनिक अधिकारी थे और उस समय पुराने समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर्स भी होते थे, तो उन्होंने मुझे लॉ के बारे में काफी कुछ बचपन से ही बताया था। और मेरे पापा श्री हेमंत कुमार जी जैन, उनसे मुझे लॉ की प्रेरणा मिली। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं और वो खुद भी एक बहुत ही धार्मिक और एक बहुत मर्यादित व्यक्ति है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा।
1: ओके, वेरी गुड। तो आपने एलएलएम में सेकंड पोजीशन आपको मिली है और साथ ही महाराणा फतेह सिंह अवार्ड और नीति बांठिया अवार्ड जैसे सम्मान भी मिले हैं, तो कैसा लगता है जब ये सम्मान मिले? आपको लगा कि नहीं अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, किस तरह से, हाउ डू यू फील अबाउट इट, दीज अवार्ड्स?
2: जी हाँ आलोक जी, बिल्कुल, इन अचीवमेंट्स ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और मुझ में एक हौसला जगाया कि मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है। और बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान, जो कि कंपैरेटिवली एक कंजर्वेटिव स्टेट है, मुझे सारे फीमेल कैंडिडेट्स में एक एग्जांपल सेट करना है और ऐसा करियर बिल्ड करना है कि मैं भारत देश में लोगों की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ और कॉमन पीपल से जुड़ सकूँ।
1: तो चलिए, चूंकि आपने अभी बात वहां जगजीत सिंह जी की चला दी थी और आपकी अपनी फ्रेंड का भी आपको नाम याद आ गया था उसकी गजलों से, तो हम रुक के यहाँ एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। बस थोड़ा सा पॉज लेंगे और फिर मैं आई विल कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
3: प्यार का पहला खत लिखने में

0: वेलकम बैक डॉक्टर कोमल। आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी हैं और लेखिका भी। प्रशासनिक जीवन और रचनात्मक लेखन, इन दोनों दुनियाओं को साथ लेकर चलना कितना चैलेंजिंग है, कैसे करते हो आप ये मैनेज, ये कुछ हमें भी बताइए।
1: जी आलोक जी, ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। एक टैक्सेशन ऑफिसर होने के साथ साथ एक लेखिका होना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। एक सरकारी अफसर होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों से बंधी हूँ, जबकि एक लेखिका के रूप में मैं अपनी कलम की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उपयोग करना चाहती हूँ। तो इन दोनों चीजों में सामंजस्य बैठाना काफी चुनौतीपूर्ण है, पर जितना हो सके मैं इसको बैलेंस करके चलती हूँ।
0: तो चलिए, अब मैं कुछ आपको पुरानी जिंदगी में ले जाना चाहता हूँ कि लेखन की शुरुआत कैसे, कौन सा ऐसा ट्रिगर था, या क्या ऐसा एकदम आपकी लाइफ में हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आपने लेखन शुरू किया? क्या डायरी लिखती थी आप, किस तरह, हाउ डिड यू स्टार्ट इट?
1: सर, मेरा सबसे पहला जो लेखन था वो एक लॉक डायरी से शुरू हुआ था। मेरे बचपन में मेरी मासी ने मुझे एक लॉक डायरी प्रेजेंट की, जिसपे एक छोटा सा लॉक लगाया जा सकता था। और ये एक पॉकेट डायरी थी। तो मेरी जो नानी सा है, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया, उनका नाम चंद्रकांता जी है, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि जब भी बैठो एटलीस्ट 4-5 लाइनें लिखो, अपने हाथ में हमेशा कलम और पेपर रखो, एक डायरी रखो और कुछ लाइन लिखते रहो, इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बनी रहेगी।
0: ये बहुत खूबसूरत बात है। तो मतलब आपकी जिस तरह से, अगर बड़े लोग आपको इस तरह से इंस्पायर कर दें लिखने के लिए डायरी का, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए फिर आगे आते हैं। आपकी पहली पुस्तक है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ये तो बहुत ही सीरियस सा विषय है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और रिसर्च बेस्ड भी है। तो आमतौर से लोग शुरुआत करते हैं, भाई कविता लिख ली, कहानी लिख ली, उपन्यास लिख लिया, लेकिन आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा विषय क्यों चुना?
1: सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म का विषय जो है वो हमेशा से मेरा पसंदीदा विषय रहा है, और मेरी डॉक्टरेट या पीएचडी थीसिस का टॉपिक भी यही था। 2021 का जो चुनाव था वो 2021 एक चुनाव का वर्ष था, और इसी में मेरी ये पुस्तक रिलीज हुई थी। तो इसके माध्यम से मैं आम जनता से कनेक्ट होके चुनाव प्रक्रिया के सारे सुधार उनको बताना चाहती थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से वर्क करता है। तो लॉ को मैं कॉमन मैन से कनेक्ट करना चाहती थी, और इलेक्शन इसका सबसे बेहतरीन माध्यम था। कहानी और उपन्यास लिखन भी मेरा बहुत पसंदीदा विषय है, और मुझे, मेरा बहुत मन था कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तो इसे मैं अपनी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म के माध्यम से पूरा करूंगी।
0: Wonderful. ये तो बहुत ही आपने बड़ा चैलेंजिंग काम लिया और उसको पूरा भी किया। तो अच्छा बताइए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपकी पुस्तक को राष्ट्रीय स्तर पर काफी अप्रिसिएशन भी मिला है, तो ये कैसा लगा आपको, बहुत संतोष मिला? किस तरह से, आपने मीडिया में भी कवरेज किया होगा इसको, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी सर, बिल्कुल। मेरी जो पुस्तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया अ कंपैरेटिव स्टडी विद यूके एंड यूएस लीगल सिस्टम्स है, इसका विमोचन 15 जनवरी 2021 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा जी ने नई दिल्ली के निर्वाण सदन में किया था। और इसे, ये जो बुक है सर, इसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया था इसकी लॉन्च को। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जो बुक लॉन्च है इसने मुझे एक नेशनल लेवल फेम दिलाया, और मेरे जो राइटिंग स्किल्स है, मेरा जो लेखनी का करियर है, उसके लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ। और मुझे इस एनकरेजमेंट के बाद लगा कि मैं और लिखूंगी और देश के नागरिकों से जुड़ूंगी, और ये वेलफेयर करने का मेरा खुद का माध्यम होगा।
0: That's wonderful. ये तो बहुत ही बड़ी, इतनी कम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आपने इतना बड़ा काम कर लिया। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आपकी इस जो आपको मीडिया में सराहना मिली, तो एक इसी खुशी में एक गाना सुन लेते हैं, एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर हम आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
1: श्योर सर।

0: तो वेलकम बैक डॉक्टर कोमल। अब आ रहे हैं हम कुछ आपकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, और आजकल हिंदुस्तान में भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ये टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो बुक है द काम आफ्टर द स्टॉर्म, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब आप बात आपकी इस पुस्तक के बारे में बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका नाम भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, द काम आफ्टर द स्टॉर्म, तो ये शीर्षक आपने कैसे, टाइटल कैसे दिया इसको, क्या क्या इसके पीछे भावना थी, क्या विचार था?
1: जनरली आपने एक सेइंग सुनी होगी कि तूफान से पहले की शांति के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन द काम आफ्टर द स्टॉर्म ये जो है ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और मेरी अपकमिंग नॉवल भी है। द काम आफ्टर द स्टॉर्म एक इंसान को खुद से जोड़ती है, और स्पेशली ये एक इंडियन मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमेन के बारे में है, ये जीवन एवं रिश्तों के बारे में और उनमें आने वाले तूफानों के बारे में बताती है, और उनसे उबरने और खुद को पहचानने तथा आगे बढ़ने की एक जर्नी है। इन अदर वर्ड्स द काम आफ्टर द स्टॉर्म इज अबाउट सेल्फ लव, बाउंड्रीज, लेटिंग गो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। और ये सारे जो लेसन्स हैं वो उस नॉवेल की मेन कैरेक्टर सिया, जो कि एक मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमन है, शी इज अ वर्किंग वुमन, उसकी जर्नी है और उसका रियलाइजेशन है अपने आप के साथ।
0: तो इसमें क्या प्रेम, विश्वासघात, आत्मसम्मान, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, तो आप क्या लग रहा है कि आज के जो हमारा मेट्रो सिटीज की लाइफ है वहाँ आदमी बहुत इमोशनली अकेला होता जा रहा है, खासतौर से विमन जब मैरिज के बाद में जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों में उनको जिंदगी बिल्कुल अलग तरह की मिलती है, तो क्या उस विषय को टच किया है आपने, किस तरह से किया है?
1: जी बिल्कुल, ये जो कहानी है ये आजकल की मैरिड वुमेन के बारे में है, और जिस तरह से हमारे देश में ये केसेस आ रहे हैं डाउरी रिलेटेड, और ये जो ब्राइड्स हैं शादी के कुछ ही सालों में उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है और सोसाइटी को वेकअप होने की जरूरत है। तो आजकल का जो समाज है उसमें गहरे प्रेम और लगाव पे आधारित जो रिश्ते हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। एक जमाना था जब लोग लव लेटर्स लिखा करते थे, प्रेम पत्र लिखते थे, अब आजकल एंड्रॉइड फोन्स का और सिचुएशनशिप्स का जमाना है जब हर दिन हर घंटे लोगों की फीलिंग्स बदलती हैं। तो आजकल प्रेम में करुणा, त्याग, किसी का वेट करना, ये सारी फीलिंग्स तो लुप्त हो गई हैं कम्प्लीटली। और आजकल अगर हम बात करें कि आजकल की यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं, तो आजकल की जो पीढ़ी है वो डेटिंग और मोमेंट्री प्लेजर्स के बारे में ज्यादा फोकस्ड हैं, और ऐसे में विवाह की जो संस्था है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कमिटमेंट्स हैं, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत से लोग विवाहित या कमिटेड होने के बावजूद भी इमोशनली बहुत अकेले हो गए हैं, और ऐसा माने कि रिश्तों में आधुनिकता की ठंडी सूखी बर्फ सी जम गई है।
0: बात तो बहुत गहरी कह रही हैं आप, और अब इसका इलाज जो है या इसके को किस तरह से ओवरकम किया जाए, महिलाएं अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचाने, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो ये किस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए, कुछ इस विषय को भी टच किया है क्या आपने?
1: जी हाँ बिल्कुल, महिलाएं या जो स्त्री है वो अन्नपूर्णा है, वो शक्ति स्वरूपा है, शी हैज टू रियलाइज हर ओन पावर। उसमें हर एक तूफान का सामना करने का सामर्थ्य है, उसमें धरती जैसी स्थिरता और चंद्रमा जैसी शीतलता है, और जीवन के बड़े से बड़े तूफानों को एक महिला शांति से परिवर्तित कर सकती है और अपने साहस से समाज में सुधार ला सकती है। लेकिन ये सिर्फ स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है, कि हमें पता चले कि एक परिवार में और समाज में महिलाएं मेंटली और इमोशनली कैसा फील करती हैं, क्योंकि महिलाओं की मेंटल हेल्थ पे तो हमारा समाज फोकस ही नहीं कर रहा कि एक महिला कैसा फील करती है. ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं.
0: लेकिन ये भी बात है कि आजकल समाज में अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उसके बाद में समाज में या अपने पारिवारिक लोगों के बीच में भी खुलकर बातचीत करने से अभी भी लोग हिचकते हैं. ये जो दिक्कत आती है, जैसे अभी ये केस चल रहा है, उसमें भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने बिल्कुल अपने फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात शेयर नहीं की और बाद में इतना ऐसा बड़ा हादसा हो गया. इसका किस तरह से क्या किया जाए, क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: देखिए, आजकल समाज में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं. पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं. तो सबसे पहले तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में लीगली अवेयर होना बहुत जरूरी है. और किसी भी रिश्ते में, चाहे बेटी का उसके माँ बाप से हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, इनमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ताकि सबको एक दूसरे की भावनाओं के बारे में एक खुले तरीके से पता रहे. और इनके अलावा आजकल लॉयल्टी, सैक्रिफाइस जैसे मानवीय गुण रिश्तों में होना बहुत आवश्यक हो गया है.
0: सही बात है. तो चलिए, ये जो रिश्तों की जटिलता है या रिश्तों की आपाधापी है, इस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं. और हमारी फिल्मों में तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से कई गानों के थ्रू भी लाया गया है. तो ये गाना सुनते हैं और फिर आगे इसी विषय पे थोड़ी सी बातचीत और करते हैं.
1: जी बिल्कुल.

0: तो आप ये बताइए, जैसे रामायण से सिंबॉलिक पैरेलल्स लेने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या माइथोलॉजिकल करेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ में देखना पाठकों को एक अलग सा नजरिया देता है, पर्सपेक्टिव देता है? क्या क्या
1: जी
0: विचार है, आपने किस तरह से किया ये?
1: बिल्कुल आलोक जी, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अडॉप्ट किया है अपनी नॉवेल में, अपकमिंग नॉवेल में। और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करके मैं युवाओं को उनके प्रति सजग करना चाहती हूँ, ताकि हमारे युवा रामायण जैसी एपिक्स से जुड़ सकें। और इस तरह की लेखनी के लिए प्रसिद्ध लेखक अमिश हमेशा से मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यदि हम मॉडर्न इंडियन वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो भी आपको हर घर में एक सिया मिलेगी, केकई और मंथरा जैसे कैरेक्टर्स आपको हर परिवार में मिलेंगे। और असामाजिक और संस्कारहीन महिलाओं के रूप में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में एक सूर्पणखा आपको जगह जगह मिलेगी। और यदि हम एक हस्बैंड का रोल देखें, तो कलयुग में कोई भी पुरुष आपको कंप्लीटली राम के रूप में तो नहीं मिलेगा, उसमें रावण के दुर्गुण भी हो सकते हैं। सो जो कैरेक्टर है वो राम और रावण का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने माइथोलॉजी को मॉडर्न इंडियन कैरेक्टर्स के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया है।

0: वास्तव में मुश्किल है। शायद लक्ष्मण
1: जी
0: जैसा भाई कभी कभार मिल जाए, लेकिन आजकल तो भाई कहाँ रहे।
1: जी
0: लेकिन मजा आ गया ये पैरेलल तो आपने बहुत बढ़िया बात सुन के आपकी बहुत अच्छा लगा कि किस
1: जी
0: तरह से आपने इसको आज की दुनिया से रिलेट किया है।
1: थैंक यू
0: और
1: सर।
0: बस जो सूखापन आ गया है हमारे रिश्तों में, और लेकिन कहीं भी देखिए हमारी किसी भी पुरानी मैथोलॉजिकल उस पे चले जाइए, महाभारत भी आजकल घर घर में हो रही है और रामायण भी हर जगह है। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा अब ये बताइए कि ये जो आपने इसका थॉट था इस बुक के पीछे, इस पे कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है जिससे आप इस पे इंस्पायर हुई हो और आपने ये किताब लिखी हो?
1: सर ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा, मेरे जो रीडर्स रहे हैं पहली बुक के, कि ये क्या ये आपकी लाइफ से प्रेरित है। तो मैंने उनसे कहा कि आई एम एन इंडियन वुमन, मैं भारत की बेटी हूँ और सबसे पहले राजस्थान की बेटी हूँ। तो ये जो कहानी है, हो सकता है कि इसमें कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन ये हम सबकी कहानी है। ये अकेले मेरी कहानी नहीं है, ये उन सभी बेटियों की कहानी है जिनके मामले न्यूज में आ रहे हैं, जिन्होंने तरह तरह की प्रताड़नाएं झेली हैं। तो ये हर मॉडर्न इंडियन वुमेन की कहानी है, जो वर्किंग है, जो एक मैरिड इंडियन वुमेन है और जो चैलेंजेस फेस करती है अपनी लाइफ में, और फिर वो स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट करती है। तो ये एक जर्नी है, इट इज अ जर्नी ऑफ एवरी इंडियन वुमेन।
0: दैट्स वंडरफुल,
1: और
0: बहुत
1: बाकी मैं
0: बढ़िया।
1: चाहती हूँ कि जो मेरे रीडर्स हैं वो मेरे बारे में जाने, वो मेरी किताबों को पढ़ें तो मेरे बारे में भी पढ़ें, और फिर वो कनेक्ट कर पाएंगे कि बुक कहाँ तक रिलेटेड है, और मेरे बारे में भी जान पाएंगे। तो आई विल फील बेटर कनेक्टेड टू माय रीडर्स।
0: चलिए तो हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस किताब के लिए। आई एम श्योर के आपकी लेखनी बहुत कंपैशनेट भी होगी, फियरलेस भी होगी। और
1: जी
0: चलिए इस बात पे रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे आपकी जिंदगी के बारे में और बातचीत करते हैं।
1: जी

0: वेलकम बैक कोमल जी। अब
1: जी
0: थोड़ा
1: सर,
0: सा मैं एक सेंसिटिव सब्जेक्ट की तरफ या आपके एक लाइफ के पार्ट की तरफ आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो, कि आपने अपने जीवन में विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी चुनौती भी फेस किए हैं और
1: जी
0: इतनी इसके बावजूद भी इतने अचीवमेंट्स आपके रहे, तो अगर बहुत ही एक सहजता से पूछूं तो आपको पहली बार कब ऐसा एहसास हुआ कि आपकी जो साइट है वो नॉर्मल लोगों से अलग है, और ये किस तरह से हुआ?
1: सर, ये मुझे बचपन से ही है और ये बहुत स्लाइट या माइल्ड फॉर्म में है, तो मैंने इसे हमेशा सामान्य जीवन का फॉर्म ही माना, पार्ट ही माना, और मैंने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कभी भी इसे कोई कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में एक्सेप्ट किया। और मुझे याद है कि जब मेरे पेरेंट्स मेरी थोड़ी चिंता करते थे, तब मैंने उन्हें हमेशा यही कहा कि आप पॉजिटिव साइड देखिए, आधा ग्लास तो भरा है, उसमें मैं आइस क्यूब्स डाल के उसे पूरा भर लूंगी। ये मैंने कहा था जब मैं छोटी बच्ची थी।
0: अरे वंडरफुल, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस तरह की चीजों से कई बार लोगों में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कई बार ये हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं भी बहुत पहले से कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे भी जब बाद में पता लगा तो लगा कि ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन बाद में लाइफ चलती रही इसी तरह से, बिल्कुल आई एम श्योर।
1: हाँ सर, लाइफ विल ऑलवेज गो ऑन, और कभी भी किसी को भी अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी वीकनेस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड नेवर एवर गिव अप।
0: तो पेरेंट्स का किस तरह से, क्या मतलब जब उनको पता लगा तो हाउ डिड दे सपोर्ट यू, किस तरह से आपको वो हिम्मत दिलाते
1: दे
0: थे, क्या
1: ऑलवेज
0: था?
1: सपोर्टेड मी, एजुकेशन में बहुत सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के लिए गुजरात भेजा, और फिर हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए उन्होंने फ्लोरिडा भी भेजा, जिसमें इंटरकल्चरल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में मैंने बहुत अच्छी पोजीशन सिक्योर की। मैं मियामी के सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ में जाके और मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन फाइट करके आई। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज अप अगेंस्ट एक्चुअल अमेरिकन लॉयर्स व्हेन आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट। तो
0: अच्छा,
1: मेरी मोबिलिटी को लेके, एजुकेशन को लेके, हर चीज को लेके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया।
0: तो ये किस तरह का, क्या कोई आप स्कॉलरशिप पे गए थे या किस तरह से आप स्पॉन्सर होके गए थे, कुछ बताइए उसके बारे में,
1: जी
0: कैसे
1: हाँ
0: गए थे?
1: सर, ये नेशनल लेवल पे हमारी स्क्रूटनी हुई थी जब मैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में थी,
0: ओके
1: और
0: ओके
1: यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मैंने मेरिटोरियसली परफॉर्म किया, तब उन्होंने मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट किया, और तभी सारी फंडिंग और स्पॉन्सरशिप होने के बाद हमें सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ ने वहां पे इस कॉम्पिटिशन के लिए सम्मिलित किया।
0: अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो आपने तो इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं लाइफ में, तो उन यंगस्टर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी या क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो फिजिकल लिमिटेशन, इमोशनल सेटबैक के कारण अपने आप को और अपने सपनों को से आगे बढ़ने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते?
1: जी हाँ आलोक जी, मैं हर यंगस्टर को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो किसी लिमिटेशन को एक सेटबैक ना समझें, और अपने आप को आप कंट्री के लिए और कॉमन पीपल के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं, इस बारे में आप अपनी रणनीति बनाएं। और एक छोटी सी कहावत मैं यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूंगी, उन्हें प्रेरित करने के लिए, कि परिंदों ने उड़ान भरी है, परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है, जीती है अभी चंद वादियां, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कीप
0: वाह, बहुत
1: गोइंग,
0: बहुत
1: डोंट गिव अप।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब। चलिए इसी अच्छी लाइंस पे हम रुक के गाना सुन लेते हैं, परिंदों की उड़ान और जीवन की उड़ान के भावों को लेता हुआ, और फिर आगे की बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ कोमल जी, अब आते हैं आपके एक और पसंदीदा विषय की तरफ, संगीत।
1: जी हाँ।
0: आपने जीवन में कानून, प्रशासन, साहित्य तीनों को साधा है, तो संगीत से आपका रिश्ता कब से है और कैसे ये शुरुआत हुई?
1: सर, संगीत से मेरा रिश्ता बहुत छोटी उम्र से है, क्योंकि मुझे एक हारमोनियम मिला था जो कि हमारी तीन चार पुश्तों ने मेरे ननिहाल साइड से, मेरे परनाना जी ने भी उस श्री तखत राज जी के मावत ने उसे यूज किया था, उस पे संगीत सीखा था। और उसके बाद 6 साल की उम्र से मैं ऐसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ, और उदयपुर में श्रीमती पामल भंडारी मोदी और श्री प्रेम भंडारी, ये दोनों मेरे गुरु रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया।
0: ओके, तो किस तरह का म्यूजिक खास पसंद है? पुराने फिल्मी गीत है, भजन है, सूफी है, गजल, या कुछ और आपको क्या किस तरह का पसंद है?
1: आलोक जी, मुझे भजन गायन का विशेष शौक है।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा, जी हाँ बिल्कुल, और स्पेशली ठाकुर जी के भजन, श्री कृष्ण के भजन गाने का मुझे बहुत ही शौक है। और इसके अलावा गजल्स हैं, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स हैं, ये भी मुझे काफी पसंद है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड और मेंटल काम भी देते हैं।
0: तो कोई ऐसा गीत आपको बताइए जो अपने आपके लाइफ के चैलेंजेस को और होप को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता हो, ऐसा कोई कोई गीत आपके दिमाग में है या जहन में है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, एक गीत है जो डोर फिल्म का है, और ये मैंने हमेशा इसको गुनगुनाया जब भी मैंने किसी चुनौती को फेस किया। तो क्या मैं उसके बोल बताऊं या गाकर सुनाऊं, आप बताइए?
0: अगर गाकर सुनाए तो नथिंग बेटर देन दैट,
1: जी
0: सुना दे तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: उसके बोल
0: और हाँ,
1: ये हौसला कैसे झुके, ये आरजू कैसे रुके।
0: ओके, बहुत अच्छा है।

0: वंडरफुल। मैं तो आपसे ये सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा और सुनाएंगी। खैर, इसके अलावा आप और कोई गीत अगर हमारे को गजल या भजन सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। हम तो मजा आ गया आपका इतनी सी दो लाइनें सुन के। सुनाइए आप, अगर कोई आपको पसंद हो कोई भी एनीथिंग जो आप सुनाना चाहें तो हमें सुनाइए।
1: जी हाँ, मैं ठाकुर जी का एक भजन सुनाऊंगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
0: बस इतना ही, और भी सुनाना चाहेंगे?
1: चलिए हम भी थोड़े करके लास्ट में मैं आपको कुछ और पंक्तियां सुना सकती हूँ। चलिए
0: हम भी थोड़ा ग्रीडी होते जा रहे हैं। बिल्कुल
1: जी, इट्स माय प्लेजर सर। एक और है भजन जिसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, तो जैसे ही आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले आई विल गो विद अनदर भजन।
0: नहीं नहीं, अब ऑलमोस्ट हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अब एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, और टाइम इतनी जल्दी गया आपके साथ बात करने में कि मुझे पता ही नहीं लगा कि हम इतना टाइम निकल चुका है हमारा
1: जी,
0: है ना। तो चलिए यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर अपन इसको लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं।
1: बिल्कुल सर।

0: वेलकम बैक कोमल जी। अब आप ये बताइए कि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो क्या हैं? क्या किसी नई पुस्तक या नए विषय पर आप काम कर रही हैं? क्या सोच रही हैं, आगे किस तरह से देखती हैं इसको?
1: जी सर, मैं अभी अपनी आगामी पुस्तक पे काम आफ्टर दिस स्टॉर्म के कंप्लीशन और एडिटिंग पर वर्क कर रही हूँ, और ये पुस्तक मेरे बहुत ही करीब है क्योंकि मैं इस पुस्तक से समाज में बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं इसमें जो महिलाओं के प्रति समाज का फर्ज है और दृष्टिकोण है वो बदलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मॉडर्न इंडियन वुमेन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करें तब भी वो खुद को ना भूलें। दे मस्ट चूज देमसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड ईच एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं हो कि वो महिला जो एक शादी के संस्था में एंटर करती है वो धीरे धीरे खुद को उसमें खो दे, वो अपने आप से कनेक्टेड रहे और सेल्फ लव और सेल्फ रियलाइजेशन तथा अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करे और ग्रो करे।
0: आई नो, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है समाज में, या तो महिलाएं शादी नहीं करना चाह रही हैं और शादी करना चाह रही हैं तो मैरिड लाइफ में किसी तरह से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, जिनकी शादियां हो जाती हैं वो चाहती है कि हमारे बच्चे नहीं हों। तो आजकल तो जहाँ भी समाज में देखते हैं, खासतौर से बेंगलोर, मुंबई, इस तरह के बड़े शहरों में जो लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से होती जा रही है, और अंदर फैमिली में क्या चल रहा है ये बात कहीं बाहर ही नहीं आ सकती है। तो क्या सोचती है, किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए? महिलाएं ही उनको अपनी आवाज को आगे बुलंद करना पड़ेगा, और क्या क्या विचार सोचती है आप इसके?
1: सर, इसके बारे में एक तो ये विचार है कि पूरे परिवार को ये समझना चाहिए कि वो महिला क्या फील करती है। एक महिला जब अपने पियर पक्ष से ससुराल जाती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहाँ पे सबको खुश रखे, लेकिन क्या उन सब से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस एक महिला को खुश रखे जो अपना सब कुछ छोड़ के आती है? और अगर वो विवाह नहीं करना चाहती तो इट शुड बी हर चॉइस। अभी लेटेस्ट बहुत सारे सर्वेज आए हैं जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक 45% महिलाएं विवाह की संस्था में एंटर नहीं करेंगी। तो ये फैसला क्यों हुआ? ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे समाज ने महिलाओं का किया है उसकी वजह से महिलाएं लिबरेट हुई हैं, या उन्होंने ये ओपन एटीट्यूड अडॉप्ट किया है? तो अगर वो नहीं करना चाहती विवाह तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ये नहीं होना चाहिए समाज को कि वो हर महिला को मेंटली प्रेशराइज करे कि वो विवाह में एंटर करे। बहुत सारी चीजें हैं जो वो बिना विवाह के भी कर सकती है, जैसे कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अकेडमिक ग्रोथ, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो हर महिला को विवाह की संस्था में झोंक देना एक बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। सोसाइटी उनको अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करे अगर वो अपने करियर या किसी और चीज पे फोकस करना चाहती है। और रही बात बच्चे और परिवार आगे बढ़ाने की, तो इस बारे में भी सर मेरा ये मानना है कि हैविंग अ चाइल्ड शुड बी अ वुमन्स चॉइस बिकॉज इट इज हर बॉडी, इट शुड बी हर चॉइस। जनसंख्या ऑलरेडी करोड़ों पार कर चुकी है, तो अगर कुछ लोग चूज करते हैं कि वी डू नॉट वॉन्ट अ चाइल्ड, इट शुड बी अ मैटर ऑफ देयर चॉइस बिकॉज इट इज अबाउट अ वुमेन्स हेल्थ। सो मेरे आइडियाज कुछ फेमिनिस्ट हैं, और कई बार मुझे लोगों से इस बारे में थोड़ा सा ये फेस करना पड़ता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं महिलाओं के पक्ष में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ क्योंकि लड़कियां, आपने जैसा न्यूज में देखा होगा कि लड़कियों की डेथ हो रही है, लड़कियां प्रेशर में हैं, और समाज अभी तक इस बारे में, हमारा समाज जवाब नहीं दे पाया है। तो समाज को जवाब देना होगा कि 2026 है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, देश और दुनिया, तो फिर हमारी बेटियों के साथ ऐसे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें?
0: बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बहुत सारी बातें कह दी, और बहुत ही एक गंभीर बातें हैं, और आज के समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उसको जब तक ताकत नहीं मिलेगी और उनकी जिंदगी की मालिक वो खुद हैं, जब तक ये फीलिंग हमारे हम लोग भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे ओन देयर बॉडी एंड दे ओन देयर माइंड बोथ, तो ये जब तक उनमें खास बात नहीं आएगी तब तक बहुत बहुत मुश्किल होगा। चलिए कोमल जी, तो फिर अब आखिरी पायदान पे हम आपसे यही पूछते हैं कि ऐसे लोग जो एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप कोई खास संदेश देना चाहें या कोई गाना उनको सुनाना चाहें, एनीथिंग जो आपको पसंद हो वो आप मोस्ट वेलकम।
1: जी हाँ, जब भी जीवन में कोई तूफान आता है वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, वो हमें एक बदलाव लाने के लिए आता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़े चैलेंज या तूफान या स्टॉर्म से गुजर रहे हैं तो मेरा मैसेज आपको यही है कि पिक अप द पीसेस एंड मूव ऑन, डू नॉट स्टैगनेट, आप वहीं पे फंसे ना रह जाइए, मूव ऑन करिए, कभी हार ना माने और उस स्टॉर्म को या उस तूफान को एक लेसन की तरह उसे सीखें और उसके बाद काम या स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग अ फ्यू लाइन दैट बी पेशेंट इन द स्टॉर्म एंड फोकस ऑन द सनशाइन आफ्टर, क्योंकि उस तूफान के बाद जरूर रोशनी आएगी, जरूर पॉजिटिविटी आएगी। धन्यवाद।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कोमल जैन जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं बल्कि संवेदनाओं, साहस, आत्मविश्वास और इनर हीलिंग की एक खूबसूरत यात्रा रही। आपने जैसी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ रिश्तों, आत्मसम्मान, संघर्ष, फॉरगिवनेस और जीवन की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए, वह निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के दिलों को छुएगा। आपकी कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इंसान के भीतर विश्वास, धैर्य और आगे बढ़ने का साहस हो तो हर तूफान के बाद एक शांत और सुंदर सुबह जरूर आती है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड ओपिनियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इसको सुने, अपने लीगल राइट्स के प्रति अवेयर हों और अपने आप से एक रिश्ता कायम करें।
0: तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म पाठकों के दिल तक पहुंचे और उन्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं रेडियो SN। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत और एक नई बातचीत के साथ। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक और बात बताता हूं, इधर उधर की लेकिन बहुत ही जोश भर देने वाली। जापान ने पहली बार सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। स्वीडन में आयोजित ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान ने अपने दो एथलीट याहिको मिशिमा और इशिजो कानाकुरी को भेजा था, लेकिन उनके लिए जापान से स्वीडन तक का सफर आसान नहीं था। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों को अपनी यात्रा पूरी करने में करीब 18 दिन लगे। वो सबसे पहले पानी के जहाज से रूस पहुंचे, इसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा का रेल यात्रा सफर उन्होंने किया, लिहाजा दोनों ही खिलाड़ियों को तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रतियोगिता के दिन शिजो कानाकुरी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे। उन्होंने खूब जोर लगाकर मैराथन की शुरुआत की, लेकिन आधे रास्ते में ही बेहोश हो गए। मैराथन देख रहे कुछ स्थानीय लोग उन्हें अपने घर ले गए, जहां अगली सुबह उन्हें होश आया। शिजो अपने प्रदर्शन से बहुत दुखी थे। दुख से डूबे हुए वो बगैर स्टॉकहोम के ओलंपिक अधिकारियों को बताए जापान वापस लौट गए, इसलिए एसोसिएशन ने उनके नाम के आगे मिसिंग यानी कि गुमशुदा लिख दिया। स्वीडन नेशनल ओलंपिक खेलों की किताबों में वो कई सालों तक गुमशुदा रहे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने साल 1920 और 1924 में जो ओलंपिक्स गेम आयोजित किए गए थे उसमें हिस्सा लिया था। साल 1967 में स्वीडिश नेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने शिजो कानाकुरी से स्टॉकहोम वापस आकर अपनी अधूरी मैराथन पूरी करने का आग्रह किया। है ना आश्चर्यजनक बात दोस्तों, कौन याद रखता है इतने सालों तक कि उन्होंने अपनी मैराथन पूरी नहीं की थी, वो मिसिंग थे। 75 साल के उम्र में वो वापस आए और अपनी अधूरी रेस पूरी की। मैराथन पूरी करने का समय था 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे 32 मिनट और 20.3 सेकेंड्स। ये इतिहास की सबसे लंबी मैराथन दौड़ थी दोस्तों। है ना आश्चर्यजनक बात, लेकिन मैराथन दौड़ को पूरा करने का जोश लगातार कायम रहा, खिलाड़ी के अंदर भी और जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित किया था उन अधिकारियों में भी। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: ओ मेरी, ओ मेरी, ओ

आइए दोस्तों, आपको आज बताते हैं मोहताज अजयजा जी के बारे में। जब चारों तरफ अपनों की लाशें बिखरी हों, अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ खानदान का कोई बुजुर्ग मलबे के नीचे से बचा लेने के लिए पुकार रहा हो और संज्ञा शून्य नन्नी भांजी या भतीजी एक सवाल अपनी हिचकी में दबाए आपके हाथों में दम तोड़ देती हो कि मैंने तो दुनिया अभी देखी ही नहीं थी, तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी दोस्तों? इससे ज्यादा त्रासद मंजर कोई दूसरा नहीं हो सकता, मगर युद्धग्रस्त इलाकों के बाशिंदों की नियति ऐसे दृश्यों से उनकी मुठभेड़ कराती ही रहती है। गजब यह है कि इस कोहराम के बीच भी लोगों को जीना पड़ता है। ऐसे हालात में एक पत्रकार किस साहस से अपने फर्ज को अंजाम देता है, फिलिस्तीनी पत्रकार मोहताज अजयजा इसकी मिसाल हैं। शांत इलाकों के नौजवान जिस उम्र में रोमानी दुनिया के हसीन ख्वाब बुना करते हैं, मोहताज ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिलिस्तीन की जमींदोज हुई बस्तियों और बमबारी के शिकार बने बेगुनाहों की तस्वीरों से एक तारीखी दस्तावेज तैयार किया है। इस काम के लिए उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही है और अब प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने 2024 की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में उनको शुमार किया है। गाजा पट्टी के दीर अल बलाह शरणार्थी शिविर में नवंबर 1999 में मोहताज पैदा हुए। जब होश संभाला तो अपने चारों तरफ तनाव ही पसरा पाया। सुकून और बेफिक्री से शायद फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों का कम ही साबका पड़ता है। मोहताज जब 6 साल के थे, अपनी बस्ती की सड़कों पर उन्होंने इजरायली टैंकों को दौड़ते देखा। जब वो 8 साल के हुए तो गाजा पट्टी पर अपना दबदबा कायम करने के लिए फिलिस्तीन के हमास और फतेह गुटों के लड़ाकों को एक दूसरे का खून बहाते देखा, और उसके बाद तो हर दूसरे साल इजरायल हमास बकायदी से लड़ते भिड़ते ही रहे। इन भिड़ंतों ने ही वहां के बच्चों के भीतर खौफ को खत्म कर दिया। इंसान होने की सिफत बस इतनी ही बची रही कि तनाव और हिंसा के बीच भी इन इलाकों के शिक्षकों ने अपना धर्म निभाना नहीं छोड़ा और ना ही डॉक्टरों ने इलाज करने की अपनी सेवा को छोड़ा। इसके कारण मोहताज जैसे बच्चों का मुस्तकबिल संवरता रहा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दाखिला लिया। यहां पढ़ते हुए मोहताज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी से जुड़ गए, ताकि रेड क्रॉस के जरिए वो बेबस लोगों की कुछ मदद कर सकें। साल 2018 की बात है। गाजा इजराइल सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते देखते लड़ाई में बदल दिया गया। मोहताज तब 19 साल के रहे होंगे। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बैनर तले राहत कार्य करते समय एक इजरायली स्नाइपर ने उनकी जांग को गोलियों से जख्मी कर दिया। मोहताज का जख्म कुछ हफ्तों में भर गया, लेकिन हिंसा जारी रही। इस दारुण अनुभव को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आईं और इस तरह उनके अंदर एक पत्रकार पैदा हुआ। साल 2021 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद मोहताज एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी से जुड़ गए। बहुत ही जल्द उनका नया ठिकाना एक अमेरिकी संगठन बना, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की खातिर संयुक्त राष्ट्र राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करता था। मोहताज बहुत खुश थे। उन्हें इस संगठन में फोटो और वीडियो प्रोड्यूसर की नौकरी मिली। वो अपने गाजा के लिए कुछ करना चाहते थे। आखिरकार वो उनका घर है। वहां की जिंदगी के विविध रूपों और दुश्वारियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। मगर दुर्योग से वो वहशी सुबह जल्द ही आ गई, जिसके प्रतिशोध ने गाजा को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल पर अपने बर्बर हमले से हमास ने असंख्य दुखों को न्योता दे दिया। हमास ने जब इसराइल पर रॉकेट दागे, तब मोहताज को यह लग रहा था कि इस बार जंग बहुत महंगी साबित होने वाली है। कुछ घंटों बाद ही इजरायली हमले शुरू हो गए, भयानक वेग और बर्बरता को समेटे हुए।
मोटाज के कैमरे ने उनको फिल्माना शुरू किया। आम फिलिस्तीनी की पीड़ा, बेबसी और युद्ध की विडंबना उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। मगर 12 अक्टूबर को उन्होंने जो वीडियो और तस्वीरें डाली वो लाखों लोगों को मर्माहत कर गईं। इसराइल के हवाई हमले में उनके परिवार के 15 सदस्य मारे गए। अगले 107 दिनों तक वो इसी तरह हकीकत तफसील के साथ दुनिया के सामने लाते रहे। मगर इसराइली हमले की आलोचना करते हुए भी मोटाज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके किसी संदेश से नफरत की बूंद आए। मगर इसराइली फौज को यह सब नागवार गुजर रहा था। मोटाज को अलग अलग नंबरों से धमकियां मिलने लगी। घर पर बमबारी का खतरा बढ़ने लगा। अक्टूबर से गाजा में 120 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। ऐसे हालात में मोटाज के लिए एक एक दिन जब भारी पड़ने लगा तो उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों छोटे भाइयों और माता पिता के साथ उन्होंने गाजा से निकल जाने की इजाजत मांगी। मगर 23 जनवरी को गाजा छोड़ते हुए वो काफी गमगीन और कुछ शर्मिंदा भी थे, क्योंकि उन्हें जो सहूलियत मिली वो उनके देश के तमाम लोगों को हासिल नहीं है। मोटाज अब दोहा में रह रहे हैं। उन्हें जब भी मनोचिकित्सकों से मिलने की सलाह दी जाती है वो यही कहते हैं, अभी युद्ध विराम हुआ कहां है। वो इस युद्ध के खिलाफ दोहा से भी सक्रिय हैं। मोटाज की बहादुरी ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों बताता हूं, ये कुछ काम भी देशभक्ति की ही मिसाल हैं। आज सुबह जैसे ही उसने उठकर बाहर झांका, उसे कुछ समझ नहीं आया। गली में कितना कचरा जमा था, कितनी बदबू आ रही थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर कब से नल बहा जा रहा है। अपना घड़ा भर जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए ना, बाकी लोगों को भी तो प्यास लगती है। कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन नल खुला छोड़कर बस चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि इन छोटी छोटी बातों से कितना नुकसान होता है। कुछ लोग सड़क पर टेंट लगा देते हैं और गड्ढा भी खोद देते हैं। अरे भाई, इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर से बाहर निकल आया, बगीचे में गया, हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, बच्चे झूल रहे थे, लोग टहल रहे थे और कुछ व्यायाम भी कर रहे थे। इस खूबसूरत माहौल को देखकर वो सोचने लगा, इस बगिया की तरह ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, पर कुछ लोगों की नादानी की वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था। कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया। सामने रेलवे स्टेशन था। यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी। देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की, उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई, वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो, आपको क्या मिलता है। वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा। देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है।

आइए दोस्तों, एक और काम की बात बताता हूं। एक मंत्र है, एक जुगाड़ है, एक योजना है, एक युक्ति है। अपना लीजिए, बहुत मजा आएगा। हम सभी अपनी जिंदगी में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाना चाहते हैं ना, हर वक्त हर चीज में। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते चलिए। जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया कहेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी तरफ अपने आप आएंगी। अब देखिए कितना आसान तरीका है ना ये। तो जिंदगी में ज्यादा पाने का आसान तरीका है धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना। आदत डालिए दोस्तों, जिससे भी मिलिए, जहां पर भी मौका मिले, शुक्रिया अदा करना आपकी आदत बन जाना चाहिए। शुक्रिया करते चलिए, जिंदगी में ज्यादा ज्यादा ज्यादा पाते चलिए।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया, छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

यह कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

piano, accordion, mandolin, organ, saxophone, trumpet, harmonium, congo, bongo, violin, guitar ke saath saath sitar, sarangi, sarod, tabla, dholak, nal, इन सभी का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी तर्जों को सजाने में लगे रहते। सैकड़ों फिल्मों के अत्यंत मनोग्राही संगीत से अलग उनको कुछ नया रचने में बहुत मजा आता था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई,

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, हेमंत कुमार यानी हेमंत मुखर्जी जी हिंदी और बंगाली फिल्म उद्योग में एक गायक, संगीतकार और निर्माता की तरह फेमस हैं। उन्हें 1950 और 1960 के दशक के उनके बॉलीवुड गानों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने लगभग 2000 गाने रिकॉर्ड किए। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।

हेमंत कुमार मुखर्जी जी का जन्म 16 जून 1920 को बनारस यानी वाराणसी में हुआ था। उनके 3 भाई और 1 बहन थी। हालांकि उनका जन्म बनारस में हुआ, लेकिन उनका पूरा परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बहारू का रहने वाला था।

जब वो छोटे थे उनका परिवार कोलकाता में स्थानांतरित हो गया। वहां वो बड़े हुए और भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन स्कूल में पढ़ाई की। इंटरमीडिएट से स्नातक होने के बाद उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

0: संगीत में हेमंत कुमार जी की रुचि जल्द ही शुरू हो गई। उन्होंने अपना पहला गाना 1933 में ऑल इंडिया रेडियो पर गाया। उस समय वो केवल 13 वर्ष के थे। हालांकि ये कभी साफ नहीं हो पाया कि हेमंत कुमार गायक बनेंगे। उनकी बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में थी, लेकिन अन्य रास्ते अपनाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। शुरू में उन्होंने लेखन में अपना हाथ आजमाया, यहां तक कि वो एक प्रमुख बंगाली पत्रिका में एक लघु कहानी प्रकाशित करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनका बिजनेस संगीत है। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

हेमंत कुमार जी के पास संगीत की अच्छी ट्रेनिंग थी, उनके अनेक टीचर्स थे। ऐसा लगता है कि उनकी ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा शैलेश दत्त गुप्ता के अधीन रहा। उन्होंने फणी बनर्जी के अधीन भी अध्ययन किया और कई लोगों से ट्रेनिंग ली। 1937 में उन्होंने अपनी पहली डिस्क रिकॉर्ड की थी। फिल्म पार्श्व गायक के रूप में उनका करियर बंगला फिल्म निमाई संन्यास से शुरू हुआ, जो कि 1941 में रिलीज हुई थी। उसके बाद उन्होंने कई बंगाली फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। आइए सुनते हैं ये गीत।

वो एक संगीत निर्देशक के रूप में अपनी क्षमताएं दिखाना चाहते थे, तो वो पहली बार 1947 में बंगाली फिल्म अभियत्री में ऐसा करने में सफल रहे।

कई संगीत निर्देशकों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया था। 1940 के दशक के अंत में हेमंत ने हेमेन गुप्ता नामक निर्देशक के लिए संगीत रचना शुरू की। बस यहीं से उनका जीवन बदल गया। आइए सुनते हैं उनका डायरेक्ट किया हुआ ये गीत।

हेमेन गुप्ता को हेमंत कुमार का संगीत पसंद आया और उन्होंने उन्हें बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे में फिल्म बन रही थी आनंद मठ। यहां हेमंत कुमार को इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला और किस्मत बदल गई।

1960 के दशक में हेमंत कुमार बहुत सक्रिय रहे, फिर 1970 के दशक में उनके प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीतांजलि पर 14 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया जो चुकाया ना जा सका। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी रही। 1980 के दशक में उनकी तबीयत खराब होने लगी। आइए सुनते हैं उनका ही ये गीत।

हेमंत कुमार यानी हेमंत दा की आवाज सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू देती थी। सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सो उस शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर और शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर को देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात भर उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामाए फलक से उतर कर देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर कर देखते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त हाथी रॉय, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपका अपना महफिलों की रौनक बढ़ाने वाला प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब दुनिया की बंदिशें और रोज़मर्रा की मसरूफियात हमारे जहन को थका देती हैं, तब दिल किसी ऐसे साए की जस्तजू करता है जहां वो अपने बिखरे ख्यालात समेट सके। ऐसे ही लम्हों में शायरी और मौसीकी की हमारी तन्हाई के साथ जैसे चोली दामन का साथ बन जाता है। कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जो बातें हम अपनों से भी कहने से कतराते हैं, कोई ज़हीन शायर उन्हें सिर्फ एक मिसरे में पिरोकर हमारी रूह को एक मखमली तसल्ली अता कर देता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी दिलकश मिजाज को अपने आगोश में समेटे हुए आगे बढ़ेगी। तो अपनी मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, जहन को बिल्कुल सुकून दे दीजिए और कुछ देर इन सुरों को अपने नाम कर लीजिए। आइए बिना और देर के आगाज करते हैं सुरों के इस नए सिलसिले का और रुख करते हैं हमारी आज की पहली पेशकश की ओर। दोस्तों, आज जब मैं YouTube पर गज़लों को ढूंढ रही थी तो अचानक ये वीडियो सामने आ गया, कोई जागृति फिल्म्स भुज कच्छ का कोई लाइव प्रोग्राम था। फिर मैं रुकी, बैठी और सुना तो बहुत पसंद आई ये गज़ल, नगमा या जो भी था। जो भी शख्स इसको गा रहा था वो खूब गा रहा था। गज़ल का मिसरा है, तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं, जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है।

अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या और किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, माय लव फिल्म की गज़ल या नगमा जो हमारे मुकेश साहब ने गाया था 1970 में, जिसके मौसिकार थे दान सिंह और इसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने। इतनी पुरासर कैफियत, कितनी बेलौस मोहब्बत, कितनी तिश्नगी, क्या क्या नहीं इस इजहार मोहब्बत बयां में। सच कोई कमी नहीं, और जिस अंदाज से मुकेश साहब ने इसे गाया है उसकी तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये किसी महफिल में कोई शख्स गा रहा था और मुझे उसकी गायकी पसंद आई। ये गज़ल हम सब के माजी की कोई याद की तर्जुमानी ज़रूर करती होगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं इसे अक्सर गाया करती थी। सो आइए आपके साथ मिलकर उस नामालूम शख्स की गायकी का लुत्फ उठाते हैं। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। आपकी नजर।

मेरे प्यारे दोस्तों, इस बज़्म की अगली पायदान पर मैं आपके लिए एक बेशकीमती जवाहर चुनकर लाई हूँ। आपके मूड को 360 डिग्री मोड़कर एक ऐसी रूहानियत की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तबले की थाप का अंदाज बदल जाता है, दिल बस झूमने लगता है। परेशान दिल भी उठकर अपना गम भूलकर इसकी थाप पर नाचने लगता है। जी हाँ, मैंने हमारी बज्म में दावत एक बार फिर से दी है पद्मश्री से सम्मानित हंसराज हंस जी को। इस मस्त बेबाक नगमे को उन्होंने जिस अंदाज से पेश किया वो काबिले तारीफ है। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने, और गाया बकौल गायक हंसराज हंस जी ने। कहते हैं इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। एक हाथ में अपना दिल रख

योगियों के पीछे जैसे योग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाए दामन लोभ लग जाता है, इश्क इश्क है मैदाने ओ जंग दा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। आप जब सुनेंगे तो यकीनन मज़ा आएगा, क्योंकि पंजाबी एक्सेंट होने के बावजूद साफ साफ समझ में आ जाता है कि नाम है दीवाना, दूजा नाम कोई नहीं, प्यार के जैसा बदनाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्ज़ाम नहीं कोई, इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। तो सब कुछ भूल भाल कर बस हंस राज हंस की मस्त गायकी का लुत्फ उठाएं। खाली दिल नहीं जानवी है मंगदा।

दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि दिल बुझ सा जाता है या फिर किसी की चाहत में बिल्कुल ही दीवानावर हो जाता है। तब किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस कलाम में दिल के उसी मुकम्मल बेपनाह दीवानगी को साफ साफ लफ्जों में बयां किया है। वो कहते हैं कि भले ही मुझे लफ्जों में मोहब्बत की गहराई नापना ना आता हो, मगर सच यही है कि तुम्हारे साथ के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। बुनियादी तौर पर राग भैरवी की शास्त्रीय बंदिशों में लिपटे इस तारीखी दर्द को आज हम गुजरे दौर की एक ऐसी शख्सियत के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं कि जिनकी आवाज़ को छूना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मुकम्मल पेशकश है सुरों की मलिका बेगम परवीन सुल्ताना जी की। पटियाला घराने की इस अजीम फनकार ने जब आर डी बर्मन साहब की इस नाजुक धुन को अपने बुलंद और मखमली लहजे से नवाजा, तो ये कलाम सिर्फ नगमा नहीं रहा बल्कि रूह की पुकार बन गया। मजरू साहब की कलम से निकले इस गज़ल का ये हसीन मिसरा ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। जहाँ सदियों पुरानी दीवानगी छलकती है, वो कहते हैं, मैं तो सदा की तुमरी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी हाय कदर न जानी। और बिरहा का दर्द तान और आलापों के जरिए अपनी आखिरी हदों को छूता है तो बेगम साहिबा की बुलंद आवाज में ये सीधे कलेजे के पार होता है। फिर कहती हैं, कोई जो डाले तुम पे नयनवा, कोई जो डाले तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा मनवा। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस और आलिशान मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज़ में इस नगमे को। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना आपकी नज़र।

ये गजल मुझे अभी याद आई है, पंजाबी की है तो गुलाम अली साहब ने गाई है, भीम पलासी में ही है। थोड़ा इमोशनल हो रहा था माहौल।

क्या ना जफाएं दिल पे सही, क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा ना किया। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में। जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, फिर आज है क्यों हम बेगाने, फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम बेरहम निगाहों में। दोस्तों, कतील शफाई के बोल हैं और इसको सुरों से सजाने का काम सौंपा गया सरहद पार के मशहूर गुलूकार मास्टर इनायत हुसैन जी को, और इसकी गुलूकार थी इकबाल बानो जी। ये गज़ल जब रिलीज़ हुई 60 की दहाई में तो एक रेज बन गई दोनों ही मुल्कों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इकबाल बानो जी का एक बेहद ऑर्थोडॉक्स परिवार में जन्म हुआ था और दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। ये गज़ल गाने के बाद गायकी की मिसाल कायम कर दी उन्होंने। उस वक्त में जब पाकिस्तान में गज़ल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ख़ास लोग नहीं थे, इसके तो बहुत बाद फरीदा खानम, मेहती हसन और ग़ुलाम अली जी ने गज़ल गायकी में अपने पाँव रखे थे। तब तक इकबाल बानो पाकिस्तान फिल्म्स में इनायत हुसैन, जो कि एक बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, की मौसीकी में बहुत मशहूर गाने गा चुकी थी और गज़लें भी गा चुकी थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनका जन्म 1935 में दिल्ली में हुआ था। वो शुरुआती दिनों में क्लासिकल म्यूज़िक सीखने लग गई थी। जब वो गाती थी तो उनके जानने वालों ने उनके परिवार वालों को समझाया कि आपकी बेटी के गले में बहुत तरन्नम है, बहुत सुर है, तो इनको आप गाने का मौका दीजिए। तो उनके परिवार वाले मान गए। फिर उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का फ़ैसला किया और सीखने भी लग गई। तो अपने लंबे म्यूज़िक के करियर में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गज़लें और फिल्मों में नगमे गाए। साल 1954 में जब वो महज 19 साल की थी, उन्होंने अपनी पहली गज़ल रिकॉर्ड की एक मशहूर फिल्म गुमनाम के लिए। इस मशहूर गज़ल में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करके गाया है और लफ्ज़ों की बानगी से इसको

दम सा घुटता है अगर गम की स्याह रातों में, दम सा घुटता है अगर गम की स्याह रातों में, क्षमा की लौ कोई चुपके से बढ़ा देता है। या फिर मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूं, मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूं, लेकिन कोई धीरे से मेरा हाथ दबा देता है। आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। दोस्तों, जान निसार अख्तर जी ने इस कलाम में मोहब्बत की उस अमर तासीर को लिखा है। वो कहते हैं कि भले ही वो हमसफ़र आज मेरे पास नहीं है, मगर उसके पाक जज्बातों का तसव्वुर आज भी मेरे जहन में वैसे ही ताज़ा है जैसे कल की बात हो। आज भी जब मैं गुज़रे कल को याद करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी वफा की गवाही दे रहा हो। और इस रूहानी एहसास को सुरों का पैरहन दिया हमारे अपने हरदिल अजीज मुकेश साहब ने। मुकेश साहब की गायकी की ये खासियत रही है कि उनकी आवाज़ में छुपे सोज और सच्चाई का कोई मुकाबला ही नहीं। विपिन मेहरा साहब की इस नाजुक धुन पर जब मुकेश साहब की आवाज़ गूंजती है तो जहन की तनी हुई नसें शांत हो जाती हैं। तो अल्फाज से एहसास के इस बेहद नसीब नफीस मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ समायत फरमाते हैं मुकेश साहब की इस नायाब और सुरीली नॉन फिल्मी गज़ल को। आज भी उनकी मोहब्बत का तसव्वुर है कोई, आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। आपकी नज़र।

दोस्तों, इतने लाजवाब सुरीले नगमों और गजलों में डूबते उतरते पता ही नहीं चला कब घड़ी की सुइयां चुपके से इशारा करने लगी कि अब प्रोग्राम के अहतमाम का वक्त हो चुका है। उम्मीद है आज की नगमें गजलें आपको पसंद आई होंगी। हालांकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक चुनिंदा खास गजलें लेकर आऊं। दोस्तों, गज़लों को चुनते वक्त मैं शबरी का रोल निभाती हूँ। खाकर नहीं, एक एक गज़ल को सुन सुन कर चुन चुन कर आपके लिए लाती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके दिल को भी भाएंगी। तो इन लफ्ज़ों से आप तक मेरे एहसास भी पहुँच गए होंगे। अब मुझे यानी आपकी दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाज़त और आप सुनते रहें अपना प्यारा SN रेडियो जो रेडियो तांत्या भील 90.8 FM पर, इस उम्मीद के साथ कि एक और शाम कुछ अलग लफ्ज़ों के एहसास पिरो कर लाऊंगी मैं आपके लिए। तब तक खुश रहिएगा, गाते मुस्कुराते रहिएगा, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટાવેલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: કિસાન સાથીઓ, બહોત બહોત સ્વાગત હે આપકા રેડિયો ટેન્ટાવેલ 90.8 એફએમ મે.
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम. आपनो रेडियो आपड़ी बातें.
1: स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में. दोस्तों, झाबुआ में 49.3 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है और कहीं कहीं पर इससे ज्यादा भी वर्षा देखी गई है. अगर हम बात करें झाबुआ के किसान की, तो कहीं कहीं पर झाबुआ का किसान अभी बुआई करना शुरू कर चुका है. पथरीली जमीन में पर्याप्त पानी हो चुका है. किसान भाई बुआई करना प्रारंभ कर चुके हैं. साथ ही हम देख सकते हैं झाबुआ और अन्य बाजारों में बीजों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है. इन भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि सारे किसानों ने अपने अपने खेतों में बुआई की तैयारियां कर ली है, साथ ही अच्छे से अच्छा बीज ले लिया होगा. खेती किसानी को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को.
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम. आपनो रेडियो आपड़ी बातें.

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को। आज की हम चर्चा में आज हम बात करेंगे मक्का की और सोयाबीन की खेती के ऊपर, और साथ ही किस तरीके से इस साल का किस तरीके से मक्का और खेती का क्या भाव होने वाला है। आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
1: मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बात मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल मक्का की उपज 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 15,00,000 टन अधिक है। फिलहाल बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। हाल फिलहाल में मक्का के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1,870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 3,70,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल

0: अलावा दूसरे अन्य देशों में भी करता है। मक्का मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,31,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। फिलहाल मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव हो गया 1,750 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मक्का का भाव रहा 2,295 रुपए, जो कि 18 जून को 5 रुपए बढ़कर 2,300 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जून को मक्का की कारोबार 2,150 रुपए पर हुआ। 18 जून को यहां इसका भाव 150 रुपए टूटकर 2,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 18 जून को मक्का का भाव 10 रुपए बढ़कर 1,930 रुपए से 1,940 रुपए हो गया।
1: तो जाना आपने मक्का के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। मक्का के बाजार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको?
2: तो किसान साथियों, अभी आपने देखा किस तरीके से मक्के का उछाल मंडियों में किस तरीके से देखा जा सकता है, जानकारियों को हम जारी रखेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आइए मिलवाते हैं आपसे कृषि एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से आने वाले समय में किस तरीके कैसे हमें मक्का की खेती में किस क्या क्या फायदे मुनाफे हो सकते हैं, आइए सुनते हैं।
1: मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है
2: जी।
1: फिलहाल अभी काफी हद तक स्टॉक की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बन सकता है और दाम 5 से 8% तक तेजी के रुझान में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में 5 से लगभग 8% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
1: जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उनको यहाँ पर अभी रुकना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में स्टॉक को निकालना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिल सके।
3: बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर ले हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है मक्का का, आगे आने वाले 2 से 3 महीने के दौरान अगर बिकवाली करते हैं तो अच्छे दाम आप अर्जित कर सकते हैं। और इसी के साथ रवि जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
0: किसान साथियों, जैसा कि हमने अभी चर्चा में सुना किस तरीके से एक आशा की किरण हम देख सकते हैं, किस तरीके से मंडियों में इसका मक्का का भाव बढ़ा जा सकता है, आइए डालते हैं एक नज़र सोयाबीन के भाव पे और सोयाबीन की खेती में इस समय कौन सा मुनाफा हो सकता है। उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से भिली गीत को। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना एक प्यारे से भीले गीत को। आइए डालते हैं एक नजर सोयाबीन की, सोयाबीन के भाव और सोयाबीन की खेती के ऊपर। आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के कारोबार में हाल, खातेगांव मंडी में 6,300 रुपए रहा बाजार भाव। मामूली बदलाव के साथ हुआ मसूर का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। तो आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 12,18,000 टन अधिक है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के बाजार में किस तरह का बना हुआ है हाल, आइए जानें।
2: पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए सोयाबीन के MSP में 350 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदों में उठापटक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव था 6,055 रुपए। 18 जून को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहां 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,525 रुपए, 18 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,425 रुपए पर आ पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को इसका भाव रहा 5,215 रुपए, जो कि 18 जून को 1,085 रुपए की भारी बढ़त के बाद 6,300 रुपए हो गया। यहीं की खुजनेर मंडी में 17 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 18 जून को 100 रुपए बढ़कर 6,650 रुपए पर पहुंच गया। सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन की बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, अभी हमने जाना अलग अलग जगहों की मंडी का भाव, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: सोयाबीन के दामों में धीरे धीरे करके एक तेजी का ट्रेंड बनता जा रहा है
5: जी।
4: इस साल पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ में डिमांड भी यहाँ पर काफी अच्छी रही है
5: जी।
4: मंडियों में सोयाबीन के दामों में थोड़ा बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लेवल की बात करें तो लगभग 5-8% तक की तेजी बन सकती है।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे तेजी का माहौल ही है जो बना रह सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। तेजी का फायदा उठाएं कैसे हमारे किसान?
4: जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर सोयाबीन है, उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अभी जुलाई अगस्त तक अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकालना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे आने वाले समय में बिकवाली करेंगे तो अच्छी आमदनी हम कहें, अच्छे दाम हम कहें, अर्जित कर सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान।
0: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को जाना और ये भी जाना कि किस समय हमें सोयाबीन को किस समय किस वक्त कौन से वक्त पे ऐसे निकालना चाहिए और अनेकों जानकारियों को आपने सुना। जानकारी को जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, अभी तक हमने सुना मक्का और सोयाबीन की खेती करके हम किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मूंग की खेती के ऊपर।
1: रविवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के सौदे मामूली उठा पटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया गया। वहीं बात मसूर की पैदावार की करें तो बता दें कि इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी जरूर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है मसूर का बाजार, आइए जानें।
2: घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,70,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 जून को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 18 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 17 जून को मसूर का भाव रहा 7,040 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए बढ़कर 7,050 रुपए हो गया। वहीं राज्य की गुंडा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 जून को मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। यहां 18 जून को मसूर का भाव 10 रुपए गिरकर 6,610 रुपए से 6,600 रुपए हो गया।
1: तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार के बारे में, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मसूर के भाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे इसमें हम किसी तरह का बदलाव देखेंगे या फिर अभी जो हाल बना हुआ है यही बरकरार रहेगा?
3: मसूर की डिमांड यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। हाल फिलहाल में देखें तो इस साल लगभग 8-10% की तेजी ऑलरेडी मसूर में देखने को मिल चुकी है
1: जी।
3: मंडियों में स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन अभी दामों में थोड़ा और तेजी का रुझान बन सकता है।
1: बिल्कुल, तो अच्छे स्तर पर है इसके दाम, आपका कहना है आगे इसमें और भी बेहतरी हो सकती है, तो ऐसे में किसान क्या करें, हमारे क्या सलाह रहेगी आपकी?
3: जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छे दाम बने हुए हैं, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं बिकवाली करके, और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आगे भी अनुमानित है, तो आप आगे भी बिकवाली करके चल सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर की जा सकती है।
0: किसान भाइयों, अभी आपने मसूर की खेती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना और आगे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं एक प्यारे से भीली गीत को।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आप लगातार हम जान विभिन्न भिन्न फसलों की जानकारी हम ले रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर बाजरे की खेती के ऊपर।
1: आगे बात करते हैं अब बुलेटिन में बाजरे की। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन की रही थी। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य ही बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके साथ ही अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं, तो बता दें एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,940 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,922 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,010 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही बहजोई मंडी की, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने बाजरे के बाजार के बारे में, प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बाजरे की डिमांड इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है
1: जी,
2: और खास तौर से बात करें तो स्टॉक में भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है
1: जी,
2: और इसी वजह से दामों में बहुत ज्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं?
2: बाजरे का स्टॉक जिन किसान भाई बहनों के पास है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में अपना स्टॉक निकालकर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना बाजरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: હું છે આરજે રાકેશ
5: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર।
4: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર। નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર। હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે। અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના સમય પર હાજર થતો રહું છે। આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાતો સાંભળવાના છે કૃષિમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતીની વાતો। તો કિસાન ભાઈઓ, જેવી રીતે હાવ જગ્યા જગ્યા પર ફૂલનો ઘણો ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો છે અને મંદિરોમાં, કાર્યક્રમોમાં અને વિવાહમાં પણ ફૂલની ઘણી માંગ રહેશે, તો કિસાન ભાઈઓ, એ એક નગદી ફસલ છે અને એની ખેતી કરીને આપું ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ શકીએ। કેવી રીતે કમાઈ શકીએ એ બધી વાતો આપું સાંભળવાના છે કૃષિથા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોકો દેખી, હાથે હાથ એક એવા કિસાન ભાઈ દેખી જ્યાં ગેંદાની ખેતી કરીને ઘણો અસલ અને મોટો લાભ કમાઈ રહ્યા છે। તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર નહીં કરી અને સાંભળી કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતી।
1: हमारे देश में गेंदे के फूल की एक अलग ही जगह है। जी हाँ, धार्मिक कामों की बात हो या फिर सामाजिक अवसरों की बात हो, इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया ही जाता है। ये बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता है। और साथ ही बता दें इसकी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक तरोताजा बना रहता है। और आपको बता दें कि हमारे देश में अब साल दर साल इसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इसकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है। इसकी खेती का स्तर काफी बेहतर हो गया है हमारे देश भारत में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में, साथ ही साथ गेंदे से जुड़े विशेषज्ञ और सफल किसानों से हम मुलाकात भी करेंगे। आज हमारे खास कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यवसायिक खेती के बारे में। गेंदा एक बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है, जिसके चलते बाजार में इसकी मांग जो है लगातार देखने को मिलती है। और बता दें आपको कि 12 मासी इसकी खेती की जा सकती है। ऐसे में किसान अगर इसकी व्यवसायिक खेती को अपनाते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं गेंदे की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
6: भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर बनी रहती है। भारत जैसे देश में जहां दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें भी गेंदे के फूल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। गेंदे के फूल लंबे समय तक सूखते नहीं है, इसलिए इनका उपयोग सजावट के काम में लाया जाता है। कम समय के साथ कम लागत की फसल होने के कारण ये भारत की लोकप्रिय फसल बन गई है। गेंदे के फूल आकार और रंग में आकर्षित होते हैं। इसकी खेती आसान होने के कारण किसान इसकी खेती इसे व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो दोनों मुख्य किस्में फ्रांसीसी गेंदे और अफ्रीकन गेंदे का प्रसार 16वीं सदी से मेक्सिको से हुआ था, जो कि धीरे धीरे अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण दुनिया भर में फैल गया। आज के समय में भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जा रही है।
1: मनमोहक और सुंदरता के चलते गेंदे के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं। पूजा अर्चना की बात हो, सजावट की बात हो, तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया ही जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं।
6: अपनी औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार गेंदा में कई सारे औषधीय गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी भी है। मोचाने पर सूजन की समस्या और घाव में गेंदा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज में भी गेंदा से लाभ मिलता है।
7: गेंदे के उपयोग की बात की जाए तो ये खुले रूप में उपयोग किया जाता है काफी तौर पे, और इसको मुख्य तौर

0: करता है, जिससे और बुढ़ापे में इसमें एक डिजीज आती है जैसे आदमियों में एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, तो उससे बचाता है।
1: चाहे फसल कोई भी हो, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। फसल संबंधित विशेषज्ञों की जो सलाह है वो काफी अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह गेंदे की व्यावसायिक खेती को लेकर, आइए आपको बताते हैं।
2: गेंदा की खेती मुख्य रूप से सर्द मौसम में की जाती है। इस मौसम में गेंदा की बड़बार और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा ये मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। हालांकि किसान भाई गेंदे की खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसमों में कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसकी खेती करें तो अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं।
0: जैसे कि पहले देखा गया है कि नंबर एक पर हमारा जैस्मिन पुष्प था, पर कुछ वर्षों में लगभग 5-6 वर्षों में इसकी जगह गेंदा ने ले ली है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप होता जा रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मैक्सिको में इसका उत्पन्न हुआ है, उसके बाद ये 16वीं सदी में भारतवर्ष में आया है और ये पुर्तगीज ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से लेकर अब ये ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की ही फसल हो गई है, क्योंकि इसको पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगाया जाता है। और अगर इसके मुख्य राज्यों की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा एरिया कवर हो चुका है। और नए राज्य भी आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, इसमें भी इसके काफी इसका प्रचलन हो रहा है।
2: गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदा की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवंबर दिसंबर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन की या 4-5 पत्तियों की हो जाए तब उसकी रोपाई कर लेना चाहिए। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर से मिट्टी को हाथ से दबा देना चाहिए।
0: इसको बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1 किलोग्राम सीड लगता है और इसके 3 सीजन में लगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन, शरद ऋतु और रेनी सीजन। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसको फरवरी में लगाया जाता है और इसका रोपण मार्च में किया जाता है। अगर हम रेनी सीजन की बात की जाए तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा जून जुलाई में और उसके अगस्त में इसका रोपण होना चाहिए। अगर हम शीतकालीन ऋतु की बात की जाए तो इसको हम सितंबर के एंड में लगा सकते हैं और अक्टूबर में इसका रोपण किया जा सकता है।
2: गेंदे की फसल लेने के लिए खेत को तैयार करते समय एक गहरी जुताई कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेनी चाहिए। इसके अलावा जुताई के समय 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में मिला दे ताकि उपज अच्छी मिल सके। 6 बोरी यूरिया, 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 3 बोरी पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिला दे। यूरिया को 3 बराबर भागों में बांट कर 1 भाग एवं सिंगल सुपर फास्फेट व पोटाश की पूरी मात्रा को रुपाई के समय दें। गेंदे की बुआई अगर किसान लाइन में करे तो लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई गेंदे की खेती को थोड़ा ऊंचाई दें ताकि पानी का जमाव ना हो सके, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है।
0: गेंदे को लगाने के लिए हमें सबसे पहले नर्सरी बेड तैयार करने पड़ेंगे। नर्सरी की बेड की लंबाई आप 3 मीटर से 4 मीटर तक रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाएगी और इसको ऊंचा रखना पड़ेगा ताकि इसमें पानी रुके ना। तो उसकी हाइट आप सकते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। आपको इसको पंक्ति में लगाना पड़ेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं और जब आप इसको लगा दीजिएगा तो आपको इसके ऊपर FIM से ढक दीजिएगा। आप देखेंगे लगभग 20 से 25 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है रोपण के लिए और हम इसको मेन मुख्य खेत में लगा सकते हैं। मुख्य खेत में भी इसको लगाने की अपनी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे कि अफ्रीकी गेंदा जो कि मैंने कहा कि काफी ऊंचा होता है, उसको आप 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते थे और फ्रांसीसी गेंदा को आप 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। पर फ्रांसीसी गेंदा में हमारी पूसा की वैरायटी है पूसा अर्पिता, जो कि एक एक्सेप्शन है, वो काफी लंबी होती है, उसको आपको 60 सेंटीमीटर पे ही लगाना पड़ेगा।
1: कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए गेंदे की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
1: गेंदा की खेती के लिए दोमट और बलुआर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होना बेहतर होता है। सिंचाई की बात करें तो ये मौसम में निर्भर करती है। सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 4 से 5 दिन पर भी गेंदे की फसल में सिंचाई करें। गेंदे को अच्छी देखभाल मिले इसके लिए पौध 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है।
2: इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का पीएच लगभग 7 से 7.5 चाहिए और मिट्टी जो है सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर आप सिंचाई की बात की जाए तो ये मौसम पे निर्भर करती है। मौसम मतलब सर्दी में आप इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में ये अंतराल 4 से 5 दिन का ही रह जाता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमें शुरू में ही इसके लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के लिए, और कम से कम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम ही फास्फोरस लगता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन की अतिरिक्त डोज भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया 0.1%, पर ये फूल आने से पहले तक ही दी जानी चाहिए। फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग बंद कर दीजिए।
0: किसी भी फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में उन्नत किस्मों का चयन जो है काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक ऐसा ही है गेंदे की फसल के साथ भी। अगर हमारे किसान भाई बहन गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: गेंदा की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन और फ्रांसीसी। अफ्रीकन गेंदे की किस्मों की बात करें तो इसके पौधे एक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ बौनी किस्में भी होती हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बहार, पूसा बसंती, अफ्रीकन येलो शामिल हैं, जिनका चयन कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही बाजार में भी इन किस्मों की मांग भी काफी है और दाम भी अच्छा मिलता है।
2: इसमें दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक अफ्रीकी गेंदा है और एक फ्रांसीसी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो लंबा होता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है। फ्रांसीसी गेंदा जिसको जाफरी भी कहा जाता है वो थोड़ा शॉर्ट स्टेचर नेचर के होते हैं। अगर अफ्रीकी गेंदा की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार, पूसा बसंती गेंदा शामिल हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करें तो उसमें पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, पूसा दीप, पूसा उत्सव शामिल है।
1: वहीं बात करें फ्रांसीसी गेंदे की तो इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में पूसा अर्पिता, पूसा दीप, पूसा पर्व, रेड ब्रोकेट, कपिल येलो, बोलेरो, बटन स्कोच आते हैं।
2: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा भी भारत में बहुत जगह पे गेंदे पे काम हो रहा है, जैसे कि आपके IIHR बेंगलुरु में, इसमें भी गेंदे पे काफी काम हो रहा है। इनके यहाँ से बहुत सारी किस्में निकली है, जैसे कि अर्का बंगारा, अर्का अलंकारा, अर्का अग्नि और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा BCKV कल्याणी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी वैरायटीज निकली है, बिधान मैरीगोल्ड 1, बिधान मैरीगोल्ड 2। और यहाँ हरियाणा में यहाँ से 2 वैरायटीज निकली है, हिसार जाफरी, हिसार ब्यूटी।
0: गेंदे की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग और सही समय पर तुड़ाई और भंडारण का खास स्थान है। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
1: रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखीय कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से फूल थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए। इसमें फसल के बीच हवा का संचार ठीक से होता होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रुपाई के 60 से 70 दिन पर गेंदा में फूल आता है जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। शीतकालीन फसल जनवरी के मध्य में फूल देना शुरू कर देती है, वहीं मानसूनी फसल सितंबर के मध्य से फूलों का उत्पादन देने लगती है। ग्रीष्मकालीन फसल में मध्य मई से फूलों का आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें फूलों की तुड़ाई की तो गेंदे की फसल 70 से 80 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इसकी तुड़ाई सुबह के वक्त करें और तोड़कर ठंडी जगह में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरियों में भरकर इसे बाजार में भेज देना चाहिए।
2: गेंदे में शीर्ष नोचन भी किया जाता है जिसे आमतौर पर पिंचिंग कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीकन प्रजातियों पे किया जाता है क्योंकि वो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। अगर शीर्षनोचन वहाँ नहीं किया गया तो उनकी आंतरिक शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है जिसकी वजह से गेंदे की यील्ड कम हो जाती है। तो हम इसको रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन पे शीर्षनोचन की क्रिया को करते हैं, उससे इसकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता ज्यादा आती है। और ये फसल 70 से 80 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसमें हम 4 से 5 बाई तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर इसके यील्ड की बात की जाए तो इसमें भी अफ्रीकी और फ्रांसीसी गेंदा पर निर्भर करती है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो 20 से 24 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे सकते हैं, बल्कि फ्रांसीसी गेंदा में यील्ड आती है 18 से 20 टन पर हेक्टेयर।
0: फसलों में कीट और बीमारियों का लगना हमारे किसानों के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे में फसलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी कुल आमदनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है।
1: अन्य फसलों की भांति गेंदे की फसल में भी रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान भाइयों को सही समय पर रोग नियंत्रण सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंदे की फसल में ज्यादातर कैटरपिलर, लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर जैसे कीट लगने का खतरा होता है जो इसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन 0.1% का छिड़काव करें। गेंदा में मोजेक चूर्णी फफूंद मुख्य रूप से लगता है। मोजेक लगे पौधों को उखाड़ कर मिट्टी तले दबा दें एवं गेंदा में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें जिससे मोजेक के विषाणु स्थानांतरित करने वाले कीट का नियंत्रण हो, इसका विस्तार पर रोक लगे और वो अन्य पौधों को नुकसान न पहुंचाए। चूर्णी फफूंद के लिए तो 0.2% गंधक का छिड़काव करें।
2: अगर हम मुख्य रोगों की बात की जाए तो मुख्य रोग इसमें नर्सरी स्टेज पे भी आता है जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है और हम इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नर्सरी स्टेज पे ही इस फंगस का कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम मुख्य खेत पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेरिया एक खास रोग है जो लगभग हर सीजन में आता है। इसके लिए भी कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम मुख्य कीटों की बात की जाए तो इसमें कैटरपिलर्स काफी ज्यादा आते हैं, उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 0.2% का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड भी आते हैं इसमें। एफिड के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासोस्टॉक रोगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए हमारे देश की सरकार और साथ ही कृषि विभाग नित नए प्रयास करते रहते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और समय समय पर हमारे किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। आइए इसके बारे में भी आपको जागरूक करते हैं।
1: समय के साथ साथ खेती किसानी में कई बदलाव आ चुके हैं। किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम लागत में बंपर मुनाफा देने वाली फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहा है। गेंदे का फूल भी कुछ इसी तरह की फसल है, जो कम खर्च और कम मेहनत में अधिक उपज और आमदनी देने वाली फसल है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती भी करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों को फूलों की खेती में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करती रहती है। सरकार किसानों को गेंदे की खेती करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
2: किसान भाइयों, हमारी जो जनपद में योजना संचालित है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके तहत जो फूलों की खेती करके किसान भाई एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग किसानों को गेंदा, गुलाब इत्यादि फूलों की जो खेती है करते हैं उनको 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देते हैं। साथ साथ ही जो इनपुट लगता है एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर, इसको भी हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई गेंदा या फूलों की खेती करके जो हमारी खेती है उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में जो फूलों की डिमांड है जो वर्ष भर बनी रहती है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ही जो किसान भाई कोई ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें प्लांट टू प्लांट दूरी ज़्यादा है, तो उसमें इंटरकल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जैसे किसान भाई अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ने के बीच में जो जगह है उसमें इंटरकल्टीवेशन भी करके, एक तो सबसे बड़ी बात है गेंदा करने से क्या होता है, हमारी जो फसलों में नेमाटोड लगता है तो नेमाटोड से भी फसलों का बचाव होता है और आपको एक एडिशनल बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। अभी वर्तमान में हम अगर बात करें तो हमारे गेंदे का लगभग 100 से 120 रुपए रेट है, तो किसान भाई इसको अच्छे से अगर करेंगे, वृहत स्तर पर करेंगे, तो अच्छा लाभ लेकर अपनी आमदनी को बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो हमारा वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में संचालित है। अगर उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर भी हमारे विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और अगर किस हमारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, जमीन के पेपर लाके हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पंजीकरण करा लें, और या तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94-68-35-90-89।
0: उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदे की खेती में भी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं कैसे मिली इन्हें गेंदे की खेती से कामयाबी।
1: वीरेंद्र पाल मौर्य बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पहले तो गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन खेती से और अधिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने गेंदे की खेती का सहारा लिया। वर्ष 2005 में इनके गांव में उद्यान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों से गेंदे की खेती करने की सलाह मिली। तब से वे परंपरागत खेती के हवाले गेंदे की खेती कर रहे हैं और इन्हें काफी लाभ भी मिला है।
3: मैं पहले यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं, गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का, तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पर अप्लाई कराया, तो उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो दो तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है। तो हमें इसमें 20,000 रुपये की लागत आई 2 एकड़ खेत में हमारे। उसके बाद 3 महीने में हमारी फसल तैयार हुई और उसमें हमें मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए का। तब से हम साहब गेंदा कर रहे हैं।
1: मान सिंह बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले सफल किसान हैं। इन्होंने 3 एकड़ खेत में गेंदे की फसल तैयार की जिसमें इन्हें 30,000 की लागत लगी। इन्होंने कड़ी मेहनत कर गेंदे की खेती में सफलता हासिल की है। गेंदे की फसल से लाभ होता देख अब मान सिंह परंपरागत खेती करना छोड़ केवल गेंदे की खेती ही करने लगे हैं। अपने खेत में प्राप्त उपज को बरेली के मंडी में जाकर अच्छे दामों पर उसे बेचते हैं। इनके अनुसार गेंदे की क्वालिटी के आधार पर बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है।
4: पहले गेहूं धान कर रहे थे गेंदे से पहले, तो उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और पहले सस्ता भी था गेहूं, अब जाके महंगा हो गया। पहले गेहूं धान बोई 1000 रुपए 900 रुपए कुंटल धान था और 1200-1100 के लपेट में गेहूं था। उससे बढ़िया तो हमने कहा इससे बढ़िया गेंदा ही करते हैं, इससे ज्यादा गेहूं से ज्यादा मार्जिन, धान से ज्यादा मार्जिन गेंदे में हमें दिखा, तब जाके हमने गेंदा लगाया। और वीरेंद्र पाल मौर्या जो है हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है, तो इनने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। 1 एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में, मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग मान लो 1 एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा, और 30 से 35 हजार की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक, पानी खाद पानी दवाई ववाई सब लगा के। और इसमें दो प्रकार की वैरायटी है, एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो इसकी है पीले वाले की ज्यादा बढ़िया है। ये अपने पूजा में ज्यादा कर इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बारात में और फंक्शन में ये गेंदे काफी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, सबसे ज्यादा मंदिर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है।
1: अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वो खाली पड़ी जमीन पर या सह फसली गेंदे की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।
5: आज आपने अगर शाम में तुड़ाई की है तो अगले दिन आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। 6 डिग्री के आसपास आपको रख सकते हैं इसको, और ये कम से कम 8 से 10-12 दिन तक चल सकता है।
1: गेंदे से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हो तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
5: जैसे कि बात कर रहे हैं कि फार्मर अपने आप तो ये फसल उगा ही रहे हैं, साथ साथ इसको इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष से भी ये ल्यूटिन एक्सपोर्ट हो रहा है, और जनरली ये केरला से और तमिलनाडु से कुछ फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं।
0: तो जाना आपने कि अगर हमारे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं वो अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खाली पड़ी हुई जमीन या फिर सह फसली खेती के तौर पर गेंदे की खेती को अपना सकते हैं। बता दें साल भर इससे अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। अगर आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो सालाना 15 लाख तक की कमाई की जा सकती है, और अगर त्योहारी सीजन में आपके फूल उपलब्ध हैं तो इस मुनाफे को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गेंदे की व्यावसायिक खेती आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप जागरूक हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इसे अपनाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे।
6: तो किसान भाइयों, हमने अपनी बात हम ली गल रसिया न फूल नी खेती नी वाती हो, एतरे गेंदा न फूल नी खेती नी वाती हो। इनो फूल नो हार बने से अने हार नी बाजार मा घनी मांग से। किसान भाइयों, आज ना समय मा आपु को समय पर अगर फूल नी माला लेवा जाई तो आपु समय पर माला नी मले, केम की इनी मांग घनी ज्यादा बढ़ी गई से। जगह जगह पर हाव फूल हार नो उपयोग था मंडी गयो से किसान भाइयों, अने आज ना तारीख मा इनी बाजार मा तो मांग से, अने बीजा बीजा क्षेत्रों मा पण इनी अलग अलग मांग रहे से। तो किसान भाइयों, आप ये जानियो कि गलरसियानी खेती तकनीकी तरीका देखी केवी रीते करी सकी अने केवी रीतने दवा पानी लागे, ये बड़ी बातें आज हमू तमारी बस माली ना आया। किसान भाइयों, कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हामली हाव आधुनिक तकनीकी देखी दूध डेरीनी व्यवसाय केवी रीते करी सकी अने इनामा आपड़ा किसान भाई केवी रीते अगाड़ी बढ़ी सके, ये बातें आपो हामली।
7: आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक अत्याधुनिक डेयरी फार्म में, जिसे स्थापित किया है एक बेहद ही होनहार युवा उद्यमी ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई तो की है, उच्च शिक्षा हासिल की है, MBA किया है और साथ ही लंदन से ये पढ़कर आए हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने चुना अपने करियर के लिए डेयरी फार्म को। ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को नहीं होगी जो ये जानते हैं कि आज की तारीख में डेयरी क्षेत्र भारत में एक उभरता हुआ क्षेत्र है। क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे कि दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन वहीं यहाँ पर उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। ऐसे में दूध और डेयरी उत्पादों के लिए यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। ऐसे में हमारे आज के युवा पशुपालक किस तरह से डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजना का लाभ लेते हुए आप भी इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।
8: भारत के सीने में आज भी ग्रामीण संस्कृति धड़कती है और ग्रामीण संस्कृति के सीने में धड़कती है कृषि पशुपालन। खेती और पशुओं से इंसानों का नाता सदियों पुराना है, करीब 13,000 साल ईसा पूर्व का। यही वो दौर था जब जानवरों को पालतू बनाने का चलन शुरू हुआ। आज भी ये व्यवसाय खूब फल फूल रहा है और तरक्की कर रहा है। 20वीं पशुगणना बताती है कि भारत में अलग अलग जातियों के 85 करोड़ से भी अधिक पशु हैं। इनमें दुधारू गाय और भैंसों की संख्या 13 करोड़ 63 लाख से ऊपर है। अगर सिर्फ गायों की बात करें तो आंकड़ा 8 करोड़ 13 लाख है और यहाँ के 3.48% लोग पशु उत्पादन के काम में लगे हैं। 1951 के दौरान भारत में दूध उत्पादन करीब 1 करोड़ 70 लाख टन था, जो 2013-14 में करीब 14.25 करोड़ टन हो गया। आज हम सालाना 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इस उत्पादन में गायों का योगदान 52% है, बाकी 48% में 45% भैंसों का और 3% हिस्सा बकरियों का है। आज पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी वृद्धि दर 6% से भी अधिक है। यही वजह है कि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% तक चला गया है। ये आंकड़े हमारे देश को दूध के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा देते हैं। ज्यादा उत्पादन की वजह से ही हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। 1950-51 में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता महज 130 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 444 ग्राम हो गई है। इसका मतलब हुआ कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से भी ऊपर है। दूध हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आप शहरों में रह रहे हो या गांवों में, सफेद रंग के इस द्रव की जरूरत हर जगह है, हर किसी को है। यही जरूरत दूध उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाओं की नई उम्मीदें जगाती है और इन्हीं उम्मीदों को दूहने के लिए पशुपालकों का एक नया वर्ग सामने आ रहा है। इस वर्ग में युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। जिनके पास संसाधनों की कमी है वो सामान्य तरीकों से काम चला रहे हैं और जिनके पास संसाधन है उनकी दिलचस्पी हाईटेक विधियों में है। अब यहाँ से एक सवाल जन्म लेता है कि आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में कोई इंसान पशुपालन जैसे व्यवसाय को भला क्यों अपनाना चाहेगा। ऐसे ही सवालों को लेकर हम नोएडा के एक डेयरी फार्म जा पहुँचे। ये अत्याधुनिक फार्म लंदन से लौटे एक नौजवान दुष्यंत भाटी का है। वो MBA करने के लिए 7 समंदर पार गए थे। डेयरी फार्म का आइडिया वहीं से आया।
7: डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बहुत से युवा आजकल इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफल डेयरी उद्यमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, दुष्यंत भाटी जी। आइए उनके अनुभव के बारे में यहाँ पर जानते हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में जब हमने जाना तो बहुत ही खास बात ये हमें पता चली है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, यहाँ तक कि विदेश में भी आप उच्च शिक्षा हासिल करके आए हैं, लंदन में आपने पढ़ाई की है। हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद कैसे ख्याल आया कि डेयरी क्षेत्र से जुड़ा जाए और इसे एक उद्यम की तरह शुरू किया जाए।
9: जी मैम नमस्कार, आज हमारे फार्म पे आने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया, एजुकेशन मेरी बेसिक जो प्राइमरी हुई है वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ इंडिया में अपने अंडर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी लंदन से MBA से। तो वहाँ पर मैंने जितना भी अपने जितने डेयरी फार्म्स थे, जो इस तरीके के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज थी, मैंने उनको स्टडी किया। उसके बाद मैंने देखा करके कि भाई अपने इंडिया में भी इस तरीके का एक लेवल हमें लाना चाहिए।
8: दुष्यंत ने लंदन में डेयरी फार्म की स्टडी जरूर की थी, लेकिन एक MBA छात्र के लिए ये नया क्षेत्र था। यही वजह है कि डेयरी फार्म को इन्होंने भविष्य की योजनाओं का हिस्सा बनाया, प्राथमिकता डेवलपर बनने की रखी, फिर इनका मन बदल गया और भविष्य की योजना वर्तमान बन गई। इन्होंने काम शुरू करने से पहले NDRI करनाल से प्रशिक्षण लिया, कुछ डेयरी कंपनियों के मैनेजरों के साथ वक्त बिताया और पंजाब के किसानों से मुलाकात की।
9: जितनी लैंड की अपनी स्केर्सिटी आ रही है उसको देखते हुए कि भाई नंबर ऑफ जो लार्ज फार्म्स हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे हम लोग आगे जितने भी मिल्क एंड मिल प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करेंगे मार्केट में।
8: इस फार्म में फिलहाल 100 से भी अधिक गायें हैं। आज से 5 साल पहले इसे महज 6 गायों के साथ शुरू किया गया था। हष्ट पुष्ट शरीर और दूध से लबालब भरे थन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ काफी मेहनत की गई है और गायों का बहुत ख्याल रखा गया है।
7: अत्याधुनिक तकनीक से डेयरी फार्म स्थापित करने के बाद भी पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि उनके स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन किया जाए। ऐसे में दुष्यंत भाटी जी किस तरह से अपने फार्म में पशुओं के स्वास्थ्य और उनके आहार का ध्यान रखते हैं?
8: यहाँ पर गाय पूरी तरह आजाद है। फार्म में ना तो आपको खूंटा नजर आएगा ना गायों के गले में रस्सी। इनका जब मन करेगा खाना खाएंगी, जब मन करेगा पानी पिएंगी। गाय सफाई को पसंद करती है, इसलिए फार्म में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। अभी गर्मी का मौसम है तो शावर और पंखे चल रहे हैं। अक्टूबर में इन्हें बंद करना होगा और सर्दियां आने पर गौशाला में पर्दे लटकाने होंगे। दुष्यंत का मानना है कि बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को शारीरिक ही नहीं मानसिक आराम भी चाहिए।
9: गले के टैग्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है कि उनका डेटा हमें मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि उनका मास्टिकेशन कितना है, मास्टिकेशन मींस जुगाली कितनी है और दूध कितना दिया उन्होंने, उनका टेम्परेचर लेवल क्या है, उनकी मूवमेंट कितनी हुई है, कितनी देर उन्होंने फूड का इंटेक किया है, तो नंबर ऑफ आवर्स वो हमें कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं, जिससे कि हमें डेटा प्रोवाइड होता है कि हम देख सकें कि भाई गाय को कितना उसने पूरे दिन में अपनी मूवमेंट करी है, कितना हैबिट्स में खाना खाया है, और उससे हमें मिल्क प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है कि हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितना हमें दूध उसने प्रोड्यूस करके दिया है। और उसी के साथ लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सारा, जिसमें कि गाय को बांधा नहीं जाता है और उसमें उसको खाना 24 घंटे के लिए दिया जाता है। 2 बार हम लोग फीडिंग करते हैं, मिल्क अनलिमिटेड, वाटर अनलिमिटेड है।
8: हर गाय के आहार की गणना की जाती है, उसके खान पान का निर्धारण करते समय ये भी देखा जाता है कि उसका वजन कितना है, वो किस स्टेज में है और दूध कितना दे रही है। हर 15वें दिन डाइट चार्ट बदल दिया जाता है।
7: अब से मैं पशु के आहार के बारे में और विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस किस तरह का आहार आप उनको देते हैं और क्या उसमें भी मौसम के अनुसार तब्दीली करते हैं।
9: जो आहार बनता है पशु का वो 4 चीजों से बनता है, जिसमें कि हम लोग हरा चारा लेते हैं, भूस लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड डाइट होती है और साइलेज हम लोग प्राइमरी इन 4 चीजों पे रखते हैं, बाकी एडिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह और होते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द काउ। तो उसके अंदर भी हम मेंटेन करते हैं कि भाई कितना साइलेज देना है, कितना भूस देना है, कितनी फीड देनी है, फीड की जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हम एज पर द मौसम चेंज करते रहते हैं।
8: कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। खेती से पशुओं को चारा मिलता है और पशुओं से फसलों को खाद। दुष्यंत के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है, मगर इतनी भी नहीं कि 100 गायों का पेट भर सके। चारे के लिए उन्हें दूसरे किसानों से संपर्क करना होता है। इस तरह उनका डेयरी फार्म आसपास के किसानों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है।
9: हरा चारा हम लोग किसानों से उगवा लेते हैं, अपने पास भी जमीन है उसमें भी हम उगवाते हैं, और मक्का हम लोग बाहर से प्रिक्योर करते हैं। तो इस तरीके के इनके अलग अलग डाइट्स होती हैं जो हम मौसम के हिसाब से उससे फीड बनवाते हैं। कुछ बाहर की कंपनीज हैं उनसे भी ले लेते हैं, हम लोग अपना भी फीड प्लांट हमारा लगा हुआ है, हम उसे भी बनाते हैं और उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द काउ उसके साथ हम लोग जितने भी तरीके के 28 तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें फीड में डाल के उसको फीड को तैयार करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग इन गायों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो फीड डालते हैं, उसके साथ ही पूरा TMR मेंटेन करते हैं। TMR वो चीज़ है जो टोटल मिक्स राशन है, जिसमें कि पूरा एक बैलेंस डाइट दी जाती है थ्रू आउट द ईयर एज पर द वेदर। उसमें ये जितना भी हमें कंसंट्रेशन डालना है, कितना हमें विटामिंस, मिनरल्स मिनरल्स, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। जो अपनी देसी पदार्थ है जैसे हल्दी है, शतावरी है, वो भी हम समय समय पर डालते हैं। जैसे कोई गाय ग्याबन है उसके साथ हम लोग उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, वो इस तरीके के जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
8: दुष्यंत MBA है, इसलिए वो खुद ही मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं और कांच की बोतलों में दूध पैक करके बेच रहे हैं। दूध के अलावा दही, पनीर, घी, छाछ और मावा सब कुछ यहाँ बनता है।
7: इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब हमें बताएं कि दूध तो है सबसे प्राथमिक जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो मिलता है हमें, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं आपके?
9: दूध के साथ हम लोगों ने फिर पनीर बनाया, फिर घी बनाया और अब हम लोग स्वीट्स में भी हैं और रेस्टोरेंट में भी आ चुके हैं। वो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खुल गया है लास्ट ईयर। और अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क एंड घी, पनीर, बटर मिल्क, छाछ, ये सारी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं बाय नेक्स्ट ऑफ द मंथ।
8: शुरुआत से ही ये डेयरी फार्म अच्छा कारोबार कर रहा है। कोरोना महामारी के समय बिजनेस थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से पटरी पर लौट आया है। अच्छी कमाई की वजह से ही दुष्यंत दूसरे किसानों और नौजवानों को भी डेयरी फार्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो अब तक 40 गांवों के किसानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं और उन्हें डेयरी फार्म विकसित करने के तरीके बता रहे हैं।
7: कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डेयरी फार्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहें।
10: बाय।

0: के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए डेयरी फार्म से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
1: दुष्यंत के पिता हरीशचंद भाटी अपने इलाके का जाना माना नाम है। खेती और पशुपालन इनका पुश्तैनी काम रहा है। उनका कहना है कि बेटे को बड़ा आदमी बनना था, इसलिए MBA के बाद नौकरी की बजाय खुद का कारोबार विकसित किया।
0: दुष्यंत भाटी जी की सफलता के बारे में क्या विचार है उनके पिताजी श्री हरीशचंद भाटी जी का, आइए उन्हीं से जानते हैं, जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित है। तो हरीशचंद जी, आप अपने क्षेत्र में बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और आपके सुपुत्र ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, विदेश में पढ़कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने डेयरी फार्मिंग को चुना। उनकी सफलता को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, जैसे कहावत है कि पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं, तो ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी जो एजुकेशन है वो पहले नोएडा में हुई और फिर अमेठी में हुई, फिर ये इंग्लैंड चला गया और इसने वहाँ जा कर के फिर अपने को एक्सपोज किया और फिर मार्केटिंग में और दूसरी क्षेत्रों में इसने बड़ी संभावनाएं संभाली। और जब ये वहाँ से लौटे तब से 6 वर्ष पहले, तब हमने इसको ऑफर दिया था कि भैया आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो इसने मना किया और कहा कि मुझे बिजनेस करना है। तो हम लोग किसान लोग हैं गुर्जर जाति से, तो हमारे यहाँ बिजनेस में एक रिस्क होता है और वो लेने के लिए गांव के बच्चे तैयार नहीं होते। तो इसने कहा कि मुझे बिजनेस करना, तो मैंने कहा कि भाई उसमें आपको क्या संभावना लगती है और नौकरी आप प्रेफर नहीं कर रहे तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहा कि नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है भाई, बड़ा आदमी बनना है तो आप बड़ा आदमी बन जाइए। तो हमारी कुछ लैंड थी कासना में भी और जहाँ ये खड़े हैं यहाँ भी 60-70 बीघा ज़मीन है, तो हमने इनको कहा कि आप इसमें जो NCR के काम हैं बिल्डर्स लाइन वगैरह के, उसमें आप जाके देखिए। तो इसने स्टडी कराया तो इसका मन बिल्डिंग लाइन में, मकान बनाने में या फ्लैट बनाने में नहीं लगा। फिर ये नेचुरली जो हम लोगों के फोर फादर्स भी करते आए हैं दूध का काम और इस तरह का काम जो है गाय का भैंस का, तो वो हम लोगों का पुश्तैनी काम था। तो फिर इसने एक उत्तर प्रदेश सरकार के की एक स्कीम थी काम धेनु, और उसमें 1 करोड़ 30 लाख लेके और 1 करोड़ बैंक से 30 करोड़ अपना लगा करके इनिशियली उसको छोटे से रूप में 6 साल पहले पूरा किया। लेकिन क्योंकि फिर इसका माइंड बहुत फर्टाइल था तो वो बहुत छोटी चीज़ हो गई। फिर इसने इसको ऑटोमेटिक प्लांट में कन्वर्ट किया और फिर इसने एक रिसर्च की डेनमार्क में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस कारोबार के बारे में, फिर पंजाब में स्टडी किया और फिर ये मुश्किल मिजाज से ही इसको लगा कि यहाँ काम करना चाहिए, तब इसने इसका काम शुरू कराया और फिर इसको ऑटोमेटिक बनाया। अब ये एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है और जो नोएडा गेटर नोएडा में बोटलिंग से अभी तक वो दूध देता है और इसने एक लाइसेंस भी वर्ल्ड लेवल का ले लिया है, जिससे इसका घी भी अब दुनिया में जाएगा।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। एक उद्योग के रूप में ये 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें से ज्यादातर या तो छोटे और सीमांत किसान हैं या फिर भूमिहीन तबका।
0: डेयरी व्यवसाय का प्राथमिक उत्पाद दूध है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई तरह के डेयरी उत्पाद हैं जिनकी बाजार में बहुत ही अच्छी मांग रहती है। तो आइए जानते हैं कि दूध और इसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में किस तरह के विकल्प और किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं।
1: दूध से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इन उत्पादों को बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे आगे है। हमारा देश बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है, खासकर मक्खन, ऑयल, पाउडर के रूप में दूध और क्रीम, घी, लस्सी, पनीर, स्किम दूध पाउडर और पूर्ण दूध का निर्यात कई देशों में हो रहा है। 2022-23 के दौरान भारत से 67,573 टन डेयरी उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनसे 2,27,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
0: डेयरी व्यवसाय पारंपरिक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आज की तारीख में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
1: राष्ट्रीय डेयरी योजना के विकास और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के कारण डेयरी फार्मिंग का बुनियादी ढांचा काफी बेहतर हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत इस क्षेत्र को अच्छा प्रोत्साहन मिला है। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। पशुओं की उत्पादकता और रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से पशु आबादी के कानों में टैगिंग की जा रही है, ताकि पशुओं की बीमारियों का पता लगाने, निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके।
3: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर विपिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजना है खास तौर पर जो चलाई जा रही है, जिसका जो पशुपालक है वो लाभ ले सकते हैं, जो डेयरी उद्यम से जुड़ना चाहते हैं।
2: धन्यवाद मैडम। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म जो लॉन्च की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी भारतीय ब्रीड्स हैं, भारतीय नस्लें जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनका संरक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4,01,00,000 रुपया का है। इसके लिए आप ndb.coop की साइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इसमें लगभग 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको 200 भारतीय नस्ल के पशु पालने होंगे, जिसमें कि प्रत्येक साल आपको ये मानते हुए कि 50% जानवर आपके गाभिन हो जाएंगे, तो उनसे हम अगर मोर्टेलिटी रेट निकाल भी दें तब भी 90 बछिया आपके पास मौजूद रहेंगी। उन 90 बछियाओं को आपको सेल आउट कर इसके फार्म को आगे बढ़ाना है। ये योजना की सब्सिडी आपको प्रत्येक 4 चरण में, जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करते जाएंगे, उसी दशा में आपको 50-50 लाख रुपए की कर 4 बार में आपको योजना की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कर दी जाएगी।
1: बेहतर डेयरी कारोबार के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहला है अच्छी नस्ल के सांड से गर्भाधान, दूसरा है आहार, तीसरा साफ सफाई, रोग प्रबंधन और टीकाकरण, और चौथा है पेट के कीड़ों की दवा दिलाना।
3: डॉक्टर विपिन, डेयरी उद्योग जो है इसमें भी कई तरह की नई तकनीकें अब आ गई है, खासतौर पर अगर नस्ल सुधार की बात करें या फिर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में किस तरह की योजनाएं और हैं जिनका लाभ ले सकते हैं पशुपालक?
2: जो मेन तकनीक या अभी हमारे सामने जो निराश्रित गौवंश की समस्या आ रही है, उसके निदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसका लगातार हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे पास वर्गीकृत वीर, जिसको कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन कहते हैं, उसके द्वारा हम अब पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की योजना का संचालन कर रहे हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है कि इसकी अगर हम मार्केट कॉस्ट देखें तो लगभग 1,250 रुपये थी, लेकिन विगत वर्ष तक सरकारी लेवी इसकी जो थी वो 300 रुपया ली जा रही थी, लेकिन कृषक भाइयों को और पशुपालक भाइयों को सुविधा देने के लिए इस कृत्रिम गर्भाधान की शुल्क केवल 100 रुपये कर दी गई है। इसमें ये एश्योर्ड है कि आप जो भी जानवर कराएंगे उसमें 90% तक केवल फीमेल काफ ही बॉर्न होगा। जब फीमेल काफ बॉर्न होगा तो मेल काफ की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि मैकेनाइज युग में ट्रैक्टर वगैरह का काम खत्म हो चुका है, इसलिए मेल काफ की उपयोगिता काफी कम हो चुकी है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सालय है उस पर आप जाकर वर्गीकृत वीर से अपने जो भी, अभी हमारे पास केवल गौवंशीय पशुओं का वर्गीकृत वीर उपलब्ध है, बहुत ही जल्दी महीष वंशियों का भी वर्गीकृत वीर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पर आगे भी कार्य कर रही है कि भूमि प्रत्यारोपण तकनीक, जो कि अभी हमारे पास लैब में है, लैब टू लैंड तक आने में उसको थोड़ा सा समय है, लेकिन आगे हम उस तकनीक का भी प्रयोग फील्ड में करेंगे।
1: 70 के दशक में हमारा देश दूध की कमी से जूझ रहा था। प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता घटकर 107 ग्राम रह गई थी। तब देश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डेयरी क्षेत्र की जो सफलता आज हम देख रहे हैं उसमें इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में कोशिशें हो रही है। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अलग से डॉक्टर कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाता है।
0: आज के कृषि के कार्यक्रम में कि किस तरह से आज के युवा डेयरी क्षेत्र से बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
4: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुई वात हामली गेंदा ना फूल नी खेती नी वातियो अने कार्यक्रम नी बीजी कड़ी में आधुनिक तरीका देखी दूध उत्पादन नी वातियो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा अने खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तीना समाधान नी वातियो पन लावी से अने नवी नवी खेती नी तकनीकी वातियो पन लावी से। किसान भाइयों, हमू आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातियों हामले अने आपड़ी खेतीवाड़ी ना क्षेत्र में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू बस एतरी वात, केम की हाल समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कही था, हामलता रहेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर तमारा रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाथे।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। डॉक्टर अरबिंदो आज के हमारे कलाकार हैं, आज के हमारी प्रतिभा हैं, आज के हमारे टैलेंट हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं उन्हीं से बातचीत करते हुए और उन्हीं के गीत सुनते हुए। तो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और डॉक्टर अरबिंदो का भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर अरबिंदो का स्वागत करते हुए, वेलकम सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमारे सुनने वालों से, जो आपके आज फैन बनने वाले हैं, जो हमारी आज की कलाकार फैमिली है, उससे बात कीजिए। हमें प्लीज बताइए ना, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। डॉक्टर अरबिंदो,
1: थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी एक्साइटेड, एंड थैंक यू समीर जी एंड थैंक यू नितिन जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वेल, इसके लिए बहुत लंबा कहानी बताना पड़ेगा, मगर बताऊंगा जरूर। माय नेम इज अरबिंदो, आई एम नॉट अ बंगाली, आई एम फ्रॉम कर्नाटक, माय मदर टंग इज तेलुगु।
0: वाओ।
1: एंड आई लर्न्ड हिंदी इंग्लिश ऑन द जॉब, एंड आई लर्न्ड तमिल ऑन द जॉब, हिंदी इंग्लिश फॉर सर्वाइवल, एंड आई एम मैरिड टू अ नेपाली हु इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ इंडिया।
0: ओके,
1: सो ऑल इन ऑल यू कैन कॉल मी आई एम अ ट्रू ब्लू इंडियन।
0: वाओ, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर अरबिंदो एक्चुअली कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तेलुगु बोलते हैं और इंटरनेशनली कनेक्टेड है। बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए,
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, अरबिंदो सर से बात करते हैं। तो अरबिंदो सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो गायकी, म्यूजिक, संगीत और आपके जो गाने गाने का जो पैशन है, ये कब से शुरू हुआ? थोड़ा सी उसकी छोटी सी स्टोरी बताइए, कब से शुरू हुआ ये?
1: जी सर, बिल्कुल। गायकी तो शायद कह सकते हैं मेरी जीन्स में है, क्योंकि मेरे दादाजी 60s 70s के दशक के ऑल इंडिया रेडियो कर्नाटक एंड आंध्रा के परफॉर्मर थे, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। हालांकि मैंने कुछ सीखा नहीं फॉर्मली, तो थोड़ा बहुत दादाजी से जो सीखा वो सीखा, पर मेरा ये मानना है कि बहुत पहले से ही, बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक था। एंड चूंकि मैंने बताया कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी सब मिला करके, मैं इन सब गानों को सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। आप तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, कन्नड़ा बोलिए, हिंदी बोलिए, 40s 50s 60s से लेकर के आप आज तक के लेटेस्ट के मैं बहुत फॉलो किया हूँ। और मेरी एक और खासियत है, मैं हालांकि मैं अपने आप को बड़प्पन नहीं दिखाना चाहता, लिरिक्स मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ।
0: Right.
1: तो जब लिरिक्स पकड़ लेता हूँ और सुर भी जल्दी पकड़ लेता हूँ, तो क्या होता है, इट बिकम्स इजी फॉर मी टू रेप्लिकेट। सो इफ आई मे हैव टू टेल यू अबाउट माय गायकी, आई पब्लिकली स्टार्टेड सिंगिंग इन 2012, स्टार्टेड गिविंग स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड सिंगिंग ऑन द स्टेज मल्टीपल लैंग्वेजेस, बिकॉज आई कैन सिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। आई वॉज सॉट आफ्टर इन स्मॉल पर्सनल नोन सोशल सेटिंग्स, क्योंकि डिसंबर 31st वगैरह में न्यू ईयर्स एंड ऑल कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी सबकी जरूरत पड़ती है। तो ऑल इन ऑल लोग मुझे अकेले को बुलाते थे, मैं चार पांच लैंग्वेज में सबको सेटिस्फाई कर देता था, तो वो एक हो गया। एंड इंसिडेंटली, लाइक आई सेड, माय वाइफ्स रूट्स आर फ्रॉम नेपाल, दो शी इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ इंडिया। आई कैन सिंग नेपाली ऑल्सो टू इम्प्रेस माई वाइफ्स रिलेटिव्स, एंड दे हैव गिवन मी फेयरली गुड थम्स अप दैट माई नेपाली इज एज प्योर एज इट कैन गेट। सो I can sing about in 9 languages all in all.
0: Oh my goodness, amazingly beautiful. दोस्तों, आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, देखिए ना, वो 9 भाषाओं में गाना गा सकते हैं, संगीत के साथ जुड़ सकते हैं। क्या गुजरती होगी उनके जहन में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके शख्सियत में, जब वो 9 लैंग्वेजेस में गाते होंगे, मे बी एक ही गाने को 9 लैंग्वेजेस में शिफ्ट करते होंगे। अरे यार, मजा ही आ जाता होगा। बहुत खूब, बहुत खूब अरविंदो साहब, बहुत खूब, मजा आ गया।
1: थैंक यू।
0: चलिए तो दोस्तों आइए मजा लेते हैं, सुनते हैं इस भाषाविद की आवाज में कुछ गीत, फिर हम आगे बढ़ते हैं अरविंदो सर से बात करने के लिए। लीजिए पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब अरविंदर साहब, बहुत खूब। तो मेरे पहले ही बॉल पर सिक्सर पर सिक्सर मार दिए आपने, क्या बात है।
1: थैंक यू समीर जी।
0: तो आपने अभी पीछे बात किया कि कई 31 दिसंबर हुआ या कुछ ओकेजन हुए या सोशल गैदरिंग हुई, लोग बाग आपको इसलिए बुला लेते हैं क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनको एक साथ एक व्यक्ति से ही संगीत सुनने को मिल जाता है। तो अपने
1: जी, बिल्कुल
0: अपने किसी बहुत ही अच्छे सी स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोई एक मतलब बहुत चुना हुआ एक्सपीरियंस कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको बड़ा मजा आ गया हो या आप शायद बहुत नर्वस हो गए हो और फिर आपने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए लोगों का मन जीता हो, कोई ऐसा एक इंसिडेंस।
1: यस सर, एक बार ऐसा हुआ था 2015 की बात है शायद, अबाउट 10 ईयर्स एगो। देर इज अ वेरी फेमस कन्नड़ा फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर ड्यूओ ब्रदर्स कॉल्ड राजन नागेंद्रा, एंड नागेंद्रा जी तो चले गए एंड राजन सर से मैंने थोड़ी गायकी सीखी है इन टर्म्स ऑफ परफेक्टिंग द वॉइस कल्चरिंग, डेवलपिंग द वॉइस टिम्बर, उनसे क्लासेस ली है मैंने फ्रॉम राजन सर, एंड आई हैपन टू डिलीवर the songs composed by Rajan sir with Rajan sir sitting in the front row and listening to me very intently with a very serious pair of eyes because you know it was a song of Balu sir. I am a great devotee of Balu sir.
0: Okay.
1: And I delivered that song and incidentally the person sitting next to Rajan sir was the director Bhargava who directed the movie in which this song was picturized.
0: Okay.
1: And that was a fantastic experience for me. And it so happened that Bhargava ji literally spilt the upma on his t-shirt after the song, saying, you reminded me of the shooting of this song of 1977. And I'm so glad that I spilled the upma on my t-shirt because I was so engrossed in the song. So that was a great compliment.
0: Oh my goodness. Ye toh bilkul theek baat hai. Dosto, sun ke sochiye. एक बार इमेजिन तो करिए कि आपकी गायकी सुनकर कोई लिसनर खाना अपने ऊपर ही गिरा ले, मतलब इतना ज्यादा वो खो जाए आपके गीत में कि उनको पता ही ना चले कि उनकी प्लेट टेढ़ी हो गई है और उपमा उनकी शर्ट पे गिर रहा है। ओह माय गॉड,
1: बिल्कुल, दैट वाज अनफॉरगेटेबल फॉर मी।
0: वाओ, ऑफ कोर्स इस तरीके के मोमेंट्स हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रह जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आइए ना, तो दोस्तों आप भी याद कीजिए क्या कोई ऐसा मोमेंट आपके साथ भी गुजरा है। तब तक अरविंदो सर की आवाज में सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे से गीत, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: जी सर।

0: अरे कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है, कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है।
1: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलिए अरविंदो सर, ये प्रोग्राम है दरअसल हमारे आपके संगीत में जो मोहब्बत है, संगीत का जो पैशन है, उसको मजा लेने के लिए, कुछ बेहतर महसूस करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मैं संगीत को एक मेडिटेशन भी मानता हूं, सभी लोग मानते हैं।
2: एब्सोल्युटली।
1: आपके टैलेंट को समझने के लिए, तो आपको समझा, चलिए थोड़ा सा आपके बारे में समझते हैं। मुझे अपने कोई भी तीन बहुत अच्छे मित्रों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में बताइए। वैसे आपका जवाब आ सकता है कि सभी मेरे दोस्त हैं, किन्हीं तीन का नाम लूंगा तो चौथा नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं उन सब को हाथ जोड़कर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बुरा ना माने। ऐसे कौन तीन लोग हैं जो अरविंद सर के बहुत नजदीक हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं, मे बी उनकी टांग खिंचाई भी करते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट दे आर ऑलवेज देयर विद हिम। सो कौन है वो तीन लोग?
2: जैसे आपने ठीक बोला, तीन का नाम लूंगा तो बाकी सारे नाराज हो जाएंगे, बट वैसे कहूं देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यू नो जिनके साथ मैं स्कूल गया था, यू नो आई एम सेइंग 40 साल की दोस्ती है, 40 साल के ऊपर की दोस्ती है, कम से कम 30-35 साल का तो नॉर्मल सी दोस्ती है। और ये हम लोग एक ही गांव से हैं, एक ही शहर से हैं, साथ में पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, प्लस टू पढ़े, इंजीनियरिंग किए साथ में, और एक ही साथ इन अ स्पैन ऑफ 6 months टू 1 year वी ऑल वेंट टू US, एंड 3 ऑफ अस वी केम बैक, द रिमेनिंग 5 ऑफ देम आर स्टिल इन द US। एंड आप यकीन नहीं मानोगे समीर जी, एवरी संडे मॉर्निंग our ritual 7:30 AM on a Zoom call, we all come, we all turn on our cameras, nothing doing, भले जिसके पास एक एकड़ की प्रॉपर्टी है, यूएस में स्विमिंग पूल है, टेस्ला है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। We want the same guy with whom we went to school. We speak the same way that we spoke like in school. And आज भी टांग खिंचाई ऐसी होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे भी हमारे जोक्स के बारे में, हमारे प्रैंक्स के बारे में, हमारी स्टोरीज के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बच्चे भी दोस्त बन गए हैं, एंड दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक फीलिंग। एक दो तीन लोगों के नाम लूंगा, बाकी सब बुरा ना माने। वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज श्रीनिवास बाबू, एंड ही इज माय बिगेस्ट सपोर्ट, हर एक गाने को मेरे बारीकी से सुन के फीडबैक देगा, यहाँ ये गया, वहां वो गया, या फिर इसको और थोड़ा कर सकते थे, ये तो एकदम फैंटास्टिक है, तुम तो मतलब तेरे लिए गाना बना था, ये टाइप्स बहुत अच्छा फीडबैक देता है मुझे हमेशा, सबसे पहले मैं उसे शेयर करता हूँ। और दूसरा एक फ्रेंड है बसवराज करके, ही इंसिडेंटली हैपेंस टू माय बी माय नेबर आल्सो फ्रॉम माय होम टाउन, हिज मॉम इज माय मॉम्स फ्रेंड, हिज डैड इज माय डैड्स फ्रेंड, हिज सिस्टर इज माय वाइफ्स फ्रेंड, एंड ही इज माय हाई स्कूल फ्रेंड। सो ही इज लाइक यू नो ही इज लाइक ब्रो यू आर दिस यू आर दैट एंड यू आर अनबिलीवेबल एंड ओनली यू कैन डू दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन हमेशा हमेशा से। ही इज मोर देन अ फ्रेंड, इज लाइक अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। एंड third one if I were to say is another friend called Saujanya Kumar. I know him since 8th standard and we both are 50 plus now by age, and their daughters are like shocked, like you and my dad went to same school since 8th grade. I said yes beta, we went to same school since 8th grade. Okay. And she was like, wow, how can you be friends with someone for these many years? I said we have grown together, we have seen each other, and he is my another biggest friend, motivator and critic as well. So I take these three guys feedback very seriously.
1: Wow, amazing story, amazing story. Dosto, please get inspired. अरविंदो सर ने अपने तीन दोस्तों के बारे में कितनी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है, डिटेल भी दिए, लेकिन क्रिस्प भी रहे। उन्होंने इमोशंस भी इन्वॉल्व किए कि उनकी डॉटर्स आर अमेज्ड एट द यू नो टेन्योर ऑफ और द ड्यूरेशन ऑफ देयर फ्रेंडशिप, क्योंकि आज की डेट में फ्रेंडशिप तो शायद 2-3 मिनट से ज्यादा की होती नहीं, बट एनीवेज आई मीन दीज आर पैरागॉन। सोचिए ना, 8th स्टैंडर्ड से लेकर टिल डेट, वाओ, मतलब आई एम ऑल्सो अमेज्ड। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को याद कीजिए, कौन है वो, पकड़ के रखिए, जाने मत दीजिए।
2: चलिए, इफ आई मे एड वन कोट समीर जी,
1: प्लीज डू।
2: ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइक डायमंड्स, न्यू फ्रेंड्स आर लाइक शाइनिंग ग्लास. व्हेन यू गेट अ न्यू शाइनिंग ग्लास, डू नॉट डिस्कार्ड द डायमंड्स.
1: ऑलराइट, दैट्स सो क्यूट. ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइक डायमंड्स, क्या बात है, बहुत खूब. तो दोस्तों, इकट्ठा कीजिए अपने डायमंड्स को, होंगे आपके पास भी. आइए ना, तब तक इन प्यारे से गीतों का मजा लें और फिर अरविंदो सर के पास वापस आए इन्हीं इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बातों के लिए.

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सो अरविंदो साहब, आपके बचपन के बारे में हमने जाना, कब आपने संगीत संगीत को एंजॉय करना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, उसको भी हमने जाना, कितनी लैंग्वेजेस में आप गाते हो वो भी समझा। फिर हमने आपके बारे में जानने के लिए आपके तीन दोस्तों के बारे में भी जाना, बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। अब आपसे पूछना चाहूंगा, वापस लौटूंगा जरा सा टर्न लेते हुए संगीत की तरफ ही, कि आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में जरा हमें बताइए, कौन है वो। मतलब यूं तो सभी लोग, फिर वही वाली बात हो गई फ्रेंड्स की, आप कहोगे सभी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कोई तीन सिंगर्स चूज कीजिए ना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इफ एट ऑल वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट योर फेवरेट सिंगर्स, मे बी वी कैन कीप ऑन टॉकिंग फॉर द होल नाइट, नो प्रॉब्लम। बट हमारे दोस्तों को भी अपने शेयर करने दीजिए, विचार सोचने दीजिए, तो तीन लोगों के बारे में हमें बताइए, तीन सिंगर्स।
1: जी, कैन आई टेक थ्री मेल एंड थ्री फीमेल?
0: ओ या या या, श्योर श्योर श्योर।
1: थैंक यू सो मच। इफ आई वांट टू टेक थ्री, माय थ्री फेवरेट मेल सिंगर्स, आई वुड रेट एसपी बालसुब्रमण्यम at the top.
0: Wow.
1: Why? Because for any South Indian, Balu sir is not a singer, he is an emotion for us.
0: Right.
1: Masti wala, rone wala, daru wala, shadi wala, bhakti wala, romance wala, shringar ras, all ras ke sab songs hame background mein bajte hain. I was fortunate enough to meet him in person in 2015, and I fell at his feet, and guess what Samir ji, I could not utter a single word. उनको रूबरू देखते ही मेरे दिमाग में उनके हजारों गाने कन्नड़ा तेलुगु तमिल मलयालम हिंदी में बजने लगे। मैंने बोला सर अल्फाज नहीं निकल रहे मुंह से। ही सेड आई नो इट, यू नो व्हाट ही सेड, आई नो इट हैपेंस।
0: Oh, so cute.
1: I can't speak. I'm not able to speak. He said, it's okay. I know it happens. I sat at his feet. I have that photograph with me. I keep it at my work desk. That's my biggest achievement. So he's my favorite singer number one. And my singer number two would be none other than Kishore Da. Again, he is not a singer for any singer. He is an emotion for all of us. Hasaya hai, rulaya hai, philosophical kiya hai, romance kiya hai, tease kiya hai, ajeeb ajeeb tarah ki awaazein nikali hai gaane ke beech mein, wah wah wah wah wah wah karke, aur aise aise matlab gaane gaaye hain jo aaj bhi sun sakte hain. Aur my son is 18, he still knows O Saathi Re Tere Bina Bhi Kya Jeena.
0: Okay.
1: Any song that we play after 40 50 60 years, he is timeless. So Kishore is my biggest inspiration to sing, and probably I'm very highly biased towards Kishore and Kishore songs. I might have heard all of his songs in Kannada, Telugu, Tamil, Hindi he has sung, although Malayalam also he has sung. I've heard his songs as well, and Hindi to hai hi, and Marathi songs, Bengali songs of his. I have lot of experience of listening to Kishore Da. He'll be my number two choice. And number three for me and for my guru Balu sir, he is Rafi Saab. He was the god of music. His voice, I will consider god of music. The way kis nazakat se gaate the, ye dekh ke dil jhuma hui pyar ki shararat, Shammi Kapoor songs. Jee. And amazing voice, silken voice. Would be my three choice.
0: Right.
1: And coming to three female singers, I am extremely biased towards again, for South Indians, she is not a singer, she is an emotion. Bhakti, Shringar, Ras, Bhai, Romance, you name it, motherly figure for us, Janaki Amma, followed by Lata Didi and of course Asha Didi.
0: Wow, kya description hai boss, kya description hai, amazing. Dosto, aapne gaur kiya, hamare friend Arbindo sir ne Kishore Da ki awaaz ko, Rafi sahab ki awaaz ko, Balu sir ki awaaz ko इमोशन कहा है, भावनाएं जब उनकी आवाज सुनते हैं ना, हमारे अंदर से उमड़ पड़ते हैं वो इमोशन, दैट्स अ रिएक्शन वी गेट, क्या बात है, बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आइए ना इस संगीत संध्या में, इस म्यूजिकल इवनिंग में, चलिए सुनते हैं अरविंदो सर की ही आवाज में ये बेहद बेहद खूबसूरत गीत जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किए, ब्यूटिफुल।

0: को।
1: बहुत खूब, अमेजिंग। अरविंदो सर, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, थोड़ा सा हम सब लोगों को टिप दीजिए, गाइड कीजिए कि हम अपने आप को गीतों के लिए, गाने के लिए, चलिए मुझे ही बताइए, बिकॉज आई एम एस्पायरिंग टू बी अ सिंगर, दो ऑफ कोर्स आई एम नॉट एट ऑल अ सिंगर येट। आप लोगों को सुन सुनकर थोड़ा सा जेलसी फील होता है, तो लगता है एक दो गाना तो मैं भी गा लूं, ट्राई तो करूं। सो टीच मी, हाउ वुड यू टीच अ यंग यू नो एमेच्योर सिंगर कैसे गले को तैयार करें, कैसे सुर को पकड़े, कैसे करियो को पकड़े, थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारे सारे लोगों को, सबको।
2: जी सर, हालांकि आपने ये सवाल पूछ लिया है, हालांकि मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता, ग्रुप में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनके गाने मैं सुन चुका हूँ, यू नो, एंड यू नो दे आर अमेजिंग सिंगर्स, बट इफ आई वर टू शेयर सम टिप्स, देखिए वॉइस की जो बात करें तो वॉइस सिंगिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस की बात मैं बाद में करता हूँ, सिंगिंग जो है काफी सारे लोग ये समझते हैं सिंगिंग आवाज के बारे में होती है
1: जी।
2: मैं थोड़ा अलग विचार रखता हूँ, ये सिंगिंग जो है ये आवाज की नहीं है, सिंगिंग इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर ब्रेथ एंड ब्रेथ कंट्रोल।
1: ऑलराइट,
2: चाहे आपकी आवाज कैसी भी हो, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो, थोड़ा रफ हो, या स्मूथ हो, या थोड़ा मैस्कुलिन हो, या थोड़ा फेमिनिन हो, ब्रेथ कंट्रोल में आप जिस अंदाज से गाएंगे आपकी आवाज आप ही का रंग लेकर के आएगी एंड इट विल साउंड यूनिक।
1: Okay.
2: Why I am telling you that because if I listen to your voice is extremely booming and dynamic. That is the name of the voice of the timbre, the voice that you have, Samir ji.
1: Right,
2: that
1: sir.
2: Is dynamic and booming. So maybe because of exercising your vocal muscles, speaking, your voice has become, you know, dynamic and booming.
1: Jee.
2: Now, is awaaz se aap breath control practice kijiye 8, 12, 14, 16 seconds. पे एक ही धुन पे रहने का, फॉर एग्जाम्पल सा, होल्ड इट फॉर 8, होल्ड इट फॉर 12, होल्ड इट फॉर 14, होल्ड इट फॉर 16.
1: ओके, ऑलराइट, ओके,
2: इट स्टार्ट गेटिंग बेटर, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किशोर कुमार की एक गाना लेते हैं पुराना वाला, सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली, अरे टी रैट, रैट माने चूहा, अरे तिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। ये गाना जो है 50s का गाना है,
1: yes.
2: 50s का गाना है, 50s के गाने में किशोर कुमार जी की आवाज यू नो गौर कीजिए,
1: थोड़ी यंग थी।
2: और 87 में शराबी में मंजिले अपनी जगह है। सो 57 से लेके 87 में 30 साल में क्या बदला, उनकी आवाज की टिम्बर कल्चर होती गई।
1: जी जी जी,
2: जैसे कि बहारों फूल बरसाओ, 60s का गाना, यही रफी साहब की आवाज सुनिए, क्या हुआ तेरा वादा, दैट इज कॉल्ड वॉइस कल्चरिंग। तो ये वॉइस कल्चरिंग के लिए ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ प्रैक्टिस एंड वोकल मसल्स आर लाइक एनी मसल्स ऑफ योर बॉडी, द मोर यू वर्क इट द मोर बिकम द बेटर दे बिकम।
1: वाओ, अरे वाह, बिल्कुल टेक्निकल, बिल्कुल सिंपल, बहुत ज्यादा टेक्निकल आपको नहीं भी समझ में आया हो ना दोस्तों, मुझे तो आया है। थैंक यू सो मच अरविंदो साहब, जो आपने मुझे बताया कि मेरी आवाज का टिम्बर एंड टेक्सचर क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली इट गॉट डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ मुझे क्या करना है वो भी आपने मुझे बताया कि कोई एक सुर पकड़ के, जैसे सा के बारे में आपने बोला, सो आई कैन स्टार्ट माई टाइमर फॉर 8 सेकेंड्स, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड्स एंड 16 सेकेंड्स।
2: यस
1: अरविंदो सर, मैंने लिख लिया, आई रिमेम्बर दैट एंड आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट।
2: थैंक यू,
1: अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद आपने डिफरेंसेस भी बताए कि किस तरीके की किशोर कुमार की यंग एज की आवाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका टेक्सचर चेंज हुआ, सेम वे रफी साहब का। ओ माय गॉड, अमेजिंग टिप्स दोस्तों, सीख लीजिए ना, अगर कहीं पर आपने, आप अच्छे सिंगर होंगे, डेफिनेटली अच्छे गा रहे होंगे, बट सीखते रहने में तो कोई बुराई कभी भी नहीं होती ना, व्यक्ति तो सीखता ही रह सकता है। तो चलिए, ये प्यारे से गीत मुझे पेश करने दीजिए, सुनने दीजिए अरविंदो सर की खूबसूरत आवाज में, चाहिए मजा करिए।

0: बहुत खूब अरविंदो सर,
1: सर
0: आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे हमने टेक्निकल सलाहें भी ली, आपके पैशन को जाना, आपकी मोहब्बत सुब्रमण्यम सर की तरफ हमने पहचानी, किस तरीके से आप 9 लैंग्वेजेस में गाते हैं, कितने सारे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, आपके फ्रेंड्स के बारे में हमने जाना। सो ऑल टुगेदर एक अमेजिंग अमेजिंग कैरेक्टर, एक अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी, मजा आ गया अरविंद सर आपसे मिलकर। तो बस
1: थैंक यू,
0: चलते चलते हमारे सब लोगों के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए और आपके सारे फैंस के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो आज आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कोई मैसेज दीजिए, कुछ बात कर लीजिए उनसे।
1: ओके, मैसेज तो मेरा यही रहेगा दोस्तों, लाइफ इज द बिगेस्ट टीचर एंड लाइफ विल नेवर स्टॉप टीचिंग यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ बिकॉज द लर्निंग मस्ट नेवर स्टॉप।
0: Wow, amazing. Arvind sir, thank you so very much. आज सचमुच सचमुच मेरे दिल से बात आ रही है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक पवित्र आत्मा, एक पायस सोल जो अपने पैशन के पीछे पागल है, मस्त है, देखा जाएगा जो होगा। और फिर जिसके पास इतने 3 खूबसूरत फ्रेंड्स हो, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उस व्यक्ति को परेशानी छू के ना जाए, हम दुआएं करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सर।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ, तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं ऋतुपर्णो दास साहब, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, स्वागत करते हुए कहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों के मुखातिब होइए, प्रेजेंट करिए, हमें बताइए ना आप भला कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं आप दास साहब?
1: मेरा परिचय है, दो परिचय हैं। एक परिचय है कि मैं फिलहाल रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट के अध्यापक हूं। मेरा दूसरा परिचय है मैं एक गायक हूं। मैं खास करके भक्ति गीति के ऊपर, जिनके जहां पर आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा प्रभाव हो, ऐसे भक्ति गीति निराकार ईश्वर के ऊपर मैं फिलहाल उस पे मैं ध्यान दे रहा हूं, और उसके ऊपर मैं गीत रचना और गीत गाना, गीत का सुर बनाना, ऐसे कामों में मैं इन्वॉल्व हूं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपने जाना कि दास साहब दरअसल एक अध्यापक हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में सीनियर फैकल्टी हैं, साथ साथ सिंगर हैं और निराकार भजनों की रचना भी करते हैं दास साहब। तो चलिए दास साहब के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं, आइए कुछ सीखते हैं दास साहब से कि दीस दास साहब ने इस विषय में क्या समझा। दास साहब, सबसे पहली बार स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में आपने कब सुना, किसने बताया था आपको आध्यात्म क्या होता है, कब?
1: मैंने पहली बार आध्यात्मिकता के बारे में अपनी मामा को सुना। मेरे मामा का नाम था डॉक्टर प्रणव रंजन घोष, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला साहित्य का अध्यापक थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो आध्यात्मिक कथा के मूर्ति थे। उन्होंने काफी खूब सारे किताब, खूब सारे रचना लिखे थे आध्यात्मिक कथा के ऊपर। उनका पीएचडी का जो टाइटल था वो आध्यात्मिक बांग्ला साहित्य में स्वामी विवेकानंद के

0: आध्यात्मिक मता के दो मतलब होता है, दो मायने होता है। एक है जो थियोरिटिकल, आध्यात्मिक कथा है स्वयं को खोजना, स्वयं की आत्मा को खोजना और उसको ये विश्वात्मा से उसको मिलाना, ये थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल है आध्यात्मिक कथा का अर्थ है भेदभाव नहीं करना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना।
1: ओके, ऑलराइट। सो आज ये चीज और बहुत साफ तौर पर दिखलाई दे रही है, जैसा दास साहब ने बताया कि आध्यात्मिकता के दो मतलब हो सकते हैं। एक जो लिटरल मीनिंग है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा के साथ मिलन और आपस में उन दोनों का संबंध सीखना। और दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दास साहब ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। बहुत सुंदर, एक नई तरीके की परिभाषा अलग शब्दों में आज दास साहब ने हमें बताई है। बहुत सुंदर। अगर इसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे बढ़कर बात करें तो चलिए, आपके तो मामा जी ने आपको इतने प्यार से बताया, आध्यात्मिकता के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया, क्या आज के जो यूथ जनरेशन है उसको ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ज्यादा समझ में आती है? और अगर आती है तो वो किस तरीके से इसको परसीव करते हैं? हाउ डू दे टेक इट? स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं वो?
0: यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हम इस पर कोई सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते।
1: ऑलराइट।
0: लेकिन ज्यादातर आजकल के जो यूथ है इन लोगों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का ज्यादा इन लोगों का टेंडेंसी है, तो इन लोगों में से खूब सारे लोग आजकल मंदिर में जाते हैं, मंदिर मस्जिद ये इसमें जाते हैं, जाके दान करते हैं। तो एक तरह का ये इनको दान करना, जो अपना अपना जो आय है, अपनी आय का एक अंश दान करना, ये लोग एक बड़ा समाज सेवा मानते हैं, ये एक तरह की यूथ में दिखता है। और दूसरा यूथ कुछ है जो आध्यात्मिक कथा में के लिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो लोग वी कॉल देम मेटेरियलिस्ट। ये लोग भोगवादी होते हैं, तो इनको आगे जाके करियर बनाना या बिजनेस में लाभ करना, ये एक तरह का होता है। और जहां पे बिजनेस में लाभ करना है वहां पे वो लोग मंदिर मस्जिद में भी दान करते हैं, लेकिन वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब में दिखाते हैं, ज्यादातर उनके रिपोर्ट में शो करने के लिए, क्या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलने के लिए। अगर आप दान करेंगे किसी मंदिर में, भले ही आपका बिजनेस ना हो, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, किसी मंदिर में आप दान करिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करिए, आपको इनकम टैक्स का छूट मिलता है।
1: हाँ,
0: ये एक है। और फाइनली कुछ पढ़े लिखे उच्च लेवल के व्यक्ति है, मैंने उन लोगों को देखा, उसके अंदर नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज विजेता भी है, वो लोग जुक्ति यानी लॉजिक या रीजनिंग पे बिलीव करता है, वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है वो लोग उसके बेसिस पे उसके लॉजिक पे आगे जाके चलते हैं।
1: ओके।
0: एक जगह पे जाके वो लोग रुक जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को उतना तक जाके उसके बाद वो लोग रुकते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके आगे भी कुछ है, बस इतना तक।
1: ओके। बहुत क्लियर है कि आज का यूथ दरअसल स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और उसको कैसे परसीव करता है, ये चीज दास साहब ने हमें समझाई। बिल्कुल ठीक दास साहब, जब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप ही का गाया हुआ एक प्यारा सा भजन हम अपने सुनने वालों को सुनाएं, फिर वापस लौटते हैं आपसे बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए।

0: बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी गायकी। दास साहब, आगे बढ़ते हुए इस विषय में बात करें तो आध्यात्म के बाद एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो बार बार डिस्कस किया जाता है, समझने की जिसको आवश्यकता है, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। क्या है धर्म आपके हिसाब से? आप क्या परिभाषा बताना चाहेंगे धर्म की?
1: मेरे हिसाब से, या तो मैंने जितना किताब पढ़ी है और जितना आध्यात्मिक लोगों की, व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी है, उसके हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोई धर्म समझो कि, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, कि मैं निराकार ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो उसके बारे में नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन रियल लिरिक्स, रियल पोएम्स ऑन आवर डिवोशन टू द फॉर्मलेस गॉड, निराकार ईश्वर। तो उसमें निराकार ईश्वर धीरे धीरे एक जगह पे जाके एक ज्योति के हिसाब से प्रकट होते हैं, जो हमें, इफ वी विजुअलाइज इन अवर माइंड, अगर हम हमारे मन में कल्पना करें तो निराकार ईश्वर एक ज्योति होता है जिनका कोई आकार नहीं होता है। और ये अच्छे अच्छे क्लासिक इंग्लिश मूवी जैसे 10 कमांडमेंट्स, वहां पर भी ये चीज दिखाया गया, ईश्वर एक ज्योति है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है। तो ऐसे और भी धर्म है जो निराकार निर्गुण ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें निराकार ईश्वर से जाके हम लोग उस ज्योति में हम लोग अपने आत्मा को खो देते हैं, मेरे मन की ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाता है, ये होता है आध्यात्मिकता। Okay. अगर हम निराकार में विश्वास करें तो,
0: जी जी जी,
1: और अगर हम आकार में विश्वास करें तो उसकी, उसके प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, दैट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, एक अलग ही तरह से दास साहब ने हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और दास साहब का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा भजन पहले हम सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। अब दास साहब आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आध्यात्म आपसे समझा, धर्म आपसे समझा, अब आज की दुनिया में अगर यंग जनरेशन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है तो वो ये भी जानना चाहेगी और हम भी ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 90% कह लीजिए, या चलो ठीक है मैं किसी परसेंटेज को यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर है?
1: सोशल मीडिया में कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी मौजूद है, अच्छे सामग्री भी मौजूद है, तो जो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों को मदद कर सकते हैं
0: जी।
1: जैसे फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया में खूब सारे पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से पौराणिक कथा कुछ ऐसे हैं जो सारे धर्मों में कॉमन है।
0: ओके।
1: सारे धर्मों में सामान्य है, ऐसे कुछ पौराणिक कथा है। जैसे जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग करता है उसको कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द कहां से भी आए, कहीं से भी आए, किसी आदमी से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति उसका इतना भक्ति या जो भी है होता है, उसका चाहत होता है ईश्वर के लिए, वो उसको जाके आगे जाके अपना आत्म अनुभव, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलता है, उसको उस स्टेज तक, उस स्तर तक लेके जाता है कि बाद में समाज उससे उपकृत होता है, वो एक बड़ा संत, बड़ा महात्मा बन जाता है, उसके बातें सुन के हजारों भटके हुए लोग सही राह पे आते हैं। तो इसको ये एक तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं, जो रिलीजियन या धर्म के प्रभाव होता है आध्यात्मिक कथा के ऊपर। ये ज्यादातर आपके आध्यात्मिक कथा जो निराकार रास्ते में चलते हैं उनके लिए है, निराकार ईश्वर के रास्ते
0: जी,
1: और जो साकार ईश्वर के रास्ते में चलते हैं उनके लिए शायद मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है।
0: ओके।
1: वो पहले किसी साकार ईश्वर को मानते हैं, मानने के बाद उनको उनका उस ईश्वर के भक्त हिसाब से उनका अपना अनुभव होता है, आत्मा अनुभव, फिर वो इस जगत को अपना अपना जो ऐश्वरिक प्रेम, डिवाइन लाभ, वो देना शुरू करते हैं, तब उनसे मानव जाति उपकृत होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से दोस्तों, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, कितने प्यारे ढंग से दास साहब ने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाराकार ईश्वर और साकार ईश्वर में डिस्क्राइब करते हुए दास साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लें और एक भजन दास साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में सुने, और फिर लौट के आते हैं हम दास साहब के पास।

0: बहुत सुंदर। अब दस आप देखिए, ये तो थियोरेटिकल बात हुई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में और साकार ईश्वर के बारे में। अब अगर हम लोग, फिर हम लोग ने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की, आज का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दुनिया का। अब हम बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की, आध्यात्मिकता का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या अध्यात्म हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आजाद होने में हमारी मदद कर सकती है क्या? स्पिरिचुअलिटी वो कैसे करेगी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में?
1: देखिए सर, एक सही आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में इन जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ये तो मन की बात है, ये सारी चीजें मन की है। उनके शारीरिक दैहिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनका बीपी वगैरह ये सब कम होते जाते हैं।
0: ओके।
1: दूसरी बात ये है सर, एक बात इंग्लिश में एक प्रभाव है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान की शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना चाहिए, उनको अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए बिना स्वार्थ के, कि माता पिता हमें उनका प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए नहीं, ऐसा कोई मोह माया नहीं रहनी चाहिए। जब उनका जन्म हुआ, माता पिता ने अपने स्वार्थ भूल के उनको बड़ा किया, माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे आगे जाके बड़ा होके उनको देखेंगे कि नहीं, उनको केयर लेंगे कि नहीं, उन्होंने, कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचते। तो उनको भी अपने माता पिता को सबसे पहले इसी तरह प्रेम देना है।
0: करेक्ट।
1: फिर अपने बच्चे जो होंगे, अपने पत्नी जो होंगे, उनके प्रति भी निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो यह मतलब है आपके परिवार में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है।
0: वाओ, ओके।
1: यानी आप सभी के अंदर अपने आत्मा को देख रहे हो, यू आर यूनाइटिंग योर सेल्फ विथ ऑल रेस्ट हुसोएवर इज अराउंड यू, आपके साथ जो है उनके साथ आपका आत्मा की एक जोग स्थापित हो गया, यही आत्मा आध्यात्मिकता।
0: वाओ, ब्यूटीफुल, क्या बात बताई आपने, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी ही प्यारी चीज हमारे सामने रखी भाई, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को समझ कर भी, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को समझ कर भी लोग बाग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। मतलब बात तो वही हो गई, कहने को कुछ और, करने को कुछ और, लेकिन फिर भी कोई एक सीधा साधा सा इंसान हो तो वो क्यों नहीं कर पाता है ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस, दास साहब क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
1: क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है।
0: ओके।
1: और कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन या किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहचर्य, उनके साथ किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहना, जिसको बोलते हैं कि आपको संघ बोलते हैं
0: जी,
1: साधु संघ, साधु जातक मीन, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मली गेरुआ पहन के घूम रहा है, साधु व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति उनके संगत से ये प्राप्त होता है, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आत्मानुशासन, त्याग और ज्ञानी व्यक्ति की संघ, ये अगर मिले, एक हो जाए, तब आपको धीरे धीरे आपके पास आध्यात्मिकता की झलक आना शुरू होगा।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, उस तरीके का सानिध्य, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हो, तब हम उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर सुधा साहब। तो चलिए एक और प्यारे से भजन के साथ एक पॉज लेते हुए दास साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा भजन, और फिर हम वापस लौटते हैं।

0: दास साहब, फर्ज कीजिए कोई बहुत ही साधारण सा इंसान, सीधा साधा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो आपकी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम को सुनकर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, मेरे को शांति मिलेगी, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस वो कैसे शुरू करे? कुछ प्रैक्टिकल इजी रोजमर्रा के स्टेप्स थोड़े से सजेस्ट कीजिए ना।
1: देखिए सर, आध्यात्मिकता की शुरू वो कर सकते हैं ऐसे कि हमारे समाज में आज भी दारिद्र है, आज भी कुसंस्कार सुपरस्टिशन है, आज भी गलत अभ्यास गलत प्रैक्टिसेस हैं, तो जिनमें जहां पे लोग भटके हुए लोग हैं सही रास्ते में, लोग धीरे धीरे आज के युवा समाज में देखिए, आज के जो समाज ओवरऑल इट इज ज्यादातर इट एग्जिस्ट, ये कहां पे समाज टिका हुआ है आपको देखेगा नजर आएगा सोशल मीडिया में, लोग अपने परिवार अपने बंधु इन सबको साथ रहते लेकिन अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई अपने लैपटॉप में डूबे हुए रहते हैं, तो इन लोगों को कोई कुछ समय नहीं है कि ये आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकाले। लेकिन एक चीज आप जरूरी है, अगर हर व्यक्ति समाज के एक कोई दरिद्र शिशु को, दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र कोई लड़का लड़की जो भी है, वो अपने साध्य के अनुसार, हम जो कोई एक घंटा करके जो दरिद्र शिशु है उनको पढ़ाए, या किसी कहीं पर जाके, खूब सारे मैं आपको बोलता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कलकत्ता में कोविड 19 के टाइम एक रविन हुड बोल के एक बैच हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के लड़के अपने आप को रविन हुड सोचते थे, और जहां पर जिसको खाने की अभाव हो या कुछ द्रव्य की नेसेसरी आर्टिकल्स, जहां पर जिसका भी कुछ भी अभाव हो रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो लोग जाके उद्योग अपने उद्योग में अपने मेहनत में लोगों को हेल्प करते थे, खास करके ओल्ड कपल्स, बूढ़े पेरेंट्स जिनको अपने पुत्र छोड़ गए, खास करके कुछ दरिद्र फैमिली जो हु आर लिविंग ऑन फुटपाथ, ऐसे करें। तो ऐसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जो समाज के लिए कुछ करता है, कोई ऊपर का दिखावट ही नहीं है, ऐसा कुछ है, इसमें लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाले, निकाल के उनके साथ कनेक्ट करे, ऐसा ऐसा करके हम लोग आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा अगर ये समाज का के लिए भी कुछ अच्छा ना हो, तो हम हमारे आध्यात्मिकता का इस तरह का हम शुरू कर सकते हैं कि हम समाज के काम में आए, समाज मतलब और दूसरे सारे लोग, मेरे परिवार के बाहर जो लोग हैं, सभी आम लोग हो जाए, जो आर्थिक रूप से आपके ज्यादा धनवान नहीं है, इन लोगों के कुछ काम में आए, जो पढ़ाई में पीछे है ऐसे बच्चों को कुछ काम में आए, ज्यादातर आप देख लेंगे सेंट्रल बोर्ड के जो होते हैं सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई में आगे होते हैं, स्टेट बोर्ड में जो है वो हम लोगों ने देखा है स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं,
0: पीछे होते हैं।
1: काफी बच्चों के पास गाँव में काफी बच्चों के पास सर मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होती है,
0: राइट,
1: आजकल के पढ़ाई AIML से है, बहुत सारे एडुटेक कंपनी है, कॉलेज के पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलता है, जो हमारे जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जो पीछे है, ये बच्चे हमारे समाज के जाति है, फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो वो अगर हम उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो इसमें आध्यात्मिकता ही, ये आध्यात्मिकता ही प्रैक्टिस है, और कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता उसको पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करके वो अपने आप ये काम कर रहा है, तो वो बिना जाने विदाउट हिज नॉलेज ही स्पिरिचुअल।
0: वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसा कि अभी अभी दास साहब ने बता दिया, नॉर्मल रूटीन, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आसपास ही बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग मिल जाएंगे जिनकी आपने मदद की, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर दास साहब की आवाज का एक और भजन हम लोग सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। एक कदम पीछे लौटने की कोशिश करूंगा दास साहब, आध्यात्मिकता की बात हुई और धर्म की बात हुई, क्या ये दोनों एक चीजें हैं या अलग अलग?
1: सर, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे के परिपूरक है, कंप्लीमेंटरी है, लेकिन लेकिन लोग धर्म के नाम पे कभी कभी माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं को आध्यात्मिकता के साथ वो लोग उलझ लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं।
0: ओके,
1: इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन धर्म है, या स्पिरिचुअलिटी एंड मिथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी रिलीजियन एंड मिथोलॉजी, आध्यात्मिकता धर्म और पौराणिक कथा, ये तीनों चीजों के अंदर जो डिफरेंस है और जहां पर संपर्क है, इसके बारे में वेरी स्पष्ट सुस्पष्ट उनका कॉन्सेप्ट या आइडिया या धारणा होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे, जैसे वो आध्यात्मिकता के रास्ते में धीरे धीरे जाएंगे या किसी धर्म के रास्ते में भी धीरे धीरे जाए, कुछ सिंसियरिटी सही ढंग से अगर वो चले, तो वो एक दिन उनको इन तीनों के डिफरेंस, तीनों जो थोड़ा थोड़ा अलग है, तीनों एग्जैक्टली एक नहीं है, ये इन लोगों को आगे जाके पता चल जाता है, वो अपने अनुभव से पता चलता है।
0: Okay.
1: हम लोगों को जो एक सिक्स्थ सेंस है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं।
0: Yes.
1: इंट्यूशन आगे जाके अगर बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग, गहरा और बलशाली इंट्यूशन है, वो ही आगे जाके हमारा तीसरा नेत्र बनता है, तो उसमें ये पार्थक्य नजर आता है, जो नॉर्मल आई साधारण आंखों में नजर नहीं आता है।
0: बहुत सुंदर,
1: तो
0: भाई वाह।
1: सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता यही है, आत्मानुभव का रास्ता आध्यात्मिकता में यही है।
0: ओके, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपको ये भी आज समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, क्या तो समानता है, या इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। बहुत सुंदर, चलिए ना एक और भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं।

0: हुड्डा साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि आगे आने वाला समय जो है, जो भी आज चल रहा है, ठीक है, आपने आध्यात्मिकता की, धर्म की जो कुछ भी जानकारी, ज्ञान लिया, आपके मामा जी से लिया, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आपका इंटरेस्ट था, सीखा आपने, और आज का जो करंट प्रोस्पेक्टिव है उसमें भी आपने दोनों की रेलेवेंस को, मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो रियलिटी है उसको समझा आज के प्रोस्पेक्टिव में। अब आगे की बात करें, आगे का जो फ्यूचर है, जो कि हम अपने यंग जनरेशन को देकर जाएंगे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब रहेगा? क्या आगे बढ़कर, लेट्स से आगे 20 इयर्स ऑनवर्ड स्पिरिचुअलिटी काम आएगी? क्या उसकी सार्थकता होगी?
1: देखिए सर, निकट भविष्य में युद्ध बिना शादी की भविष्यवाणियां की जा रही है। तब अधिकाधिक लोग संसार की दिखावटी सुंदरता से विमुख हो जाएंगे, वे अपने भीतर झांकेंगे और स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे।
0: ओके,
1: तो ये आने वाले दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक आशा रखते हैं कि आशा नहीं, आशा बोलिए या दुराशा बोलिए, एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, या इससे भी कम कुछ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल का चारों तरफ जो युद्ध की माहौल बनी हुई है, अंतर्देशीय युद्ध की माहौल जो बनी हुई है, इसमें हम लोगों का वो जो भय है हमारे मन के अंदर, वो भय हम लोगों को जब सच हो जाएगा वो युद्ध, तब हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। अपने अपने आदमी हम लोग खोएंगे, हम हमारे स्वजनों को खोएंगे, हम हमारे संपदा खोएंगे, शायद हम लोग अपना देश भी खो सकते हैं। तो उसमें उसी टाइम हम अपने भीतर भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया का आकर्षण हमारे लिए उस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी में से कुछ लोग अपने आप जाकेंगे, स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे, ये जब वो शांति को खोजना चाहेंगे।
0: करेक्ट।
1: तो ये आने वाले दिन का मुझे भविष्य ऐसा लगता है।
0: ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है। आज के प्रोस्पेक्टिव में जिस तरीके का भी माहौल चारों तरफ बना हुआ है, हम अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पिक्चर हमें दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तब लेकिन दास साहब का मानना है, और उन्होंने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की, रिलीजन की, धर्म की, और इस बारे में विचार करने की सार्थकता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यूटिलिटी बढ़ेगी। सोचना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुख इतना ज्यादा हो जाएगा जब कभी किसी अपने को खो देंगे तो अवसाद में डूब जाएंगे, तो फिर आध्यात्मिकता ही है जो हमें बाहर निकालेगी। बहुत सुंदर,
1: बिल्कुल
0: भाई, बहुत सुंदर। दास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की आपने। सरल शब्दों में बताया कि क्या है आध्यात्मिकता, क्या है धर्म, क्या है उसका यूसेज, क्या है सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस, क्या है यंग जनरेशन के लिए उसका मतलब। बड़ी सारी चीजें हमने बहुत ही प्यारे ढंग से और आज के नए भाषा में आपने हमें समझाई। दास साहब, आपके भजन तो फिर सोने पे सुहागा हो गए। जिन बातों को आपने प्यार से समझाया, आपके भजनों ने उसको सपोर्ट किया और हमें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या है अध्यात्म और क्यों हमें अध्यात्म को स्वीकारना चाहिए। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दास साहब?
2: सर, आपने मुझसे पूछा कि मैं श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव सिखाना चाहिए। राष्ट्र की आत्मा में अपनी आत्मा को देखना सिखाना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता स्वतः उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता के इतिहास को ही देख लीजिए, हर स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक थे। एक और बात यह है कि हर कोई मृत्यु से डरता है, केवल आध्यात्मिकता ही इस भय को दूर कर सकती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दी है दास साहब ने। दोस्तों, बिल्कुल सच, एकदम खरी खरी एडवाइस, बहुत खूब। दास साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत साफ तौर पे आपने कई चीजें हमें बताई और आपके भजन भी हमने प्यारे प्यारे सुने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: मोस्ट वेलकम सर।
3: ओम भास्कराय नमः।
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। गर्मी जो सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की इस कहानी में हम सिर्फ गर्मी की बात नहीं करेंगे, आज के एपिसोड में हम उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडियन समर ही दे सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर के 2 बजे हैं, सड़क ऑलमोस्ट खाली, धूप इतनी तेज कि लगता है हवा भी गर्म हो गई है, और इस गर्मी के बीच अचानक एक आवाज, टन टन टन। कुल्फी वाले की घंटी समर का एक एंथम होता है, बस ये आवाज ही होती है जो बचपन में दिल की धड़कने बढ़ा देती है। जैसे ही घंटी बजती है, घर के अंदर से रॉकेट स्पीड से बच्चे बाहर निकलते हैं। माँ, कुल्फी चाहिए, कुल्फी वाला आ गया, और मम्मी अपनी इटर्नल डायलॉग के साथ रेडी। रोज रोज नहीं मिलती कुल्फी, और हम, पर मम्मी आज स्पेशल है, कल से नहीं मांगूंगी पक्का, और ये डायलॉग हम रोज बोलते हैं। फिर बार्गेनिंग शुरू होती है, एक ही ले लो भैया, छोटी वाली देना, और फाइनली हाथ में एक ठंडी जमी हुई कुल्फी, उसका पहला बाइट और वो इंस्टेंट ठंडक दिल के भी नीचे उतरती है। लगता है जैसे पूरी गर्मी उसी कुल्फी में डिसॉल्व हो गई हो। सच बताओ, आप कौन सी कैटेगरी के थे, ऑरेंज वाली स्टिक आइसक्रीम, मलाई कुल्फी, या वो रॉकेट वाली जो गिरते गिरते बचती थी? समर का सुपरस्टार। अब बात करते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स आम की। गर्मी का मतलब ही होता था घर में आम की पेटी आना, और मम्मी का स्ट्रिक्ट रूल, गेस्ट्स के लिए हैं। पर हम ऑलरेडी 2 आम वॉशरूम में छुपके खा चुके थे, और वो आम का रस स्टील के बड़े भगोने में पूरी फैमिली के साथ, कोई रोटी के साथ खा रहा है, कोई पूरी के साथ खा रहा है, और कोई डायरेक्ट सिप्स ले रहा है, और लास्ट में हाथ पे चिपका रस और उसे चुप चुप के लिक करना। उफ, क्या दिन थे। और जब हीट लेवल्स एक्सट्रीम हो जाते थे, तब एंट्री होती थी आम पन्ना की, कच्चे आम का आम पन्ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, एक सिप लो तो लगता है पूरी बॉडी रिबूट हो गई हो। मम्मी प्राउडली बोलती, ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, और हम, ये तो लाइफ स्ट्रोक से बचाता है मम्मी। कूलर वर्सेस गर्मी की अल्टीमेट बैटल। पहले एसी नहीं था घर में, पर कूलर, कूलर हीरो था। कूलर के सामने बैठ जाओ और लगता था नेचर ने पर्सनली हवा भेजी है, और उसकी आवाज, कूलर के फैन में मुंह डाल के खड़े होना और अपनी ही आवाज को घर से सुनना, याद आया? वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बजता है कानों में, जो बिना प्लेलिस्ट के चल रहा होता है पूरे समर्स में, और जब पानी खत्म हो जाता है तो सडनली हवा का तंदूर मोड ऑन, फिर घर में एक ही आवाज, पानी डालो कूलर में, लाइट चली गई। और समर का सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट,
बिजली का जाना, फैन बंद, कूलर बंद, सब बंद। और मम्मी का सोल्यूशन, हाथ से पंखा चलाओ। और हम, ये कौन सा जिम है भाई? टेरेस वाली चांदनी रात। और फिर रात को टेरेस पे सोने के प्लान्स, छत पे बिस्तर, ऊपर तारों भरा आसमान, एक सफेद चादर और दूर कहीं से रेडियो की आवाज, हल्की हल्की ठंडी।